0: ही दीजिए, लेकिन आधा घंटा का अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का हर महिलाएं जो गर्भवती हैं अगर करेंगी तो उनके बच्चे को मेरी एकदम गारंटी है कि कोई बीमारी नहीं होगा, माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ
1: जी
0: रहेगा।
1: रेणु जी, गर्भावस्था के दौरान कब तक ये योगा क्रिया जाए और कब ये योग क्रियाएं बंद कर दिया जाए?
0: ये 3 महीने से शुरुआत करके 9वें महीने तक किया जा सकता है,
1: जी
0: खास करके अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओंकार का जाप और भ्रामरी का, जिससे कि हमारा मन बिल्कुल कभी भी तनाव में नहीं आएगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और आप जैसा बनाना चाहेंगी वैसा बनेगा ही, कांटेक्ट उससे उसी तरह बना के रखेंगे जैसा चाहेंगे। मेरी तो मैं तो बोल चुकी हूँ, निश्चित है,
1: पूरी गारंटी
0: हाँ
1: है
0: हाँ पूरी गारंटी है
1: कि
0: कि
1: शिशु स्वस्थ होगा।
0: स्वस्थ भी होगा और आप जैसा बनाना चाहेंगे। हाँ एक प्रिकॉशन जरूर है कि जितना मोबाइल से दूरी बना कर रखे, कुछ महीनों की बात है, मोबाइल जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा।
1: जी रेणु जी, हमारे गर्भवती माताओं बहनों को आप क्या कहेंगे कि टेंशन से आप दूरियां बनाएं और वक्त निकालें, थोड़ा सा वक्त निकालें अपने व्यस्त समय से। हम तो ये कहेंगे कि अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय को आप चुरा लीजिए अपने लिए और अपने गर्भस्थ शिशु के लिए।
0: जी अगर आप समय का सही उपयोग करेंगी तो आपका बच्चा और आपका परिवार दोनों ही स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। क्योंकि आजकल के समय में अधिकतर लोग शिशु के जन्म लेते ही या पेट से ही परेशान हो जाते हैं, ये बीमारी वो बीमारी लगी हुई रहती है। आप जब इस अभ्यास को करेंगे, योग और प्राणायाम और ध्यान को, तो देखेंगे कि आपको कोई इस तरह की परेशानी हुई ही नहीं और आप बिल्कुल स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकेंगे। लेकिन हाँ, आप उसके लिए समय निकालें, कम से कम आप दिन भर में 40 मिनट, आधा घंटा, नहीं तो गर्भवती हैं इसलिए 1 घंटा का समय तो पर्याप्त, आधा घंटा भले ही आप सुबह दें शाम दें,
1: जी
0: लेकिन सुबह में देंगी तो ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ा हुआ रहेगा वातावरण में, जिस कारण ऑक्सीजन जब शरीर में बढ़ेगा तो रक्त संचार सुचारू रूप से होगा,
1: और आप
0: जिससे कि
1: स्वस्थ रहेंगे।
0: बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ
1: जी
0: रहेंगे।
1: ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस गर्भावस्था के दौरान यदि हम अपने सेहत का ध्यान रखते हैं और कुछ थोड़ा सा समय हम निकाल पाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, योग क्रियाएं करते हैं, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और एक अच्छा स्वस्थ शिशु को हम जन्म दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु कुमारी पांडे जी, आप इस कार्यक्रम में आए
0: धन्यवाद सर,
1: और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से योग क्रियाएं करें इस पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
0: धन्यवाद।
1: मित्रों, यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, एक नई जानकारी के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान योग क्रिया, इस विषय पर संजीव कुमार लाल की बात हो रही थी रेणु कुमारी पांडे से। अगला कार्यक्रम सुबह सुरीली, बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आभा और आकाशवाणी रांची के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सुरीली में, जिसमें आप अपनी सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ सुनते हैं सदाबहार नगमे। तो चलिए आज की सुबह को और खुशनुमा और सुरीला बनाते हैं और शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों से। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत खयाम का, फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

लीजिए सुनिए येसुदास का गाया और पुरुषोत्तम पंकज का लिखा गीत, राज कमल का संगीत, फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुरीली में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अखियों के झरोखों से, जिसे हेमलता ने गाया है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

किशोर कुमार की आवाज़ में अगला गाना फिल्म अजनबी से, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत राहुल देव बर्मन का।

आखिरी गीत फिल्म अभिमान से रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत एस टी बर्मन का, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की।

दोस्तों, हर सुबह खुद को एक नई उम्मीद दीजिए। जो भी सोचा है उसे पूरा करने की ताकत दीजिए। सुबह सुरीली की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और सुरीली धुनों के साथ। तब तक के लिए आभा को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी रांची। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खुला आकाश, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता मातृभाषा का महत्व। वार्ताकार है डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी।
1: मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माता की गोद से सीखी हुई बोली। बोली ही विकसित होकर भाषा बनती है। इसे यूं समझें कि किसी बोली में लिखने पढ़ने का काम होने लगता है, उसमें साहित्य रचा जाने लगता है, तो वह भाषा कहलाने लगती है। इसका विपरीत उदाहरण भी है, किसी भाषा में साहित्य आदि सृजन का काम ठहर जाए और वह केवल बोलचाल में प्रयुक्त होने लगे तो वह भाषा बोली बनकर रह जाती है। हमारे झारखंड की क्षेत्रीय जनजातीय बोलियां भाषा की पद प्रतिष्ठा पा चुकी हैं या पाने के यत्न में लगी हैं। कल तक नागपुरी, जिसे पहले सदरी, सदानी या नागपुरिया कहते थे, इस क्षेत्र की संपर्क बोली थी। आज नागपुरी में एमए तक की पढ़ाई तो होती ही है, अनेक प्रकार के शोध हो रहे हैं। अभिप्राय यह कि बोली और भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं है। जैसे माँ का दूध अमृतोपम होता है और हमारे शरीर की संरचना को यूं सुदृढ़ करता है कि हम जीवन संघर्ष, वर्षा, आतप को झेलने में समर्थ हो जाते हैं, इसी प्रकार से माँ के जो पहले शब्द कान में पड़ते हैं वे हमारे मन मानस का निर्माण करते हैं। हमारी माँ जैसी भी है, हमारी माँ है। माँ का विकल्प नहीं हो सकता। माँ बदली नहीं जा सकती, बदली नहीं जाती। हर

ऐसा ही है। कोई भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती, हर भाषा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह बड़े से बड़े क्षेत्र में बोली समझी जाती हो या किसी अत्यंत छोटे समुदाय में। असल में हर भाषा की अपनी दुनिया होती है। माँ से जो भाषा हमने सीखी उसमें हमारी रीति नीति झांकती है, हमारा समाज झलकता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत की डोर थामे हुए होती है यह भाषा। किसी भाषा के मर जाने का अर्थ एक पूरे समाज का बेपहचान हो जाना है। इसीलिए अपनी अपनी मातृभाषा को जुगाए बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। भाषा खो गई तो उसके साथ तीज त्यौहार कला संस्कृति एक पूरी विरासत खो जाती है। कहें हर मातृभाषा अपने क्षेत्र का आईना होती है। आप किसी क्षेत्र की भाषा के सहारे वहाँ के समय और समाज को पढ़ सकते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा के माधुर्य को रेखांकित करने के लिए एक पंक्ति उद्धृत की थी। राह में चलते बालक के नंगे पाँव में कंकड़ चूहते हैं तो वह कहता है, माए री माए मग सांकरी पगन में कांकरी गरक वह, माँ रास्ता संकरा है पैर में कंकड़ गड़ रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि ब्रजभाषा में कवि सूरदास होते हैं। ब्रज माधुरी ऐसी कि लगता है कृष्ण बांसुरी वहीं टेर सकते थे, रास वहीं रचाया जा सकता था। मैथिली में बच्चे पर क्रुद्ध भी हो रहे हों तब भी उसे आप कहकर ही संबोधित करते हैं, हाँ हाँ बड़ बदमाशी करे छी, आप बहुत शरारत कर रहे हैं। ऐसी मिथिला में ही विदेह राजा जनक हो सकते थे और कवि विद्यापति जिनके पदों में आम्र कुंजों में कूकती कोयल की मिठास है। किसी भाषा की लोकोक्ति मुहावरे में उस क्षेत्र की मानसिकता की छाप होती है। भोजपुरी क्षेत्र का अनपढ़ कृषक भी कहता है, साइड से सुतार भला या घरी में घर झरे नौघरी भद्रा। मुहूर्त की प्रतीक्षा करने से बेहतर है सुविधा देखना, या घर क्षण भर में जल जाएगा, नौ घड़ी तक हम इस प्रतीक्षा में नहीं बैठे रह सकते कि अशुभ भद्रा काल समाप्त हो जाए, तब आग बुझाना शुरू करें। भीरुता के खिलाफ जहाँ निरक्षरों का मन मानस भी ऐसा है, उसी भाषा में सिद्ध सरापा कबीर हो सकते थे, वहीं बाबू कुंवर सिंह बुढ़ापे में भी शौर्य की अंगड़ाई भर सकते थे। बुंदेलखंड प्रायः अवर्षण की मार झेलता है। किसानी जीवन का यह संघर्ष क्षेत्र के लोगों को स्थितियों से जूझने का हौसला देता है। बुंदेलखंडी कहावत है, सही संझा के मरो को कब तक रोएं, यानी विपरीत परिस्थिति में उठकर जूझना होगा, कब तक किस्मत को रोते रहेंगे। इसी क्षेत्र की एक कहावत है, बहू पूरा घर तेरे हवाले पर भंडार में मत घुसियो। जहां ऐसी बंदिश हो वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार उठा सकती थी। बुंदेले हर बेले जिनके संदर्भ में गाते थे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अवधि भाषा के लुप्त हो जाने का अर्थ होगा राम कथा की वाचिक परंपरा का खो जाना। अवध की औरतें वन में वर्षा में विचरते राम के संदर्भ में गाती हैं, मेरे राम का बीज है मुकुटवा। वन में भटकते राम की कल्पना भी ये ललना है मुकुट विहीन शीश के रूप में कर ही नहीं पाती। नागपुरी का एक लोकप्रिय नृत्य है पैंका, इसे युद्ध नृत्य कहते हैं। आखिर इस पठारी क्षेत्र में युद्ध नृत्य गीत कैसे विकसित हुए, याद कीजिए भगवान बिरसा बुधु भगत नीलांबर पीताम्बर आदि वीरों के प्रतिरोध को। जैसा मैंने निवेदन किया, भाषा विशेष में उस क्षेत्र की संस्कृति झांकती है, संघर्ष झांकता है। झारखंड की प्रकृति ने अपना प्यार पूरी उदारता के साथ दिया है। इस क्षेत्र के निवासियों का वनों से नदी निर्जनों से प्रकृति से अविभाज्य जुड़ाव है। पेड़ पौधे इन वनवासियों के सगे हैं अपने जैसे। रामचरितमानस का वह प्रसंग आपको स्मरण होगा कि शिवधनु के भंग के बाद ऋषि परशुराम क्रोधावेश में वहाँ पहुँचकर बहुत बुरा भला कहते हैं। इस पर लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ कुम्हार बतिया को ना ही जेतर जनी देख मर जाही, संस्कृत वर्तिका से घिस कर बना है बतिया, जिसका अर्थ है छोटा कच्चा फल। लोक विश्वास है कि कोहरे के कच्चे फल को तर्जनी उंगली दिखाएं तो फल मर जाता है, सूख जाता है। भोजपुरी क्षेत्र में बतिया को भरतिया कहते हैं। नागपुरी में बतिया को बालक छुआ कहते हैं, छोटे बच्चे को छुआ कहा जाता है। नागपुरी भाषा के लिए कच्चा फल वैसा ही जीवित प्राणी है। नागपुरी में रीझ रिगवार वाले गीतों में जो इतनी कोमलता मिलती है, इतना मार्दव मिलता है, वह इस भाषाई क्षेत्र की भाव प्रवणता का परिचायक है। मातृभाषा हमें घुट्टी में मिली हुई होती है, इसलिए अपनी भाषा में बातें समझना हमें आसान पड़ता है। अपने झारखंड के एक दूरस्थ पठारी गांव की प्राथमिक पाठशाला का प्रसंग है। मास्टर साहब स्वच्छता के संदर्भ में बता रहे थे, दीवारें एकदम सफ़ेद। लड़के सफ़ेद का अर्थ समझ नहीं रहे थे, इसलिए उनके चेहरे भाव शून्य थे। मास्टर साहब ने अनुमान लगाकर कहा, सफ़ेद करमाने नहीं बुझे थी, एकदम से चर का
चरखा कहने से सफ़ेद का अर्थ बच्चों ने समझा, उनके चेहरे पर चमक आ गई। राजस्थान की एक शिक्षिका ने ऐसा ही एक प्रसंग सुनाया था। सुदूर राजस्थानी गांव के स्कूल में शिक्षिका प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कर रही थी। बोली,

नख में पक्षी विचर रहे थे, बच्चे हतप्रभ, पक्षी का अर्थ वे समझ ही नहीं रहे थे। शिक्षिका बात समझ गई, बोली, पक्षी माने चिड़िया, चिड़कली। चिड़कली उन बच्चों का परिचित शब्द था, उनकी आंखें चमक गईं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। मैं इसे ऐसे समझता हूँ कि मातृभाषा में न भी पढ़ा रहे हों तो स्कूल के शिक्षक को उस क्षेत्र की भाषा की जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि बीच बीच में बच्चों की मातृभाषा में बातें स्पष्ट कर दी जाएँ। मानव विज्ञानी बताते हैं कि हर वर्ष कुछ छोटी मानव प्रजातियां काल के गाल में समा जाती हैं और इसके साथ ही उस समुदाय की भाषा विलुप्त हो जाती है। भाषा की इस मृत्यु का अर्थ क्षेत्र विशेष के इतिहास, भूगोल, आचार व्यवहार, कला संस्कृति का विलुप्त हो जाना है। यह बड़ी समस्या है कि इन भाषाओं को कैसे बचाएँ, और नहीं बचा पाते तो मानव प्रजाति का श्रृंखलाबद्ध इतिहास कहाँ पाएँ। कल तक जो समुदाय विशेष की मातृभाषा थी, आज उसका अता पता नहीं। हमें संस्कार मिला है कि अपनी माँ का सम्मान तो हम करें ही, दूसरों की माँओं को भी अपनी माता जैसा ही आदर दें। मातृभाषा के संदर्भ में भी यही सच है। अपनी मातृभाषा का पोषण तो हम करें ही, अन्यों की मातृभाषाओं को भी सम्मान दें। इसीलिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय का सुझाव है कि जहाँ राजभाषा हिंदी में नए शब्दों की आवश्यकता महसूस हो, देश की विभिन्न बोलियों से शब्द खोजें। उतनी विकसित नहीं हो पाई मातृभाषाओं में भी ऐसे शब्द हमें मिलते हैं जिनकी मिठास तो आकर्षित करती ही है, उसकी अर्थ क्षता वाला कोई समानार्थी शब्द जल्दी मिलता नहीं। भारत के जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर दूर जाने को बाध्य हुए, वे अपने साथ अपनी मातृभाषा को भी ले गए। इसीलिए मॉरिशस में आज भी छोटा सा भारत दिखता है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व कोने पर एक छोटा सा देश है सूरीनाम। भारतीय गिरमिटियों ने ही उस जंगल को आबाद किया। अपनी भोजपुरी शब्द संपदा को वहाँ की नई पीढ़ी अब भी किसी हद तक बचाए हुए है, और भारतीय सैलानियों से वे भारतीय भूषा में मिलना पसंद करती हैं और हिंदी में बात करती हैं, हालांकि काल प्रवाह में उन्हें अपनी मातृभाषा के गुणसूत्र ठीक ठीक याद नहीं। तो वहाँ किसी दुकान में आप जाएँ तो भारतीय मूल की किशोरी युवती आपसे पूछेगी, क्या लेगी तुम, या यज्ञ फट ले जाओ, अपने मेहरारू को दे देना। रोमांचित करता है उनका यह मातृभाषा प्रेम। आपस में दूरी बढ़ने पर प्रेम अधिक प्रगाढ़ होता है। भारत में आपस में गिटपिट अंग्रेजी में बात करने वाले भी दूर प्रदेश में जब मिलते हैं तो अपनी मातृभाषा पर उतर आते हैं। अपनी मातृभाषा में हम अपनी बात पूरी स्पष्टता और निष्ठा के साथ अभिव्यक्त करते पाते हैं। रवि बाबू की गीतांजलि को नोबेल सम्मान मिला तो इसलिए कि मूलतः वे गीत सुष्ठु बांग्ला में रचे गए थे। दोहराऊं, हर मातृभाषा का अपना वैशिष्ट्य, अपना रंग होता है। मातृभाषा में हमारी संस्कृति, हमारा जीवन जागता है। क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त हो जाएं तो गिल्ली डंडा का खेल लुप्त हो जाएगा, वासंती उल्लास मर जाएगा, सघन पेड़ों की डाल पर लगे झूले नहीं दिखेंगे। हर मातृभाषा उतनी ही मूल्यवान है। इन मातृभाषाओं के स्तवक की कल्पना करें, उसके सुवास, उसकी मिठास की कल्पना करें, आप रसविभोर हो जाएंगे। माँ का एक दिन नहीं, हर दिन होता है, माँ की भाषा का भी। अपनी मातृभाषा को बचाएं, उसका सम्मान करें, उसे समृद्ध करें, और सोचें कि लुप्त हो रही भाषाओं को कैसे बचाया जाए।

खुला आकाश। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था मातृभाषा का महत्व, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज प्रसारित किए जाएंगे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हितों पर विचारों का आदान प्रदान के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घ कालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू प्याज सब्जियां फल खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
10: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रूपये बढ़ाकर 2,441 रूपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का

0: granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री ने राज्य के सहयोग को अवस्थापन समाधान के लिए बताया जरूरी। झरिया पुनर्वास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। निजी अस्पतालों की मनमानी और इलाज में लापरवाही पर राज्य सरकार सख्त। चतरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। रांची की बेटी भव्या रंजन बनी सीबीएसई 12वीं आर्ट्स की नेशनल टॉपर। 500 में से 499 अंक पाकर देश में लहराया परचम। राज्यपाल ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई। राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी। 15 और 16 मई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड T20 लीग की आधिकारिक ट्रॉफी का रांची में आज होगा अनावरण। समारोह में भारतीय स्टार क्रिकेटर ईशान किशन विशेष रूप से होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बेलगढ़िया में कहा कि झारखंड सरकार के सहयोग के बिना वस्थापन और भूधसान समस्या का समाधान असंभव है। उन्होंने प्रभावित लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील करते हुए बताया कि झरिया मास्टर प्लान 2.0 के तहत पुनर्वासित परिवारों को सुविधाएं, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3: झारखंड सरकार सहयोग नहीं करेगा तब तक विस्थापन की समस्या दूर नहीं होने वाला है। जहां विस्थापन का विषय है नहीं, वहां गैस का रिसाव हो रहा है, भूधसान हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा झरिया मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई रिक्शा ई बस की व्यवस्था करना।
2: वैश्विक संकट पर बोलते हुए उन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने की प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया और सनातन विरोधी बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
4: डीजल पेट्रोल का कुआं नहीं है, यहाँ नेचुरल गैस की उपलब्धता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि उनकी सिक्योरिटी में मात्र 2 ई रिक्शा ई मोटर बाइक लगाया गया है। अब सब लोगों से अपील किया है कि घर से बैठ के काम करिए, ई बस चल रहा है उससे जाइए।
2: चतरा पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निजी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर चिकित्सा के लिए सरकार निजी अस्पतालों को सहयोग करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मरीजों से अधिक पैसे लेने या इलाज में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने चतरा सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और एम्बुलेंस बढ़ाने की घोषणा की।
5: मेरी मंशा यही है, हर व्यक्ति तक हम स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसी कड़ी में हमने कहा है कि इस राज्य में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं उनको जो भी सहायता चाहिए मैं दूंगा। सरकारी तो हम खोल ही रहे हैं, प्राइवेट को भी अच्छा करना चाह रहे। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है केवल नाम का नहीं होगा।
2: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सरायकेला में निजी अस्पतालों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और दवा दुकानों का हेल्थ प्रोफेशनल और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से जुड़ना अनिवार्य है। निर्देशों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस डिजिटल मिशन से मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा और इलाज में पारदर्शिता आएगी। राज्य में बिना नक्शा पास बने अवैध भवनों को वैध करने के लिए आज बड़ी राहत मिलने जा रही है। झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 के तहत आज सुबह 11 बजे

0: प्रोजेक्ट भवन में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। भाजपा ने राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार 3,200 रुपये एमएसपी लागू करने और ओलावृष्टि प्रभावितों को मुआवजा देने में विफल रही है। इसके विरोध में भाजपा 15 से 20 मई तक सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना देगी।
1: पूरे राज्य में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में 15 से 20 मई तक धरना देकर के सरकार को जगाने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार पदाधिकारियों को भेज करके किसान के खेत टाड़ का सर्वे कराए, जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा सही आकलन करके सही राशि समय पर देने का काम करे।
0: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्री एसआईआर कार्यों की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर सत्यापन और स्टिकर लगाने के कार्य में तेजी लाने को कहा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और मृत व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाएं। पारदर्शिता के लिए पंचायत भवनों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची भी प्रकाशित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची की बेटी भव्या रंजन ने सीबीएसई 12वीं आर्ट्स में देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर राज्य का मान बढ़ाया है। भव्या ने 500 में से 499 अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए उन्होंने बताया कि उनका एकमात्र अंक अंग्रेजी विषय में कटा है।
2: इकोनॉमिक्स में एक मार्क्स कटा, ध्यान तो सब में इक्वली था। उम्मीद थी कि सिटी रैंक या स्टेट रैंक आ जाए, लेकिन नेशनल का नहीं सोचे थे। 11 मई से लेकर अभी तक वेट चल रहा था हम लोग का कि कब आएगा रिजल्ट। जब आया तो काफी खुश हुए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह शानदार सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। राज्यपाल ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना की है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर बीती रात अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी छापेमारी अभियान चलाया गया। जिले में गठित 43 टीमों ने ड्रग्स के कारोबार और सेवन से लिप्त लोगों के 100 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान 77 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया, जबकि 2 आरोपियों को 32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल दोपहर और रात को तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई, जिससे रांची में कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल में कल से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी वज्रपात बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसा ही ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बारिश की प्रबल संभावना है। रांची में आज झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा झारखंड T20 लीग 2026 की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। इस विशेष समारोह में राज्य में विश्वस्तरीय क्रिकेट मंच विकसित करने की रूपरेखा पेश होगी। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची की भव्या आर्ट्स में नेशनल टॉपर। प्रभात खबर ने लिखा है, अदिति 5वें दिन भी लापता, नाले में मिले अवशेषों की होगी डीएनए जांच। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मैया और सर्वजन पेंशन को 10,000 करोड़ जारी। दैनिक जागरण लिखता है, नीट पेपर लीक मामले में 5 गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री ने राज्य के सहयोग को अवस्थापन समाधान के लिए बताया जरूरी। झरिया पुनर्वास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। निजी अस्पतालों की मनमानी और इलाज में लापरवाही पर राज्य सरकार सख्त। चतरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। रांची की बेटी भव्या रंजन बनी सीबीएसई 12वीं आर्ट्स की नेशनल टॉपर। 500 में से 499 अंक पाकर देश में लहराया परचम। राज्यपाल ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई। राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी। 15 और 16 मई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड T20 लीग की आधिकारिक ट्रॉफी का रांची में आज होगा अनावरण। समारोह में भारतीय स्टार क्रिकेटर ईशान किशन विशेष रूप से होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और साथ ही एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और प्रातःकालीन प्रसारण के साथ मैं हूँ आभा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग में खुरठा भाषा में लोकगीत। आज के कलाकार हैं सोहित कुमार महतो और साथी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

सोहित कुमार मैथु और साथियों से आपने सुना खोरठा भाषा में लोकगीत रसरंजन। ये कार्यक्रम के साथ हम पुनः हाजिर होंगे थोड़ी देर में।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी रांची से रसरंजन कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आभा। जीवन की भाग दौड़ में जब सुकून की तलाश हो तो हम संगीत सुनते हैं या प्रेम की तलाश करते हैं, और प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि प्रकृति से, किताबों से, अपने काम से भी होता है। प्रेम के बिना जीवन ऐसे है जैसे बिना सुगंध का फूल। रसरंजन में आज की पहली रचना आनंद बख्शी की, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है लोफर।

अगला गाना फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर के स्वर में, बोल कौसर मुनीर का, संगीत सोहेल सेन का।

gehen. रेस्टंजन का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है इंतकाम।

0: कार्यक्रम में लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
8: RBI कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंजन। अगला गाना हमने लिया है फिल्म अभिमान से, किशोर कुमार की आवाज में। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत SD बर्मन का।

रसरंजन में गानों के सफर में अगली आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। धुन तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने, बोल लिखे हैं समीर ने और फिल्म है तेरे नाम।

रसरंजन का आखिरी गीत सुनिए, अनजान का लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म दो दिलों की दास्तान से। आवाजें हैं सुरेश वाटकर और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और रस रंजन के इस अंक में आज के लिए इतना ही। आभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं पंडित मनोज कुमार केडिया। इनसे सुनेंगे सरोद पर राग बिलास खानी तोड़ी। आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत है, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की तल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं सृजित चटर्जी।

शास्त्रीय संगीत में सरोद पर राग बिलास खानी तोड़ी आलाप और जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत थी, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध थी। कलाकार थे पंडित मनोज कुमार केडिया, तबले पर संगत कर रहे थे सृजित चटर्जी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और साथ ही 100.5 मेगा हर्ट्ज पर अगला कार्यक्रम सुनिए विज्ञान जगत, जिसमें वार्ता होगी मोबाइल फोन की लत और इसके दुष्प्रभाव पर। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर श्याम सिडाना, भेंट करता होंगे बसंत कुमार और प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे क्या क्या नई जानकारियां साझा करने वाले हैं और क्या नई बातें आपको बताने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन की लत और इसके दुष्प्रभाव के बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक आर्किमिडीज के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम जानकारी देने वाले हैं रेल पटरी के आविष्कार के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या नई जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं पेड़ पौधे लगाने और इनकी सुरक्षा कितनी आवश्यक है इसके बारे में। और अगर हम बात करें तो एक ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा हुआ है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, अत्यधिक गर्मी, जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। इन सभी समस्याओं का सबसे सरल और प्रभावी समाधान है अधिक से अधिक पेड़ लगाना और इनकी देखभाल करना। पेड़ पौधे प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं और जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। यदि धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। यही कारण है कि पेड़ों को धरती का हरा सोना भी कहा जाता है। लेकिन केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है। अक्सर हम किसी अभियान में उत्साह से पौधे लगा तो देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं। पानी की कमी, जानवरों से नुकसान, उचित सुरक्षा न मिलने और देखरेख के अभाव में अधिकांश पौधे सूख जाते हैं। इसलिए पौधे लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितना पेड़ लगाना आवश्यक है। एक पौधे को बड़ा पेड़ बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। समय समय पर पानी देना, खाद देना, उसके आसपास सफाई रखना और पशुओं से बचाने के लिए घेराबंदी करने जैसी जो जरूरी चीजें हैं, अगर हम वो नहीं करें तो शायद वो पौधा बड़ा वृक्ष नहीं बन पाए। यदि हर व्यक्ति केवल एक पौधे को पूरी जिम्मेदारी से बड़ा करने का संकल्प ले ले तो हमारा पर्यावरण काफी हद तक सुरक्षित हो सकता है। आज शहरों में तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। नई सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें और उद्योगों के विस्तार के कारण हरियाली कम होती जा रही है। इसका परिणाम ये है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ता जा रहा है।

0: गर्मियों में भी भीषण लू, असमय बारिश और बाढ़ जैसी समस्याएं इसी का परिणाम है। पेड़ न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हरियाली मन को शांति देती है, तनाव कम करती है और स्वच्छ हवा देने का काम करती है। आयुर्वेद में भी अनेक पेड़ों और पौधों को औषधि का स्रोत माना गया है। नीम, तुलसी, पीपल, बरगद और आंवला जैसे पेड़ मानव जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इन अभियानों की सफलता तभी संभव है जब आम जनता भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। स्कूलों, कॉलेजों और गाँवों में लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। बच्चों में बचपन से ही प्रकृति प्रेम की भावना विकसित करने के लिए हमें घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि पेड़ लगाना केवल एक सामाजिक कार्य नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। यदि आज हम पेड़ों की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा, पर्याप्त जल और स्वच्छ वातावरण प्राप्त कर सकेंगी। लेकिन हम ज्यादातर मामलों में यही देख पाते हैं कि लोग पौधा लगा तो देते हैं जोश में आकर, लेकिन उसकी देखभाल करने की जब बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो भूल जाते हैं पौधा लगाकर। उसका ख्याल भी रखना होगा, तभी वो एक बड़ा वृक्ष बनकर हमें फल देगा, छाया देगा और हमारे लिए ऑक्सीजन भी बनाने का काम करें। तो अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल की लत और इसके दुष्प्रभाव के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर श्याम सिडाना, जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं और रांची में कार्यरत हैं। सर, आप देव कमल हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: नमस्कार, जोहार।
0: आज चूंकि हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के इस्तेमाल की और इसके जो दुष्प्रभाव है इसके बारे में, तो आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके पास फोन ना हो, और हर व्यक्ति जो है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है अपने जरूरी कामों को करने के लिए, अपने जितने भी लोग हैं सगे संबंधी हैं उनसे बात करने के लिए। तो मोबाइल फोन चलाना और इसकी लत लग जाना, ये दो अलग चीजें हैं। तो मोबाइल फोन की लत लग चुकी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मोबाइल की जो लत है वो लग गई है किसी को, इसको कैसे समझा जा सकता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत कॉमन समस्या है
0: जी।
1: जब हमें लगे कि कोई व्यक्ति मोबाइल के बिना बेचैन होने लगे, खाली टाइम बोर होने लगे और अपनी दिनचर्या से समय ऐसा गड़बड़ा जाए कि काम समय पर नहीं कर रहा है, समय से सो नहीं रहा है, समय से उठ नहीं रहा है, उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जा रही है, रिश्तेदारों से समाज से उसका नेचर अलग हो गया, क्योंकि वो बैठे हैं बात कर रहे हैं आपसे समाज के रिश्तेदार और आप अपने मोबाइल में बिजी हैं, तो बोलते हैं कितने इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं इनसे बात करने आया हूँ और ये अपने मोबाइल में, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। उस समय सही डिसीजन भी नहीं लेने सकता है, तो ऐसा लगता है कि अब नॉर्मल बिहेवियर उनका हो जाता है। तो लत का मतलब है कि इस तरह डिपेंडेंट हो जाना कि सबसे अच्छा मोबाइल ही लगता है, और इसका मुख्य कारण है जो हम मोबाइल में व्हाट्सएप देखते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक पर लाइक देखते हैं, तो डोपामिन करके हार्मोन रिलीज होता है
0: जी,
1: जो हमको अच्छा फील कराता है। जो चीज अच्छा फील कराती है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अच्छा लगता है तो उसकी भी लत लगती है
0: जी, जी, जी।
1: कोई नहीं, उसी तरह जो भी चीज अच्छी लगती है तो उतनी लत लगती है, इसलिए वो हमारे लिए गैर उपयोगी और गलत बन जाता है।
0: यानी कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो
1: जी,
0: उसकी लत हमें लग चुकी है, ऐसा मान लेना चाहिए।
1: अगर वो आकर्षक है तो जरूर लगती है
0: जी। तो मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो लगभग आज के समय पे, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई कर रहा है
1: जी। जी,
0: खास करके सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब इसका लोगों पर असर दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर इसके दुष्प्रभाव की बात करें और लोग घंटों मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो एक हद तक वहां पे लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि आप इससे कैसे निकलना है। हालांकि इसके बारे में कई बार चर्चाएं होती हैं, इसके दुष्प्रभावों को पहचानते हुए जो समस्याएं होती हैं उनको समझने के लिए लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए?
1: सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हम रियल वर्ल्ड में जीना है, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं जीना है। मोबाइल एक वर्चुअल वर्ल्ड है और हमको जिंदगी जीनी है रियल वर्ल्ड में। तो हम जब मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लत लग जाती है, तो हम उसी में घुस जाते हैं, रम जाते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षक सारा कुछ आ रहा है, कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आपको लाइक कर रहा है, कोई फोटो रील फॉरवर्ड कर रहा है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। आज का जमाना की इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, तुरंत में आपको खबर मिल जाती है, अखबार न्यूज और सब सुनना बंद करके आप सीधे मोबाइल, पहले टीवी देखने की लत हुआ करती थी, अब मोबाइल की लत हो गई है। तो कुछ आकर्षण है जो हमको उस लत की तरफ ले जाता है, और वो जो है हमारी दिनचर्या को चौपट कर देता है, हमारे काम में नुकसान करने लगता है, हमारे बच्चों की पढ़ाई में नुकसान करने लगता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने लगता है, तो इसका असर जो है समाज

0: होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है। शारीरिक में क्या है कि आप एक पोजीशन में टेढ़े बैठे हैं तो आप टेढ़े बैठ के देख रहे हैं तो कमर का दर्द होगा आपको, गर्दन एक तरफ झुका के बैठे हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या दिखेगा, कॉलर बांधना पड़ रहा है या डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है। आंख में जोड़ पड़ रहा है तो आंख में क्या स्ट्रेन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, आंख सूखी हो जाती है, लाल हो जाती है, इतना ज्यादा यूज करते हैं लोग। नींद नहीं पूरी हुई तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, रात में नींद नहीं पूरी हुई। दूसरा है कि आपको जो चीज की लत लग गई, आदत है, उससे आपको दूर ले जाता तो भी चिड़चिड़ापन आपको महसूस होता है। तो ये स्वभाव, कुछ लोग तो यहाँ तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ बच्चों को अगर आदत लग गई आप उसको नहीं दीजिएगा तो इरिटेट होकर फिर वो डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगते हैं। उनको वो लगता है कि वो मेरा जीवन था, उसको मेरे से छीन लिया जा रहा है, जबकि हकीकत है कि जीवन तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारा खाना है, तुम्हारा भोजन है, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा जीवन ही है। वो मोबाइल के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड तुम्हारी जीवन नहीं है कि कंटेंट देख रहे हैं, कोई अच्छा गेम देख रहे हैं, वो मेरा जीवन है। खाना खाना है, पढ़ाई करना है, समाज में रहना। तो रियल वर्ल्ड से हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगते हैं, तो यह हकीकत को समझना पड़ेगा। उस तरह शारीरिक कीजिएगा, फिर मानसिक, और मानसिक के बाद फिर सामाजिक में भी हम अपने रिश्ते बिगाड़ने लग जाते हैं। किसी का फोन आता है तो हम मोबाइल में बिजी हैं, तो उसकी तरफ गया, अच्छा थोड़ी देर में बात बात करना, रील देख रहे हैं। तो या कोई आदमी आ गया मिलने, मैं डॉक्टर हूँ, इमरजेंसी में कोई मरीज आ गया, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, बेचारा मर रहा है, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, तो इससे कुछ नुकसान होता है।
1: बिल्कुल, यानी कि हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल के लोग मोबाइल फोन का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से गौर करें तो चूंकि इसका इस्तेमाल इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया आज के समय में, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उनका खुद का मोबाइल फोन हो चुका है। पहले लोगों के घर पे टेलीफोन हुआ करता था तो लोग आपस में सारे लोग मिलकर उसका इस्तेमाल करते, लेकिन अभी सभी के पास अपना खुद का मोबाइल है। और खास करके सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों में देखी जा रही है। तो बच्चों में अभी जो शिकायतें आ रही हैं कि वो खाना तक छोड़ देते हैं मोबाइल फोन के बिना, खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके जो माता पिता हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि किस उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए ताकि उनको फायदा हो सके, और कितनी देर के लिए मोबाइल फोन देना चाहिए?
0: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके संदर्भ में इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के कुछ नए रिकमेंडेशन है कि बच्चों के लिए क्या नियम होना चाहिए। पहली बात है, बच्चों में क्यों ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनका ब्रेन ग्रोइंग होता है, उनका मानसिक विकास पूरा नहीं, उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, फ्रंटल लोब ब्रेन की होती है, वो डेवलप नहीं की रहती है। जो हम बड़े आदमी हैं कि समझ में आता है जब कोई गलती करते हैं तो अरे गलती कर रहा हूं, तो उसमें यह गलत और सही का आकलन नहीं करने की क्षमता ये नहीं डेवलप करती है। तो बच्चा जो है रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है, छोटे छोटे कंटेंट देख रहा है, तो उसमें आवाज अच्छी आ रही है, मधुर फोटो है, मधुर गाने हैं, तो वो माँ बाप जो जिंदा आदमी सामने खड़ा है उससे ज्यादा चमकदार चीजें दिखती है, तो वो उसकी तरफ चला जाता है। उसके में सोचने की शक्ति नहीं कि ये मेरे पापा है, मेरे को खाना खिलाएंगे, ये मेरी मम्मी ये देंगे, ये मेरे टीचर ये पढ़ाएंगे, उसकी समझ नहीं रहती है। तो इसको देखते हुए इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कुछ सजेशन दिए, जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है भारतीय बाल चिकित्सा परिषद, उन्होंने बताया है कि 2 साल तक मोबाइल बच्चे को छूने भी नहीं देना है, 2 साल तक छूने भी नहीं देना है। अगर बहुत आप दूर रहते हैं अपने बड़े परिजनों से और आप चाहते हैं कि बच्चा उनसे बात करे तो बस खाली वीडियो कॉल तक में अपने साथ रख के वीडियो कॉल तक बात करा सकते हैं, उससे ज़्यादा मोबाइल नहीं देखने देना। ही नहीं कि मैं तोता बहुत लोग गाना सुनाते रहते हैं, या हाथी मोटू हाथी
1: क्या कर,
0: चुप करने के लिए, या खाना खिलाने के लिए, खाना बच्चा उस चक्कर में खाना नहीं खाने वाला तो उससे खाना खा रहा, वो खाना नहीं खा रहा, वो गेम देख रहा, उसका बेहोशी में उसके अंदर जा रहा है, वो खाना वो सही तरीके से पचता भी नहीं है, उसका फायदा भी नहीं होता, ओवर खा जाएगा तो मोटा हो जाएगा, अंडर खाएगा, सही खाना नहीं, उसको समझ नहीं आता क्या खा रहे हैं। तो उसके लिए 2 साल तक फोन नहीं देना है मोबाइल का खास करके, और 2 साल के ऊपर 2 से 5 साल तक 1 घंटा वो भी सुपरवाइज्ड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसमें 1 घंटा जो सुपरवाइज स्क्रीनिंग है, उसमें पढ़ाई के अलावा, जो पढ़ाई की जरूरत है उसके अलावा, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो मनोरंजन के है, मनोरंजन में आपको बैलेंस करना है, पढ़ाई में तो आप बैलेंस कर नहीं सकते, वो होमवर्क जो कोरोना का समय आया हमारी जरूरत बन गई, होमवर्क आ रहा है, मगर होमवर्क के अलावा जो काम है उसको आपको धीरे धीरे कट डाउन करना है, उसको आपको कैसे करना है, उसको बच्चे को समझाना है, उसको और तरीके में लुभाना है, उसको गेम्स करवाना है, आउटडोर एक्टिविटीज कुछ फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, गेम्स में साइकिलिंग हो गया, मनोरंजन गायन हो गया, इसमें उलझाना है कि उसको इंटरेस्ट दूसरी तरफ जगाना है, सो दैट उससे वो थोड़ा दूर हो और उसको उसमें आकर्षण जागे।
1: यानी कि कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जो कि उनको निभाना
0: होगा। 5 साल से ऊपर वाला जो है, आपको बच्चों को एक ऑनलाइन देखा है, बच्चा देख रहा है तो उसका कंटेंट पर नजर लॉक होना चाहिए, चाइल्ड लॉक के, आप जैसे टीवी में चाइल्ड लॉक होता था ये कंटेंट देगा, दूसरा मोबाइल में भी देखना क्या वो कंटेंट देख रहा है, उसके बाद आप पढ़ाई कर रहा है या दूसरा कुछ काम कर रहा है, तो आपको अपनी नजर रखनी है बच्चा सही चीज देख रहा है कि नहीं।
1: लेकिन आजकल तो सभी बच्चों के पास भी मोबाइल है,
0: जी जी,
1: पेरेंट्स खास करके इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कई बार, और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि हम सोच नहीं सकते हैं, खास करके बच्चों के मामले में।
0: जी जी।
1: लेकिन अगर हम शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों की बात करें मोबाइल फोन चलाने की और इसके लत की, तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकाग्रता यानी कि अपने ध्यान को एकाग्रचित होकर के जो काम करना होता है उसमें भटकाव देखा जा रहा है उनको, यानी कि वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। तो मोबाइल की वजह से यह सारी चीजें हो रही है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि
1: इसको ठीक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते?
0: ये जो छोटी छोटी रील्स हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो आपके छोटे छोटे चीजें उत्तेजित करने वाली हैं, वो आपका के लिए स्वाद बन जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। तो माता पिता या घर के काम या और सब जो चीजें हैं वो लंबी प्रोसेस है, छोटी चीज में आपको रिक्रिएशन मिल रहा है। आप एक देखा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पाँच मिनट करते करते वो घंटों पर रात जाग गए, तो इसमें आनंद आने लगता है। जबकि पिताजी बोले जाओ तो वो गमले में पानी डाल दो या चलो वहां पर से हम लोग ले आते हैं, वो इंटरेस्टिंग उसको नहीं लगता है। ये छोटे छोटे रील्स जो है, बहुत जगह देखिएगा रील का कम आने वाले समय में बैन लगने वाला है। ये छोटी रील पर जो शॉर्ट्स जो आ रहे हैं उस पर, किसी किसी कंट्री में तो मोबाइल पर ही बैन लग गया है। आपने सुना होगा बच्चों को मोबाइल नहीं,
1: 18 साल 16 साल 14 साल,
0: जिससे बहुत सारी कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वो बैन लग रहा है। वही लंबी 3 घंटे की फिल्म दिखाई तो शायद बच्चा नहीं बैठेगा, कोई 3 घंटा पढ़ाई वाला हो या 3 घंटा तो कम होगा। ये छोटे कंटेंट्स हैं और उत्तेजक जो कंटेंट है वो ज्यादा है, तुरंत तुरंत बदल रहा है, तो दिमाग भी तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है, तो मन की एकाग्रता खत्म हो रही है, तो उसके चलते वो इरिटेट ब्रेन आगे पीछे नाच रहा है दिन भर, और नाच रहा है तो इरिटेशन आ रहा है ब्रेन में।
1: यानी कि आप अगर लंबी चीजों को देखते हैं, अगर ज्यादा समय वाली जो वीडियोस हैं तो आपको फायदा होगा,
0: एकाग्रता है।
1: लेकिन अगर आप छोटी छोटी 30 सेकंड या 40 सेकंड 1 मिनट की वीडियोस को तुरंत
0: अटेंशन स्पैन आपका घटा रहा है,
1: तो इससे नुकसान
0: होगा। अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर बच्चों में होता है इससे।
1: क्या इससे मानसिक परेशानी भी हो सकती है?
0: एकदम होती है। बहुत लोगों को एक आपने बीमारी का नाम सुनूंगा आजकल बहुत कॉमन है, ऑटिज्म करके।
1: जी जी।
0: तो ऑटिज्म तो नहीं होता, मगर ऑटिज्म लाइक डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा माँ बाप से नहीं इंटरेक्ट करता है, आदमी से बात नहीं करता, वो किसी वस्तु मग्न हो जाता है। वस्तु मग्न मतलब आप खिलौने से खेल रहा है तो खिलौने से खेल रहा है, गाड़ी का एक चक्का चला रहा देख चला रहा है, उसको बोलिएगा बच्चा इधर आओ तो लगेगा बच्चा सुन नहीं रहा है, जबकि वो किसी और चीज में मग्न है, उसका दिमाग की वायरिंग उसकी जो है वो चेंज हो जा रही है, उस वायरिंग के हिसाब से वो अपने को एडजस्ट कर लेता है और वो समझता नहीं है। और इसको सुधारा जा सकता है अगर हम उसको ग्रेजुअली डिटॉक्स करें। डिटॉक्स करें मतलब उसको अदर एक्टिविटीज में खेल कूद में इन्वॉल्व करें और अपने भी रोल मॉडल बने। इसमें माता पिता को सबसे पहले, हम खुद मोबाइल देखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि मत देखो तो वो कहां से होगा, इसलिए रोल मॉडल भी बनना। तो वो हमको एक दिन एक आवर फिक्स करना होगा कि हम एक को मोबाइल को अपनी संयम बनाना पड़ेगा, दूर रखेंगे और उसके बिना वाली एक्टिविटीज कराएंगे धीरे धीरे। आप 2 घंटे के लिए करें, हफ्ता में 1 दिन करें, फिर 3 दिन करें, ग्रेजुअली उस बच्चे को उस चीज दूर करने के लिए, और तब तक में उसके और उपाय करें, बच्चे को और कामों में व्यस्त रखें और उसके साथ समय गुजारें, क्योंकि बच्चा एक बार बिगड़ जाएगा तो आप कमाई हुई सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चा हाथ से निकल, कितने बच्चों को मैंने देखा है कि एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, उसके चलते बहुत गलत आदतों में चले जाते हैं, बुलिंग होने लगता है, बच्चों को कोई तंग करने लगता है दूसरा, तो उसके चलते सुसाइडल अटैक्स होने लगते हैं, तो आप बच्चा ही खुद देंगे, तो क्यों नहीं हम उसके लिए घर में कुछ करें। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी अगर जो समझेगा तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक साइकेट्रिक के ओपीडी में होते हैं जो साइकेट्रिक के डॉक्टर हैं, उनके यहाँ भेजा जाता है। वो एकदम एक्सट्रीम है, मगर हम मैक्सिमम केसों को अपने घर पर ठीक कर सकते हैं, काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं।
1: यानी कि मोबाइल भी एक लत की तरह है, नशे की तरह है, अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका जो नशा है वो सर पे चढ़ सकता है और आप मानसिक और शारीरिक रूप से अपना जो संतुलन है वो भी खो सकते हैं और काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने काफी अच्छी जानकारी दी, और जो भी पेरेंट्स इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को और खुद के प्रति भी जागरूक हो जाएं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ उतनी देर के लिए करें जितना आपका काम हो जाता है, और खास करके इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ करना ही सही नहीं है बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस विषय पर हमने आपको जानकारी दी, और हमारे साथ में थे आज डॉक्टर श्याम सिडाना। सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी से कामना करूंगा कि आप रियल वर्ल्ड में जिए, ना कि रील वर्ल्ड में। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और अब हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों के बारे में, और हम अपने कार्यक्रम में हर बार किसी नए वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन के पहलुओं के बारे में जानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है आर्किमिडीज।
2: नाम हम सभी ने सुना होगा और इनके बारे में बहुत सारे लोगों को काफी कुछ जानकारी भी होगी, लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि प्राचीन विश्व के इस महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, अभियंता

और आविष्कार की प्रतिभा बहुत विशाल है और विज्ञान के इतिहास में कुछ ही ऐसे नाम होते हैं जिनकी खोज सदियों के बाद भी हमेशा के लिए याद रह जाती है। आर्किमिडीज उन्हीं महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। इन्हें गणित और भौतिक विज्ञान का आधार स्तंभ माना जाता है। इनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीक के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आर्किमिडीज का जन्म लगभग 287 ईसा पूर्व यूनान के सिसिली द्वीप के सिराक्यूज नामक नगर में सिराक्यूज नाम के एक जगह पर हुआ था। इनके पिता एक खगोल शास्त्री थे, इसलिए बचपन से ही इन्हें विज्ञान और गणित का वातावरण मिला। कहा जाता है कि आर्किमिडीज बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। हर वस्तु और हर घटना के पीछे छिपे कारण को जानना इनकी फितरत सी थी। यही जिज्ञासा आगे चलकर इन्हें विश्व का महान वैज्ञानिक बनाने में काम करती है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आर्किमिडीज मिस्र के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र अलेक्जेंड्रिया चले गए। उस समय अलेक्जेंड्रिया ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। वहां से इन्होंने गणित, ज्यामिति, भौतिक विज्ञान और खगोल विज्ञान का गहरा और गहन अध्ययन किया। ये घंटों तक समस्याओं को हल करने में लगे रहते थे। इनका मानना था कि प्रकृति के हर रहस्य को गणित के माध्यम से समझा और सुलझाया जा सकता। आर्किमिडीज केवल सिद्धांतों तक सीमित वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक महान आविष्कारक के रूप में भी कार जाने जाते हैं। इन्होंने कई ऐसे उपकरण बनाए जिनका उपयोग लोगों की दैनिक जिंदगी में आज भी होता है, जिसका इस्तेमाल आज भी लोगों की दैनिक जीवन में होता है। इनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कारक था आर्किमिडीज स्क्रू। यह एक विशेष प्रकार की मशीन थी जिसके माध्यम से पानी को नीचे से ऊपर उठाने का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग खेतों की सिंचाई और जल निकासी में भी किया जाता था। आज भी आधुनिक तकनीक में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, लेकिन आर्किमिडीज को सबसे अधिक प्रसिद्धि उत्प्लवन सिद्धांत के कारण मिली। इस सिद्धांत की खोज से जुड़ी एक रोचक कहानी भी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सिराक्यूजा के राजा ने एक सुनार को सोने का मुकुट बनाने का आदेश दिया। मुकुट बनने के बाद राजा को संदेह हुआ कि कहीं सुनार ने उसमें चांदी तो नहीं मिला दी है। राजा ने ये रहस्य जानने की जिम्मेदारी आर्किमिडीज को सौंप दी। कई दिनों तक सोचने के बाद भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ पाया। एक दिन जब वे स्नान करने के लिए पानी से भरे टब में उतरे, तब उन्होंने देखा कि उनके शरीर के प्रवेश करते ही पानी बाहर निकलने लगा। तभी उन्हें ये समझ आया कि किसी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी की मात्रा से उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। उसी क्षण वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और यूरेका यूरेका कहते हुए सड़क पर दौड़ने लगे। यूरेका का अर्थ है मैंने खोज लिया। उनका ये प्रसिद्ध सिद्धांत आज भी विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्किमिडीज ने गणित के क्षेत्र में भी कई अद्भुत कार्य किए। इन्होंने वृत्त, गोले और बेलन के क्षेत्रफल और आयतन निकालने की नई विधियों को भी विकसित किया। इनके सिद्धांतों का उपयोग आज भी इंजीनियरिंग, वास्तुकला और अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है। आर्किमिडीज युद्ध तकनीक में भी काफी कुशल थे। जब रोम की सेना ने सिराक्यूज पर आक्रमण कर दिया, तब इन्होंने नगर की रक्षा के लिए कई अद्भुत यंत्र बनाए। इन्होंने विशाल गुलेल, यांत्रिक हथियार और ऐसे उपकरण बनाए जो दुश्मनों के जहाजों को पल भर में नष्ट कर सकते थे। कहा जाता है कि इन्होंने कई बड़े दर्पणों की सहायता से सूर्य की किरणों को केंद्रित कर दुश्मन के जहाजों में आग लगाने का भी प्रयास किया था। इन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम भी है। आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी दुनिया इन्हें सम्मान के साथ याद करती है। विज्ञान के विद्यार्थी, शोधकर्ता और वैज्ञानिक आज भी इनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए इनकी खोज को आगे बढ़ाते हुए नई नई तकनीकों के प्रति शोध करते रहते हैं। तो ये हमने आपको आर्किमिडीज के बारे में बता दिया और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम एक ऐसे पटरी के बारे में। आए दिन हम उससे सफर करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आविष्कार की जिसने दुनिया में यातायात और व्यापार की तस्वीर बदलने का काम किया। ये आविष्कार है रेल पटरी यानी रेलवे ट्रैक। आज रेलगाड़ियां हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। लाखों लोग प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं और भारी मात्रा में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेन में हम चढ़ते हैं, वह ट्रेनें जिन लोहे की पटरियों पर दौड़ती हैं, उनका आविष्कार कैसे हुआ होगा? तो हम आपको ये बताते चलें कि रेल पटरी का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय में लोग भारी सामान ढोने के लिए लकड़ी के बने रास्तों का उपयोग करते थे। खदानों से कोयला और पत्थर निकालने के लिए लकड़ी की पटरियां बनाई जाती थी, जिन पर पहियों वाले छोटे वाहन चलाए जाते थे।
इससे भारी सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किया जा सकता था। धीरे धीरे लोगों ने महसूस

महसूस किया कि लकड़ी की पटरियां जल्दी टूट जाती हैं और अधिक भार सहन करने में भी सक्षम नहीं होती हैं। इसके बाद लकड़ी की जगह लोहे की पटरियों का उपयोग शुरू हो गया। यही आधुनिक रेल पटरी की शुरुआत मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान रेल व्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। उस समय इंग्लैंड में कोयले और अन्य वस्तुओं को कारखानों तक पहुंचाने के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता ने रेल पटरी और रेलवे तकनीक को जन्म देने का काम किया। रेलवे के विकास में कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक योगदान है, लेकिन जॉर्ज स्टेफेंसन का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन्हें रेलवे का जनक भी माना जाता है। इन्होंने आधुनिक रेलवे इंजन और मजबूत रेल पटरियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1825 में इंग्लैंड में दुनिया की पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन शुरू की गई थी। यह रेलवे लाइन स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच बनाई गई थी। इस रेल मार्ग पर भाप इंजन से चलने वाली ट्रेनें दौड़ा करती थी। ये मानव इतिहास में परिवहन के क्षेत्र में एक नई क्रांति शुरू हो गई थी। रेल पटरी का निर्माण विज्ञान और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। रेल की पटरियां विशेष प्रकार के मजबूत स्टील से बनाई जाती हैं, ताकि वे भारी ट्रेनों का वजन सह सके। दो समानांतर पटरियों के बीच दूरी को गेज कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से ब्रॉड गेज का उपयोग किया जाता है। रेल पटरियों के नीचे लकड़ी, कंक्रीट या लोहे के स्लीपर लगाए जाते हैं, जो पटरियों को मजबूती और संतुलन प्रदान करने का काम करते हैं। इसके नीचे पत्थरों की परत बिछाई जाती है, जिसे बैलेस्ट कहा जाता है, या ट्रैक को स्थिर रखने और कंपन कम करने में मदद करता है। रेल पटरी के आविष्कार ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का काम तो किया ही। पहले जहां लंबी यात्राएं करने में कई दिन या सप्ताह लग जाते थे, वहीं रेलगाड़ियों ने यात्रा को तेज, सुरक्षित और सस्ता बनाने का काम किया। व्यापार बढ़ा, उद्योगों का विकास हुआ और लोगों के बीच संपर्क भी मजबूत हुए। में रेलवे का इतिहास काफी रोचक है। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चलाई गई थी। इस ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया। आज भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। लाखों यात्री प्रतिदिन ट्रेन से सफर करते हैं। आधुनिक तकनीक के कारण अब हाई स्पीड ट्रेनें और मेट्रो रेल भी विकसित हो रहे हैं। रेल पटरी केवल लोहे की लाइन नहीं है, बल्कि ये विकास, प्रगति और लोगों को जोड़ने का माध्यम है। इसने शिक्षा, व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को नई दिशा दी है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमें रेलवे ट्रैक के आसपास साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए, पटरियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमने आपको रेलवे ट्रैक यानी कि रेल पटरी के आविष्कार के बारे में बता दिया और आज हमने ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियां आपसे साझा कर ली और अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने देश को विकसित करने में हम अपना योगदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अथक प्रयासों को करते हुए आज हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है और विश्व पटल पर एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। तो हम इसी तरह अपनी ऊर्जा बनाए रखें, देश को इसी तरह मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ आगे लेकर बढ़ते रहें। इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे लेते विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: विज्ञान जगत, इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। विषय था मोबाइल फोन की लत और इसके दुष्प्रभाव के बारे में। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर श्याम सिडाना, भेंट करता थे बसंत कुमार और प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम जुहार रांची बस थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 550 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी रांची की विविध आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। ये वक्त है कार्यक्रम जोहार रांची का और मनोरंजन और जानकारियों से भरा कार्यक्रम को लेकर आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ कंचन
1: और मैं हूँ आभा। हाँ, सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार जोहार।
1: तो कंचन कैसी हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ आभा, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी अच्छे होंगे।
0: हाँ, तो शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जैसा कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छी बातों के साथ, है ना? हाँ, तो आज बताते हैं आज का सुविचार।
1: हाँ बिल्कुल। तो आज के दौर में हम अधिकतर अपने सेल्फ डाउट और काबिलियत पर शक करने लग जाते हैं। हम अपनी सीमाओं को खुद ही तय कर लेते हैं, जबकि असलियत में हमारी क्षमता असीमित होती है।
0: हाँ, और उस असीमित क्षमता को पहचानने की जरूरत है। बस एक बार डर को पीछे छोड़कर छलांग लगाने की देरी होती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं ना, तो कुदरत भी आपके लिए रास्ते बनाते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची अपनी दोस्त कंचन और आभा के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं अब मौसम की।
1: हाँ, तो आपको बताएं, झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और ऐसे में आजकल बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात भी बहुत तेज हो रहे हैं।
0: हाँ, और झारखंड में इस बार मानसून के समय में पहले पहुंचने की संभावना प्रबल होती दिख रही है और मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि 19 मई तक राज्य के लगभग सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और इस दौरान तेज हवा, वज्रपात और बारिश की संभावना देखते हुए नजर आ रहे हैं। और आभा, ये तो बारिश तो हो ही रही है, लेकिन हमें इस बारिश में ना कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी वज्रपात जिस तरह से हो रहा है ना, तो अपना खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
1: हाँ, तो ऐसे में कोशिश करें कि बिजली चमकने और गर्जन के दौरान टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी अन्य

0: उपकरणों का उपयोग ना करें।
1: हाँ, और इसके अलावा आप जैसे कि जो लोहे के जो खिड़की या फिर दरवाजे जो बने हैं उस जगह आप नहीं बैठे, ना ही घर में रहे तो खिड़की दरवाजा बंद करके रहे।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और समय समय पर आप हमारे जो स्थानीय न्यूज हैं, रेडियो हैं या फिर कोई अन्य संचार है, या फिर अभी जैसे कि आपदा प्रबंधन के द्वारा भी हमें आधे घंटे एक घंटे पहले हमें सूचना भी दे दिया जाता है।
0: हाँ।
1: तो आप जब भी घर से निकले अपना ध्यान जरूर रखें।

0: दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं आज के दिन की, आज के इतिहास की।
1: तो कंचन, इतिहास के पन्ने अगर हम पलटे तो जानेंगे कि 14 मई 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के बजाय लोकसभा के नाम से जाना जाने लगा।
0: हाँ, आज ही के दिन से। और 1992 में भारत सरकार की ने श्रीलंका के विद्रोही समूह लिटे LTTE पर प्रतिबंध लगाया था, आज ही के दिन।
1: और 2007 में जापान ने अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी।
0: हाँ, और आज ही के दिन 2010 में भारत रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए थे आज ही के दिन।
1: तो हम इतिहास की बातें कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि आज किन हस्तियों का जन्म हुआ था। तो 14 मई 1657 में संभाजी, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आपको बता दें 1892 में अरुण चंद्र गुहा, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था।
0: और 1883 में जन्मे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और
1: 1923 में भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक रहे मृणाल सेन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
0: हाँ, और आज आपको बताया कि आज राजकुमार बड़जात्या, जो कि भारतीय फिल्म उद्योग के एक दिग्गज निर्देशक निर्माता थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और बता दें कि वे राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले पारिवारिक और ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। और वे हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक सूरज बड़जात्या के पिता थे। आपको बताया कि उनकी मुख्य फिल्मों में पिया का घर, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, प्रेम रतन धन पायो जैसे कई हिट फिल्में उन्होंने हम सबको दी। तो आइए उन्हीं के फिल्म से सुनते हैं एक गीत।
2: सुख

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: कंचन जोहार, हाँ? रांची में अब हम बातें करते हैं सेहत की।
4: हाँ?
3: जैसा कि मौसम में बार बार हो रहे बदलाव का असर जो है अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह शाम ठंडक और दिन में तेज गर्मी के कारण वायरल बुखार, डायरिया और टाइफाइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके बच्चों में।
4: हाँ, और ऐसे बदलते मौसम में अपनों का सबका ख्याल रखने की जरूरत है, है ना।
3: हाँ।
4: उमस के कारण पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है ऐसे में, इसलिए हल्का भोजन करें जो आसानी से पच सकते हैं, और खाना हमेशा ताजा खाए और गर्म खाना खाए, खुला या स्ट्रीट फूड खाने से बचे, क्योंकि इससे पेट के संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है जिस तरह से अभी मौसम चेंज हो रहा है।

0: है ना। और इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व के लिए आप अपने आहार में हर्बल चाय, ताजे जूस, सूप, नींबू पानी, नारियल पानी जैसे पदार्थ लें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। और अभी जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ऐसे में पानी का जमना तो लाजमी है, तो रुके हुए पानी को जमने ना दे और गड्ढे को भर दे, है ना।
1: और बताएं आपको कंचन कि टाइफाइड से बचने के लिए जो है साफ सफाई और सुरक्षित खान पान सबसे ज़रूरी है, जिसमें खाना खाने और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ
1: और कोशिश करें केवल उबला, फिल्टर या सुरक्षित पानी पिए। बाहर खुले में बिकने वाले कटे फल, चाट और दूषित भोजन करने से बचें। ताजा, गर्म और अच्छी तरह पका भोजन ही खाएं, फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर खाएं और खासकर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
0: हाँ
1: और जरूरत पड़ने पर आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर
0: जरूर
1: लें।
0: ले। हाँ, और जिस तरह से अभी मार्केट में जो सब्जी मिल रही है, फल मिल रहे हैं, उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर खाने की ज़रूरत है। और घर में हम फल फ्रूट्स को जितने अच्छे से खा सकते हैं ना, बाहर खुले में उतने अच्छे मिलेंगे नहीं हमें, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो अपना ध्यान रखें।

0: तो कंचन, जो
1: हाँ
0: राज्य में आज हमारे पास समय कम है, तो आज के लिए बस इतना ही।
1: हाँ
0: तो अपनी दोस्त कंचन और आभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार,
1: नमस्कार, जोहार।
0: जोहार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम स्वर यात्रा। पूर्व केंद्र निदेशक आकाशवाणी रांची रोजिन लकड़ा से प्रभु सरन की बातचीत, प्रस्तुति एवं वाचन स्वर प्रभु सरन की और सहयोग बसंत कुमार का।

0: स्वर यात्रा के 90 वर्ष भारत का लोक सेवा प्रसारक के रूप में भारत की संस्कृति और लोक परंपरा को सहेजते हुए लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाते हुए लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करते हुए आकाशवाणी की 90 वर्ष की यात्रा पर आकाशवाणी रांची की विशेष प्रस्तुति। इस कार्यक्रम में हम आकाशवाणी के अधिकारियों, कलाकारों, पत्रकारों, साहित्यकारों और श्रोताओं के अनुभवों और विचारों को साझा करेंगे जो आकाशवाणी के इस सुनहरे सफर में हमेशा हमारे साथ बने रहे और आज भी उतने ही सक्रिय हैं। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रांची की पूर्व केंद्र निदेशक श्रीमती रोजिन लकड़ा। आप श्रोताओं के बीच सुगिया बहन के नाम से भी जानी जाती रही हैं। नमस्कार मैडम।
1: नमस्ते प्रभु शरण जी और मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, अभिनंदन करती हूं आज के इस पुनीत अवसर।
2: ये 90 वर्ष जो आकाशवाणी पूरा कर रहा है, इस अवसर पर क्या भाव आपके दिल में उमड़ रहे हैं?
1: मुझको तो बहुत खुशी हो रही है प्रभु शरण जी कि आज प्रसारण के 90 वर्ष हो गए और इतनी लंबी अवधि तक आप सभी हमारे श्रोतागण हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारा आपका संबंध बना हुआ है 90 वर्षों से। जो भी की आकाशवाणी रांची के स्थापित हुए तो 1957 ईस्वी में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई है और तब से लेकर आज तक का ये जो लंबा सफर है, इस दरमियान हमारे श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आकाशवाणी से जुड़े रहना ही उचित समझा और विभिन्न चैनल होते हुए भी वे हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं को जान करके हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे श्रोता इतने प्रबुद्ध, इतने जानकार श्रोता हैं कि वो आकाशवाणी से जुड़े रहना अच्छा मानते हैं और आज तक अपने विचारों और सुझावों से हमें अवगत कराते हैं।
2: अगर मैं कहूं कि आकाशवाणी के जो भी आपके स्मरण हैं, जो पुरानी यादें हैं, उनमें से कुछ एक दो जो बहुत आपके दिल के करीब हैं, उन यादों को अगर श्रोताओं से साझा करें।
1: जब मैं आकाशवाणी में आती थी, मैं खुद भी मेरे लिए एकदम से अनजान जगह थी, लगता भी नहीं था कि अभी हम यहाँ आ रहे हैं स्टूडियो में, कुछ बोलेंगे, बात करेंगे तो इतने इतने लोग सुनेंगे, कुछ पता ही नहीं चलता था क्योंकि हम लोगों के लिए भी रेडियो नई चीज थी और इसलिए कुछ लगता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो जब प्रभु शरण जी चिट्ठियाँ आती थी ना, एक एक दिन में 100-100 चिट्ठियाँ आती थी एक दिन में। मेरे साथ उसमें रामू काका बैठते थे, मगन भाई, सुगिया बहन, शिबू भाई, हम लोग इतने लोग ग्रामीण कार्यक्रम में बैठते थे। मेरी बहाली ग्रामीण कार्यक्रम के कॉम्पेयर सुगिया बहन के रूप में हुई थी। मुझको लगता ही नहीं था कि हम लोग स्टूडियो के अंदर हैं। जो भी विषय रहता था उस पर हम लोग बातचीत करते थे। आज करम का त्योहार है तो करम त्योहार के बारे में बातचीत करते थे। आज जगन्नाथपुर मंदिर का रथ मेला है, हम लोग रथ मेला जाएंगे, बच्चे होते थे। एक बार तो मैं बच्चों को ले करके गाड़ी में बैठ करके, बच्चे जो बच्चों के प्रोग्राम में आते हैं उनको ले करके यहाँ से हम लोग जगन्नाथपुर गए थे बच्चों को ले करके, तो बच्चों को जानकारी देते हुए कि बाबू अभी हम लोग मेन रोड पार कर रहे हैं, मेन रोड पार करते करते हम लोग ओ देखो उधर पहाड़ी जो दिखाई दे रहा है जगन्नाथपुर, उस ओर हम लोग जाएंगे। और बच्चों को उसमें तो इतने इतने घर सब नहीं थे, गाछ वृक्ष से भरा हुआ था हमारा रांची शहर और मेन रोड के दोनों ओर गाछ वृक्ष, और बहुत ही अच्छा लगता था आने जाने में, घूमने फिरने में। बच्चों को लेकर के हम वहाँ तक गए जगन्नाथपुर मंदिर और बच्चों को लेकर के हम ऊपर तक चढ़ गए, बच्चों को दिखलाते हुए कि ये मंदिर है, देखो यहीं पर पूजा आराधना होती है और आज के दिन जगन्नाथ रथ मेले का दिन है बाबू, तो देखो कैसे भीड़ आई हुई है, कितनी कितनी दुकानें सजी हुई हैं, कुछ बासन बर्तन के सामान बिक्री कर रहे हैं, कोई अपनी और दूसरी सामानों को लाया है, कोई बीज लाया है, कोई खाद लाया है, कोई कपड़े लेकर के आया है, कोई रंग बिरंगी बैलून लेकर के आए हैं बच्चों को दिखलाने के लिए, और रथ मेले के झूले लग गए हैं बाबू। देखो बच्चों को जब हम पूछते हैं क्या तुम लोग भी झूले में चढ़ोगे बैठोगे, तो बच्चे खुशी खुशी बोलते हैं।

0: हाँ दीदी, मैं भी बैठूंगा रात में, मैं भी झूलूंगा। इस तरह का वातावरण था बाबू उस समय मेले की, पूरी झांकी हम लोग बच्चों को दिखा पाए और बच्चे भी वहाँ से खुशी खुशी हम लोग लौट आए थे।
1: आकाशवाणी एक ऐसे माध्यम के रूप में जाना जाता है

0: के समाज में, सामाजिक परिदृश्य में आकाशवाणी की भूमिका तब और आकाशवाणी की भूमिका अब, इन दोनों को आप कैसे देखती हैं?
1: आकाशवाणी का जो रोल है ये किसी भी हालत में कमतर आंका नहीं जा सकता है। इसने बेटों को आगे बढ़ने के लिए बहुत तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं हमारे यहाँ से, और जो शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षक हैं, वो बीच में आ करके बच्चों को, लड़के लड़कियों को ये सिखलाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं कि आज ये विज्ञान का युग है, आज कंप्यूटर का युग है और इसमें आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और हमारे बच्चे भी ध्यान दे रहे हैं, ज्यादातर तो आप कंप्यूटर की ही पढ़ाई करके इंजीनियर बन रहे हैं। छोटे से छोटे परिवार में भी एक साधारण पढ़ा लिखा माँ बाप भी जैसा बच्चा चाह रहा है उनको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं प्रोत्साहित हो करके। माता पिता चाहे सब्जी बिक्री कर रहे हैं, चाहे धोबी की दुकान में कपड़े की धुलाई कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी साधारण सा काम, बच्चे उनके बहुत जागरूक हो गए हैं इस परिवेश को देख करके, आधुनिक परिवेश को देख करके, और आकाशवाणी के माध्यम से उनको जानकारी भी मिल रही है और बच्चे इसका फायदा उठाते हुए भिन्न भिन्न जगहों में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और रेडियो की भूमिका इसमें बहुत बड़ा रोल है।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के कर्मियों, हमारे श्रोताओं, कलाकारों, इन सब के लिए आपका क्या संदेश है?
1: मैं अपने सभी आकाशवाणी परिवार से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, चाहे वो प्रोग्राम साइट के हों या इंजीनियरिंग साइट के हों या अकाउंट्स एडमिन हो या फिर हमारे सुरक्षा प्रहरी के जवान जो इसकी रखवाली करते हैं, मैं सभी लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि 57 से रेडियो स्टेशन खुला है और आज तक जिस जगह पर ये रातू रोड में यहाँ पर ये अवस्थित है, जिस स्थान पर जिसको मैंने 64 में देखा वो आज तक यहीं पर अवस्थित है, सही सलामत है, और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स बड़े मुस्तैदी के साथ प्रतिदिन के कार्यक्रमों का निर्धारण कर रहे हैं। समय के अनुसार अगर आज तीज है तो तीज के कार्यक्रमों के गाने बजाए जा रहे हैं, अगर आज दशहरा है तो दशहरे का क्या महत्व है सभी लोग नहीं जानते हैं, बच्चों को दशहरे की जानकारी दी जा रही है, इसके लिए उचित वार्ताकारों को बुलाया जाता है और वो अच्छी अच्छी वार्ताएं देते हैं, इससे संबंधित नाटकों का प्रसारण होता है, कविताएं होती हैं, संगीत से भरपूर हमारा कार्यक्रम आज तक हमारे श्रोताओं को बांधे रखा है और हमारे श्रोता, हमारे कार्यक्रम अधिकारी और जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उनकी बातों को सुन सुन करके बहुत अच्छा लगता है। प्रसारणों का निरंतर प्रवाह जारी है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सभी लोगों को एक श्रोता के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु शरण जी नमस्ते।
0: धन्यवाद मैडम, आपने आकाशवाणी के साथ बिताए उन वर्षों को याद किया, उन किए गए कार्यों के अनुभवों को साझा किया और हमारे श्रोताओं को, हमारे सभी सहकर्मियों को शुभकामनाएं दी, संदेश दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची की 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम पूर्व केंद्र निदेशक आकाशवाणी रांची के रोजलिन लकड़ा से प्रभु सरन की बातचीत। प्रस्तुति एवं वाचन स्वर प्रभु सरन की, सहयोग बसंत कुमार का। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म सीत मगर सी, आशा भोसले और किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और संगीत आर डी बर्मन का है।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वक्त है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का, और आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त कंचन। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत लेते हैं आपकी पसंद पर। फिल्म दीवाना से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में नदीम श्रवण का संगीत है और इस गीत को लिखा है आर डी बर्मन ने। इस गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अगली फरमाइश आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर वीरक जयतेग वीरक मीका वीरक सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा सोनम थापा रेशमा थापा आदिबा थापा बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम सरफुद्दीन डोम कुमारी वली डोम डब्लू डोम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म जीत सी। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में समीर की रचना है और संगीत नदीम श्रवण का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, अपनी दोस्त कंचन के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत सुनेंगे फिल्म अखियों के झरोखे से। इस गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं इंदिरा विहार रायगढ़ से, अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सैयद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्लाह नूरजहां, राज नांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज में, सचिन पिंगला पिलगांवकर और रंजीता कौर की रचना है और संगीत रविंद्र जैन का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज़ में। इस गीत को लिखे थे रविंद्र जैन ने और संगीत भी इन्हीं का था। इसी गाने के साथ आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपनी दोस्त कंचन को दीजिए विदा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: जयलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका।
1: बहनों, स्वीकार करें महज़वीन का भी प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी।
0: हाँ महज़वीन, बहनें व्यस्त तो बहुत रहती हैं, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ता है ना? और निकालना भी चाहिए वक्त अपने लिए। बहनों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यूं तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है जो हमें लगता है

0: कि प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए और प्रकृति के साथ जितना हो सके वक्त बिताना चाहिए, है ना मेज़बिन?
1: सही कहा निधि। स्वच्छ जल, धूप, ताज़ी हवा, हरी हरी घास, पक्षियों का जो चहचहाट है ना, ये सभी प्रकृति हमें देती है। ये सभी चीज़ें हमें बिना किसी मूल्य के मिल जाती है, हमें इसके लिए प्रकृति का आभार प्रकट करना चाहिए।
0: बिल्कुल, हमें इसके बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ता प्रकृति को, और देखो कितनी अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं कि अगर इनके नज़दीक हम आ जाएं तो अपने आप हमारा मन बिल्कुल बदल सा जाता है ना। तो प्रकृति हमें बहुत सारे संदेश भी देती है मेज़बिन। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ।
1: समझ रहे हो क्या कहती है और गिर गिर कर तरल तरंग भर के, जो जल भर के अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग।
0: वाह। और पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नब कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो जो अभी हम जो बातें कर रहे थे ऊंचे पर्वत के बारे में, गहरे सागर के बारे में, ताज़ी हवा, पंछियों की जो बोली है उसके बारे में, तो ये हमें ताज़गी देते हैं, खुशियाँ देते हैं मेज़बिन, लेकिन साथ ही बहुत सारे जो हैं वो संदेश भी देते हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता?
1: बहनों, जो इनके प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि प्रकृति के प्रति हमारा मुख्य कर्तव्य है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना, पेड़ पौधे लगाना, पानी और ऊर्जा की बचत करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना है। प्लास्टिक तो अगर देखा जाए बहनों, तो ये है समझिए कि हमारे जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का जो ये हम विवेक पूर्ण उपयोग करें, यानी कि अगर हम इसका दोहन ज़्यादा करेंगे तो आगे जो हमारा जो भविष्य है वो ज़्यादा ख़राब होने के

है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे कदम हैं जिसे हम उठा सकते हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए। और बहनों, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए और मौजूदा वनों की रक्षा भी करनी चाहिए, नदियों, तालाबों और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। जैसा महजबीन ने बताया कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करें, तो अक्सर देखते हैं कि जो जलाशय हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उसके आसपास लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वक्त बिताने जाते हैं और प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है या जो भी कचरा है उसे जलाशयों में डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।

0: कि जो जलाशय हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उसके आसपास लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वक्त बिताने जाते हैं और प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है या जो भी कचरा है उसे जलाशयों में डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
1: बिल्कुल गलत। हाँ।

0: प्रदूषण ना फैलाएं, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे ये जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सब ना हो। तो अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूरी हम अपनी प्रकृति की देखभाल कर सकते हैं, और जो नैतिक कर्तव्य की बात हम कर रहे थे वो हम अच्छे तरीके से निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जब हम प्रकृति की बातें कर रहे हैं महज़बीन, तो चलें प्रकृति की गोद में और सुनवाते हैं बहनों को ये गीत।

वायु प्रदूषण है, ये सब ना हो। तो अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूरी हम अपनी प्रकृति की देखभाल कर सकते हैं और जो नैतिक कर्तव्य की बात हम कर रहे थे वो हम अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। तो जब हम प्रकृति की बातें कर रहे हैं महज़बीन, तो चलें प्रकृति की गोद में और सुनवाते हैं बहनों को ये गीत।

0: के अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रख कर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनों, फिर से स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में और हम चलते हैं निधि की ओर। निधि आगे प्रोग्राम में है क्या?
4: तो बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है भेंट वार्ता। आज का विषय है महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की जरूरत, बचत और निवेश की समझ। आज की हमारी मेहमान हैं इंदु श्रीवास्तव और इनसे बातें कर रही हैं हमारी ही सखी महजबीन परवीन। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: बहनों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि वित्तीय साक्षरता महिलाओं के लिए कितना जरूरी है। तो जिस तरह से महिलाओं को जागरूक करने के लिए बहुत सारी बातें हैं हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से देते रहते हैं, तो आज हम वित्तीय साक्षरता, हमारा आज का जो टॉपिक है बातचीत का, वो कि वित्तीय साक्षरता महिलाओं के लिए जागरूकता का एक पहलू भी है और इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। धन प्रबंधन, बजट, बचत, निवेश और ऋण लेने की समझ भी इस सारी चीजें में आती है और बहुत सारी बातें हैं जो आज हम जानेंगे अपनी मेहमान के माध्यम से। तो आज हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, हमारी आज की मेहमान है इंदु श्रीवास्तव। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार मैम
5: जी। तो हमें और हमारी सभी बहनों को आप सबसे पहले ये जानकारी दें कि महिलाओं को जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के समय में, और वित्तीय साक्षरता तो और भी ज्यादा जरूरी है। इसे आप किस तरह से देखती हैं और इसे हमारी सभी बहनों को किस तरह से समझाएंगी?
6: सभी बहनों को मेरा नमस्कार। वित्तीय साक्षरता यानी पैसों की सही समझ आज के समय में महिलाओं का जागरूक होना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बेहद महत्वपूर्ण भी है, खासकर वित्तीय साक्षरता के मामले में। वित्तीय साक्षरता महिलाओं को यह समझने में मदद करती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और बढ़ाया जाए, इवन सही निवेश भी कैसे किया जाए। सिर्फ बचत करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि सही जगह निवेश भी किया जाना इम्पोर्टेंट है। आर्थिक निर्णय खुद कैसे लिया जाए, वित्तीय साक्षरता से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनती ही हैं, साथ ही यह उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में भी बहुत मजबूत बनाता है। घर का बजट हो, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य की प्लानिंग, अगर महिला को वित्तीय जानकारी है तो वो बेहतर और समझदारी से निर्णय ले सकती है। जीवन में कभी कभी अचानक आने वाली परिस्थितियों जैसे घर में बीमारी किसी का अचानक आ जाना या नौकरी का जाना, इसमें वित्तीय समझ और बचत बहुत ही काम आती है। इससे महिला खुद को और अपने परिवार को संभाल सकती है क्योंकि महिला किसी भी परिवार की रीढ़ होती है। तो वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है परिवार के लिए और महिलाओं को ये जानकारी

0: होना। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड या गलत निवेश योजनाएं भी बहुत बढ़ रही हैं। अगर वित्तीय रूप से जागरूक रहेंगी महिलाएं तो इनसे बच सकती हैं और सुरक्षित फैसले भी ले सकती हैं। जब महिलाएं ही आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार और समाज मजबूत बनता है और वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। तो एक वित्तीय साक्षर महिला सशक्त परिवार और एक मजबूत समाज की नींव होती है। तो महिलाओं का साक्षर होना वित्तीय रूप से बहुत ही जरूरी है।
1: जी मैम, और हमारी जो महिलाएं हैं, यहाँ महिलाएं अक्सर अपनी बचत में कुछ पैसे बचा कर रखती हैं भविष्य के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरह से बचत कर सकती हैं, कहाँ कहाँ निवेश कर सकती हैं, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं?
0: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं बल्कि उसे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ करें? क्योंकि महिलाएं अक्सर परिवार की फाइनेंशियल मैनेजर होती हैं और महिलाएं पहले से ही बचत में माहिर भी होती हैं। वे अपनी सेविंग को और स्मार्ट तरीके से बढ़ा सकती है। सबसे पहले तो उनको अपना लक्ष्य तय करें कि मुझे बचत किसके लिए करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट के बाद, शादी ब्याह के लिए। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है ना लेडीज का, तो बचत करना और भी आसान और अनुशासित हो जाता। एक नियम मैं बताऊंगी, जैसे एक नियम हमेशा अपनाएं लेडीज, 50-30-20। जैसे 50% जरूरी चीजों पर वो खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं पर खर्च करें और 20% बचत हर महीने वे करें। इससे हर महीने नियमित बचत सुनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा जो वो बचत करती हैं उसको इन्वेस्टमेंट में बदले। सिर्फ पैसे जमा करना काफी नहीं है, उसे बढ़ाना भी है। जैसे आप बैंक में RD, FD कर सकती हैं, SIP म्यूचुअल फंड में डाल सकती हैं, PPF में डाल सकती हैं। यही छोटे छोटे निवेश लंबे समय में बड़ा फंड बनाते हैं। आप अनावश्यक जो खर्च होते हैं ना, छोटे छोटे खर्चों को, उनका रिकॉर्ड रखिए। खर्च और बचत का रिकॉर्ड रखिए, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखिए। हर महीने एक ऐसा दिन बनाइए कि नो स्पेंड डे या नो शॉपिंग वीक रखें। इससे आपकी बचत बढ़ेगी और बजट प्लानिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगा आपको। एक चीज मैं बोलूंगी, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल अवश्य करें, जैसे UPI, बजटिंग एप्स आता है, ऑटो डेबिट, SIP, इन सब से बचत आसान और नियमित हो जाती है। तो महिलाएं अगर अपनी छोटी छोटी बचत को सही योजना और निवेश के साथ जोड़ दे तो वही बचत उनके सपनों की ताकत बन सकती है। आज की समझदारी कल की ही सुरक्षा होती है। RD, FD में डालिए, PPF में डालिए, ठीक है। ग्रुप सेविंग भी होता है, ये आप लोग सुनते होंगे, ग्रुप सेविंग महिलाओं के द्वारा होता है, इसमें भी आप बचत कर सकती, बढ़ा सकती है।
1: जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से महिलाएं कहाँ कहाँ बचत कर सकती हैं। और अगर महिलाएं कुछ बिजनेस करना चाहें तो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, और वो अपने बचत के पैसे का उपयोग करके किस तरह से उसे और ज्यादा लार्ज में कर सकती है, तो इससे पर आप हमारी सभी बहनों को क्या राय देंगी?
0: जी, अगर महिलाएं अपने बचत के पैसे से बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उन्हें बिना जल्दबाजी के एक सही योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो जरूर सक्सेसफुल होंगी। सबसे पहले तो छोटे स्मॉल स्टार्ट करें बिजनेस, जो होता है छोटे छोटे रूप से शुरुआत करें बिजनेस, बहुत ज्यादा बड़ा निवेश करने के बजाय छोटे स्तर से शुरू करें। इससे क्या होता है कि जोखिम भी कम रहता है, रिस्क कम रहेगा और सीखने का मौका मिलता है। दूसरी बात है कि लेडीज को अपनी रुचि और कौशल पहचाने और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी बिजनेस शुरू करें, जैसे जिस काम का उनमें इंटरेस्ट हो या पहले से अनुभव हो। जैसे बहुत लोगों को सिलाई बिनाई बुटीक चलाना जानती हैं, सिलाई का एक्सपीरियंस होता है, घर का खाना, टिफिन सेवा, ये सब आप दे सकती हैं, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग। इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है और रिस्क भी कम होता है। तो ये आप पूरी तरह से जो भी आपका बचत है उससे ये बिजनेस शुरू कर सकती हैं। दूसरी चीज है कि जो आप सेविंग कर रही हैं उसका सही उपयोग करें। पूरी भी अपनी सेविंग, जितनी भी आपने सेविंग करी है, एक बार में कभी भी निवेश ना करें। कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए अलग रखें। शुरुआत में कम कॉस्टिंग वाले बिजनेस शुरू करें, आप मार्केट रिसर्च कर सकती हैं, अपने आसपास की जरूरतों को समझें कि लोग क्या चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा चल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चूज कर सकती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करें। आज के समय में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए आप घर बैठे भी बिजनेस बढ़ा सकती हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लें, महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी हैं, मुद्रा लोन है, स्वयं सहायता समूह है, लेडीज लोग का ग्रुप होता है, इसमें कम ब्याज पर लोन और ट्रेनिंग भी मिल जाती है। नेटवर्क बनाना सीखें, दूसरी महिलाओं से जुड़े, ट्रेनिंग ले, नए नए तरीके सीखें, तो इन सबों से क्या होगा कि आपका जो बजट सेविंग अमाउंट है, आप पहले सब चीजों को रिसर्च करके तब बिजनेस स्टार्ट करें, वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो महिलाएं अगर अपनी बचत को समझदारी से इस्तेमाल करें, छोटा शुरुआत करें, लगातार सीखे, तो वो ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकती है बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं।
1: जी, आज के समय में ये जरूरी भी है कि आप खुद का छोटा सा भी व्यवसाय करें, रोजगार शुरू करें और दूसरों को भी इससे जोड़ते चले जाए, तो इससे हर तरह से आपकी जो आर्थिक परेशानी वो तो दूर होगी, साथ में हम अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे, यानी कि आगे धीरे धीरे कुछ किसी भी छोटे से बिजनेस से भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: आप आपातकालीन समय के लिए बचत करना और ऐसे फंड बनाना जिसे कि और भी महिलाओं को फायदा हो, तो आप क्या कहना चाहेंगी, यानी कि इस फंड को जब वो उस एक वक्त होता है कि जब वो समझ में आता कि उन्होंने सही जगह बचत की और सही समय में उनको ये बचत काम आ रही, तो आप क्या देखती, कैसे देखती हैं इसे?
0: जी बिल्कुल, हर महिला को एक इमरजेंसी फंड तो जरूर बनाना चाहिए। यही फंड महिलाओं की आर्थिक मजबूती के मजबूत आधार होते हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे आपातकालीन फंड क्यों जरूरी है। देखिए, जीवन में कभी भी अचानक खर्च कभी भी आ सकते हैं, बीमारी, नौकरी में बदलाव या परिवार की जरूरतें। ऐसे समय में कर्ज लेने की बजाय अगर पहले से बचत हो तो निर्णय लेना आसान और सम्मानजनक होता है। कोशिश करें कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी राशि हमेशा अलग रखें, हर महीने अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा अलग रखें, मंथली 10% 20% जो मैंने पहले भी बताया, इस पैसे को अलग खाते या सुरक्षित जगह पर रखें ताकि जरूरत पर तुरंत इस्तेमाल हो सके। आप ग्रुप सेविंग भी कर सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया, ये बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। जब महिलाएं मिलकर बचत करती हैं और SHG समूह बनाती हैं तो इसका फायदा कई गुना बढ़ जाता है। जरूरत पड़ने पर आसानी से लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है और आपसी सहयोग और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे फंड से महिलाएं बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, कई परिवारों की आय बढ़ा सकती है, जो पहले मैंने बोला। तो आपातकालीन बचत हमें मुश्किल समय में बहुत सहारा देती है और सामूहिक फंड हमें एक दूसरे का सहारा बनाता है, यही सच्ची आर्थिक सशक्तिकरण की पहचान होती है।
1: जी मैम, महिलाओं का जो वित्तीय रूप से साक्षर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में, और आपने जिस तरह से ये बातें बताई कि किस तरह से वो क्या क्या कर सकती हैं, कैसे कैसे कर सकती हैं, बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट है उसे भी आप बचा सकती हैं, बहुत कम पैसे की भी बचत कर सकती हैं। और हमने कहीं ऐसा भी देखा है कि परिवार में जो वित्तीय बजट में महिलाओं की भागीदारी जरूरी होनी चाहिए, ये हमारी सोच है।
0: जी,
1: इसे आप किस तरह से देखती हैं कि बहुत से ऐसे भी फैमिली होती है कि वहाँ पे सिर्फ महिलाओं को
0: सही बिल्कुल ही बात है। जी जी,
1: घर कामों में ही उलझा के रख दिया जाता है, उनसे किसी तरह की कोई मशवरा नहीं लिया जाता है या ली जाती है, या फिर उन्हें किसी तरह की बचत से कोई मतलब नहीं होती है, इसे आप किस तरह से देखती हैं?
0: बिल्कुल, आपका ये प्रश्न और ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे परिवारों में महिलाओं को वित्तीय बजट से, इन सबों से दूर रखा जाता है। पुरुष ही जो है वो डिसीजन लेते हैं, बट मैंने पहले भी बोला, परिवार को, परिवार के खर्चों को, इनकम को, बचत को जितने अच्छे से एक महिला समझ सकती है, क्योंकि पूरा घर उनके ऊपर आश्रित होता है, तो जितने अच्छे से वो समझ सकती है वो पुरुष नहीं समझ पाते हैं। तो परिवार के वित्तीय बजट में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बहुत फायदेमंद भी होती है। महिलाएं घर के खर्च को बहुत अच्छे से समझती हैं, कहाँ बचत हो सकती है, कहाँ जरूरी खर्च है, उनकी ये समझ ही बजट को संतुलित बनाती है, बैलेंस करती है। महिलाएं छोटी छोटी बचत करने में माहिर होती हैं, तो जब वे बजट में शामिल होती हैं तो परिवार की कुल सेविंग

0: और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। और जब पति पत्नी दोनों मिलकर आर्थिक फैसले लेते हैं तो आपसी भरोसा और समझ भी बहुत मजबूत होती है। वित्तीय निर्णयों में भागीदारी से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि घर के कामों के साथ साथ वो बजट प्लानिंग भी कर रही हैं और वो खुद को भी सशक्त भी महसूस करती हैं। इसलिए हर महीने साथ बैठकर बजट बनाएं, बैंक अकाउंट, निवेश और खर्च की जानकारी आपस में जरूर साझा करें। पति पत्नी महिलाओं को भी निर्णय लेने का अधिकार दें, उन्हें वित्तीय शिक्षा से जरूर जोड़ें। परिवार का बजट तभी मजबूत बनता है जब उसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो, क्योंकि जब निर्णय मिलकर लिए जाते हैं तो घर की आर्थिक नींव और भी मजबूत हो जाती है दोनों के बैलेंस से।
1: जी बहनों, जीवन अनिश्चित है, बीमारी, मृत्यु या नौकरी, इस तरह की बहुत सारी जरूरियात जिंदगी में हो सकती है। तो वित्तीय जो साक्षर जिन महिलाओं में होती है तो वो तो अपनी परिस्थिति को संभाल लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसी महिलाएं जो इस साक्षरता से दूर रहती हैं तो वो परेशानी से जूझती हैं। तो आप ये बताएं कि अंत में संदेश देंगी कि हमारी सभी बहनों को?
0: मैं यही बोलूंगी, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता सिर्फ उनके लिए ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे परिवार और समाज के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं सही तरीके से बचत, निवेश और निर्णय लेना सीख जाएं, तो वे आत्मनिर्भर, सशक्त और सुरक्षित भविष्य बना सकती हैं, क्योंकि वित्तीय साक्षर नारी हर घर की समझदारी होती है।
1: बहनों, अभी हम जानकारी दे रहे थे कि वित्तीय साक्षरता महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की हमारी मेहमान थी इंदु श्रीवास्तव। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद मैम।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की जरूरत, बचत और निवेश की समझ। भेंट वार्ताकार थी इंदु श्रीवास्तव और भेंटकर्ता थी महजबीन।
3: और हम अपनी बहनों को ले चलते हैं हस्ते शिल्प के महत्व की ओर कि वो किस तरह से बचत कर ये कर सकती, महत्व को समझ
2: ये जानकारी हमें देनी है। हाँ, बहनों को
3: आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हस्त शिल्प विलुप्त होने के कगार पर है, इसे हमें बचा कर संजो करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हस्त शिल्प का महत्व हमारी संस्कृति को सहेजने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अतुलनीय है। यह कला न केवल पीढ़ियों से चली आ रही है पारंपरिक तकनीकों को जीवित भी रखती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर लाखों कारीगरों को रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान भी करती है, आर्थिक विकास में भी ये योगदान देती है।
2: सही काम है जबीन। और हस्तशिल्प किसी भी क्षेत्र की विशेष पहचान है, इतिहास और कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। इन पारंपरिक शिल्पों को अपनाकर हम अपनी हस्तशिल्प का जो सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम पहुंचा सकते हैं। और यह क्षेत्र कृषि के बाद ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। महिलाओं और कारीगरों के सशक्तिकरण में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका और महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: तो बहनों, इसी के साथ अब हमें प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त दें। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। अब महजबीन
2: और निधि को दे विदा। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी,
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी,
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक,
2: कक्षा 2 की।

0: देखिए पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सुमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास

0: घास घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि

0: वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
3: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
4: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं,
3: आजा खेलते हैं।
4: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
5: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
4: अच्छा वो क्या?
5: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
4: हाँ दूसरा क्या?
5: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
3: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की

से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।

0: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया हो। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहां से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
0: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
2: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
3: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
0: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
3: जी।
1: अच्छा,
2: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
4: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग शुरू करो।

0: मैंने यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंड गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने

अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
5: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
6: Strengthening cooperation against terrorism.
4: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar, foreign ministers and heads of delegations
1: in strengthening cooperation against terrorism.
0: Foreign ministers of several countries are Potika, among others. Foreign ministers of BRICS member countries will also call on Prime Minister India Africa collaboration will focus on higher value products and integrated supply chains, a business dialogue and exhibition to be held in New Delhi from the 29th to the 31st of this month alongside Royal Challengers Bengaluru defeated Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur.
2: दोपहर के 1:10 हो चुके हैं. आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार
3: विस्तार से. केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोयला भवन में संशोधित झरिया मास्टर प्लान और जेआरडीए के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन विस्थापित परिवारों को उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बेलगढ़िया टाउनशिप और अन्य पुनर्वास क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है. झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य के संशोधित रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जेएसएससी को प्रार्थियों के लिए सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए आगामी 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने काफिले से गाड़ियां कम करने की पहल का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्वागत किया है. आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को भी प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए.
4: पेट्रोल डीजल को लेकर के वैश्विक कठिनाई उत्पन्न हुई है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की वेदना को समझते हैं और उनकी कठिनाइयों को हर संभव 24 घंटा दूर करने में लगे रहते. अब पेट्रोल डीजल की कमी आयात होने के चलते देशवासियों से अपील किया है कि कम से कम डीजल पेट्रोल उपयोग करने का काम करें. जो आवश्यक आवश्यकता है उसी में इसका उपयोग करने का काम. उनके काफिला थे उसमें भारी कमी की गई है. जो गाड़ियां उनके काफिले में है वो भी बैटरी सिस्टम से चलने वाली गाड़ियां हैं.
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बचत की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता जमीन पर काम करने के बजाय केवल फोटो खिंचाने और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त हैं.

0: भारतीय जनता पार्टी का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। चुनाव रहता है तब तो आप बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, और चुनाव खत्म हो गया आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसके पहले अर्थव्यवस्था की बात आपके द्वारा कहाँ कहा जा रहा था। देश चलाने में ये असफल रहे और जनता भी समझ रही है कि आप जनता के साथ क्या कर रहे हैं।
1: राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में पूर्णतः ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण के बाद इस योजना का विस्तार सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा। रांची में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यातायात पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों को ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य करने तथा स्कूलों के समय यातायात दुरुस्त रखने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है।
3: ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF किया है।
1: कोयला मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम ने रांची स्थित CCL मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। डॉ. माणिक चंद्र पंडित के नेतृत्व में आई इस टीम ने प्रशासनिक, तकनीकी कार्यों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हिंदी के उपयोग का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान CCL प्रबंधन ने बताया कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 में कुल 19 कार्यशालाएं आयोजित की गई। रांची के लापुंग प्रखंड के सिद्कोफेड द्वारा वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाहखेती प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहात्तर की बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान 3 पंचायतों के 377 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आगामी जून जुलाई माह में प्रत्येक किसान को 5-5 किलो कुसुमी एवं रंगीनी लाह बिहन शत प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। रांची के सिविल सर्जन ने राजधानी के सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि योजना के तहत आने वाले पात्र मरीजों को बिना किसी परेशानी के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए।
4: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ाना और ABDM में झारखंड और रांची सदर अस्पताल भी काफी आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम हुआ, इसकी चर्चा हुई कि यहां काफी अच्छा काम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हो रहा है।
1: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत केंद्रीय जांच टीम ने मानगो नगर निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह NH-33 और बालीगुमा से शुरू हुए इस निरीक्षण में टीम ने कचरा संग्रहण प्रणाली का जायजा लिया और घरों में जाकर लोगों से सीधा फीडबैक लिया। इस दौरान मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ग्राउंड रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 595 अंक बढ़कर 75,204 पर और निफ्टी 208 अंक की वृद्धि के साथ 23,620 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 3,05,000 रुपए प्रति किलो है। पलामू जिले में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने से एक अधेड़ समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसा ही ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री ने की झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगे आईआईटी और आईआईएम। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट मामले में जेएसएससी को प्रार्थियों की सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 7 जुलाई को। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लगेंगी ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें। कोयला मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने रांची में की सीसीएल की समीक्षा। सोशल मीडिया और तकनीकी कार्यों में हिंदी के उपयोग को सराहा। और रांची में वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बांटे टूल किट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकार हैं सिप्रा बोस, इनसे हम आज सुनेंगे दादरा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें हम सुनेंगे कुछ चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, और इसमें आप सुन रहे थे भूपेंद्र और मिताली सी की आवाज़ में कुछ चंद गजलें। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराखची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए

0: भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके

0: बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपके साथ, आपकी दोस्त कंचन। इस समय सुनने वाले तमाम श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के साथ।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती अपने दोस्त कंचन के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का पहला गीत लेते हैं फिल्म जुर्म से। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में इंदिवर की रचना है और संगीत राजेश रोशन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दिल का रिश्ता से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर की रचना है, संगीत नदीम श्रवण का है।

इसी फिल्म से एक और गीत सुनते हैं, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर की रचना है, संगीत नदीम श्रवण का है, फिल्म है दिल का रिश्ता।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म आशिकी से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में रानी मलिक का लिखा गीत है और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शीघ्र और समन्वित कार्रवाई के साथ स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक सुरक्षा सैन्य बलों की तकनीकी उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता से हासिल होती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत केंद्रीय जांच टीम ने पूर्वी सिंहभूम के मानगो नगर निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह NH 33 और बालीगुमा से शुरू हुए इस निरीक्षण में टीम ने कचरा संग्रहण प्रणाली का जायजा लिया और घरों में जाकर लोगों से सीधा फीडबैक लिया। इस दौरान मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ग्राउंड रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई। सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित अमालगम कंपनी के मुख्य गेट पर आज विस्थापित कालिंदी परिवारों ने जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का प्रवेश निकास पूरी तरह बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में कंपनी स्थापना के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी। उस समय प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी सभी कालिंदी परिवारों को नौकरी नहीं मिल सकी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल की खपत कम करने संबंधी देशवासियों के आह्वान का असर हजारीबाग में भी दिखने लगा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा अब मोटरसाइकिल से कार्यालय आ रहे हैं। मोटरसाइकिल के पीछे अपने बॉडीगार्ड को बिठाकर वे शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि जहां तक

0: हो सके हम लोगों को बचत करनी चाहिए, विशेषकर वैसे संस्थान पर जो हम आयात करते हैं। मैंने तय किया है कि जहाँ कहीं संभव हो अपने वहां से चलूं। राष्ट्र रहेगा, हमारा समाज रहेगा, राष्ट्र के लिए हम सबों को राष्ट्र प्रथम मानकर काम करना चाहिए। कि अगर चीजें इस तरह ही रहे, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होगा।
1: झारखंड में अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। इस मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, विभागीय सचिव, अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने काफी नुकसान किया है। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने से पलामू में एक बुजुर्ग समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। राजधानी रांची में भी कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिर जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को भी रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसी ही चेतावनी जारी रहेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Cena.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंत्याक्षरी का जो कार्यक्रम होता है या फिर जो हम गेम खेलते हैं, ये माँ अच्छा से शुरू होता है और इसे खेलने में बहुत मज़ा भी आता है और हमारी माइंड का एक्सरसाइज भी होता है और कैसे टाइम बीत जाता पता भी नहीं चलता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम भी माँ अच्छा से करते हैं।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं जावेद अली और सोनू निगम की आवाज में। प्रसून जोशी का लिखा गीत है और संगीत ए आर रहमान का है। फिल्म का नाम है गजनी।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म राजा नटवरलाल सी, अरिजीत सी और श्वेता पंडित की आवाज़ में। इरशाद कामिल की रचना है, संगीत युवान शंकर राजा का है।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम राजी मेलोडीज अपनी दोस्त कंचन के साथ। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म भारत सी। अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में इरशाद कामिल की रचना है और संगीत विशाल और शेखर का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं नीति मोहन, विशाल मिश्रा और सहनाज अख्तर और साथियों की आवाज़ में, फिल्म गद्दर 2 से। सैयद कादरी का लिखा गीत है और संगीत मिथुन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनजाना अनजानी से राहत फतेह अली खां की आवाज में विशाल ददरानी और शेखर रवजियानी की रचना है और संगीत विशाल और शेखर का है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म तलाश से विशाल ददलानी की आवाज़ में। जावेद अख्तर का लिखा गीत है और संगीत राम संपत का है।

0: इसी गाने के साथ रांची मेलोडीज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शीघ्र और समन्वित कार्रवाई के साथ स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित अमलगम कंपनी के मुख्य गेट पर आज विस्थापित परिवारों ने जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का प्रवेश निकास पूरी तरह बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में कंपनी स्थापना के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार नहीं दिया गया है। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। इस मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार, विभागीय सचिव अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। भारत सरकार के जनगणना 2027 को सफल बनाने को लेकर आज जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने स्वगणना कार्य सहज ढंग से संपन्न किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की हो रही परेशानी को देखते हुए चैंबर के सदस्यों ने स्वगणना कार्य में लोगों का सहयोग किया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज रांची के हरमो स्थित नव निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। सामुदायिक भवन का निर्माण सांसद निधि से कराया गया है। उद्घाटन के बाद सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह भवन खास तौर पर आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। चर्चा, पौधे लगाने तथा उनकी सुरक्षा भी आवश्यक, घरेलू बागवानी के फायदे। साथ ही आप भेंटवार्ता सुनेंगे, मोबाइल फोन की लत और उसके दुष्प्रभाव। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर श्याम सिडाना, भेंट करता है बसंत कुमार, वाचन एवं सहयोग बसंत कुमार का है, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे क्या क्या नई जानकारियां साझा करने वाले हैं और क्या नई बातें आपको बताने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन की लत और इसके दुष्प्रभाव के बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक आर्किमिडीज के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम जानकारी देने वाले हैं रेल पटरी के आविष्कार के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या नई जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं पेड़ पौधे लगाने और इनकी सुरक्षा कितनी आवश्यक है इसके बारे में। और अगर हम बात करें तो एक ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा हुआ है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, अत्यधिक गर्मी, जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। इन सभी समस्याओं का सबसे सरल और प्रभावी समाधान है अधिक से अधिक पेड़ लगाना और इनकी देखभाल करना। पेड़ पौधे प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं और जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। यदि धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। यही कारण है कि पेड़ों को धरती का हरा सोना भी कहा जाता है। लेकिन केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है। अक्सर हम किसी अभियान में उत्साह से पौधे लगा तो देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं। पानी की कमी, जानवरों से नुकसान, उचित सुरक्षा न मिलने और देखरेख के अभाव में अधिकांश पौधे सूख जाते हैं। इसलिए पौधे लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितना पेड़ लगाना आवश्यक है। एक पौधे को बड़ा पेड़ बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। समय समय पर पानी देना, खाद देना, उसके आसपास सफाई रखना और पशुओं से बचाने के लिए घेराबंदी करने जैसी जो जरूरी चीजें हैं, अगर हम वो नहीं करें तो शायद वो पौधा बड़ा वृक्ष नहीं बन पाए। यदि हर व्यक्ति केवल एक पौधे को पूरी जिम्मेदारी से बड़ा करने का संकल्प ले ले तो हमारा पर्यावरण काफी हद तक सुरक्षित हो सकता है। आज शहरों में तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। नई सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें और उद्योगों के विस्तार के कारण हरियाली कम होती जा रही है। इसका परिणाम ये है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। गर्मियों में भी भीषण लू, असमय बारिश और बाढ़ जैसी समस्याएं इसी का परिणाम है। पेड़ न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हरियाली मन को शांति देती है, तनाव कम करती है और स्वच्छ हवा देने का काम करती है। आयुर्वेद में भी अनेक पेड़ों और पौधों को औषधि का स्रोत माना गया है। नीम, तुलसी, पीपल, बरगद और आंवला जैसे पेड़ मानव जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इन अभियानों की सफलता तभी संभव है जब आम जनता भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। बच्चों में बचपन से ही प्रकृति प्रेम की भावना विकसित करने के लिए हमें घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि पेड़ लगाना केवल एक सामाजिक कार्य नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। यदि आज हम पेड़ों की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा, पर्याप्त जल और स्वच्छ वातावरण प्राप्त कर सकेंगी। लेकिन हम ज्यादातर मामलों में यही देख पाते हैं कि लोग पौधा लगा तो देते हैं जोश में आकर, लेकिन उसकी देखभाल करने की जब बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो भूल जाते हैं पौधा लगाकर। उसका ख्याल भी रखना होगा, तभी वो एक बड़ा वृक्ष बनकर हमें फल देगा, छाया देगा और हमारे लिए ऑक्सीजन भी बनाने का काम करे। तो अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल की लत और इसके दुष्प्रभाव के बारे में। और
इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर श्याम सिडाना, जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं और रांची में कार्यरत हैं। सर, आप

0: देव कमल हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: नमस्कार, जोहार।
0: आज चूंकि हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के इस्तेमाल की और इसके जो दुष्प्रभाव हैं इसके बारे में, तो आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके पास फोन ना हो, और हर व्यक्ति जो है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है अपनी जरूरी कामों को करने के लिए, अपने जितने भी लोग हैं सगे संबंधी हैं उनसे बात करने के लिए। तो मोबाइल फोन चलाना और इसकी लत लग जाना, ये दो अलग चीजें हैं। तो मोबाइल फोन की लत लग चुकी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मोबाइल की जो लत है वो लग गई है किसी को, इसको कैसे समझा जा सकता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत कॉमन समस्या है
0: जी।
1: जब हमें लगे कि कोई व्यक्ति मोबाइल के बिना बेचैन होने लगे, खाली टाइम बोर होने लगे और अपनी दिनचर्या से समय ऐसा गड़बड़ा जाए कि काम समय पर नहीं कर रहा है, समय से सो नहीं रहा है, समय से उठ नहीं रहा है, उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जा रही है, रिश्तेदारों से समाज से उसका नेचर अलग हो गया, क्योंकि वो बैठे हैं बात कर रहे हैं आपसे समाज के रिश्तेदार और आप अपने मोबाइल में बिजी हैं, तो बोलते हैं कितने इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं इनसे बात करने आया हूँ और ये अपने मोबाइल में, तो उसका व्यवहार बदल जाता है, उस समय सही डिसीजन भी नहीं लेने सकता है, तो वो ऐसा लगता है कि अब नॉर्मल बिहेवियर उनका हो जाता है। तो लत का मतलब है कि इस तरह डिपेंडेंट हो जाना कि सबसे अच्छा मोबाइल ही लगता है, और इसका मुख्य कारण है जो हम मोबाइल में व्हाट्सएप देखते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक पर लाइक देखते हैं, तो डोपामिन करके हार्मोन रिलीज होता है
0: जी,
1: जो हमको अच्छा फील कराता है, जो चीज़ अच्छा फील कराती है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अच्छा लगता है तो उसकी भी लत लगती है
0: जी, जी, जी।
1: कोई नहीं, उसी तरह जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो उतनी लत लगती है, इसलिए वो हमारे लिए गैर उपयोगी और गलत बन जाता है।
0: यानी कि जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो
1: जी,
0: उसकी लत हमें लग चुकी है ऐसा मान लेना चाहिए।
1: अगर वो आकर्षक है तो जरूर लगती है
0: जी। तो मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो लगभग आज के समय पे, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई कर रहा है
1: जी जी।
0: खास करके सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब इसका लोगों पर असर दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर इसके दुष्प्रभाव की बात करें और लोग घंटों मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो एक हद तक वहां पे लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि आप इससे कैसे निकलना है। हालांकि इसके बारे में कई बार चर्चाएं होती हैं, इसके दुष्प्रभावों को पहचानते हुए जो समस्याएं होती हैं उनको समझने के लिए लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए?
1: सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हम रियल वर्ल्ड में जीना है, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं जीना है। मोबाइल एक वर्चुअल वर्ल्ड है और हमको जिंदगी जीनी है रियल वर्ल्ड में। तो हम जब मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लत लग जाती है, तो हम उसी में घुस जाते हैं, रम जाते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षक सारा कुछ आ रहा है, कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आपको लाइक कर रहा है, कोई फोटो रील फॉरवर्ड कर रहा है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। आज का जमाना की इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, तुरंत में आपको खबर मिल जाती है, अखबार न्यूज और सब सुनना बंद करके आप सीधे मोबाइल, पहले टीवी देखने की लत हुआ करती थी, अब मोबाइल की लत हो गई है। तो कुछ आकर्षण है जो हमको उस लत की तरफ ले जाता है, और वो जो है हमारी दिनचर्या को चौपट कर देता है, हमारे काम में नुकसान करने लगता है, हमारी बच्चों की पढ़ाई में नुकसान करने लगता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने लगता है। तो इसका असर जो है सामाजिक होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है। शारीरिक में क्या है कि आप एक पोजीशन में टेढ़े बैठे हैं तो आप टेढ़े बैठ के देख रहे हैं तो कमर का दर्द होगा आपको, गर्दन एक तरफ झुका के बैठे हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या देखिएगा, कॉलर बांधना पड़ रहा है या डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, आंख में जोड़ पड़ रहा है तो आंख में क्या स्ट्रेन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, आंख सूखी हो जाती है, लाल हो जाती है, इतना ज्यादा यूज करते हैं लोग, नींद नहीं पूरी हुई तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, रात में नींद नहीं पूरी हुई। दूसरा है कि आपको जो चीज की लत लग गई, आदत है, उससे आपको दूर ले जाता तो भी चिड़चिड़ापन आपको महसूस होता है। तो ये स्वभाव, कुछ लोग तो यहाँ तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ बच्चों को अगर आदत लग गई आप उसको नहीं दीजिएगा तो इरिटेट होकर फिर वो डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगते हैं, उनको वो लगता है कि वो मेरा जीवन था, उसको मेरे से छीन लिया जा रहा है, जबकि हकीकत है कि जीवन तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारा खाना है, तुम्हारा भोजन है, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा जीवन ही है, वो मोबाइल के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड तुम्हारी जीवन नहीं है कि कंटेंट देख रहे हैं, कोई अच्छा गेम देख रहे हैं, वो मेरा जीवन है, खाना है, पढ़ाई करना, समाज में रहना। तो रियल वर्ल्ड से हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगते हैं, तो यह हकीकत को समझना पड़ेगा। उस तरह शारीरिक की जगह फिर मानसिक, और मानसिक के बाद फिर सामाजिक में भी हम अपने रिश्ते बिगाड़ने लग जाते हैं, किसी का फोन आता है तो हम मोबाइल में बिजी हैं, तो उसकी तरफ अच्छा थोड़ी देर में बात करना, रील देख रहे हैं, तो या कोई आदमी आ गया मिलने, मैं डॉक्टर हूँ, इमरजेंसी में कोई मरीज आ गया, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, बेचारा मर रहा है, मैं अब मोबाइल देख रहा हूँ, तो इससे कुछ नुकसान होता है।
0: बिल्कुल, यानी कि हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल के लोग मोबाइल फोन का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से गौर करें तो चूंकि इसका इस्तेमाल इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है के समय में, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उनका खुद का मोबाइल फोन हो चुका है। पहले लोगों के घर पे टेलीफोन हुआ करता था तो लोग आपस में सारे लोग मिलकर उसका इस्तेमाल करते, लेकिन अभी सभी के पास अपना खुद का मोबाइल है और खास करके सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों में देखी जा रही है। तो बच्चों में अभी जो शिकायतें आ रही हैं कि वो खाना तक छोड़ देते हैं मोबाइल फोन के बिना, खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके जो माता पिता हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि किस उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए ताकि उनको फायदा हो सके, और कितनी देर के लिए मोबाइल फोन देना चाहिए?
1: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके संदर्भ में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के कुछ नए रिकमेंडेशन है कि बच्चों के लिए क्या नियम होना चाहिए। पहली बात है, बच्चों में क्यों ज्यादा दिक्कत होती है? क्योंकि उनका ब्रेन ग्रोइंग होता है, उनका मानसिक विकास पूरा नहीं, उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, फ्रंटल लोब ब्रेन की होती है, वो डेवलप नहीं की रहती है। जो हम बड़े आदमी हैं कि समझ में आता है जब कोई गलती करते हैं तो अरे गलती कर रहा हूँ, तो उसमें ये गलत और सही का आकलन नहीं करने की क्षमता ये नहीं डेवलप करती है। तो बच्चा जो है रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है, छोटे छोटे कंटेंट देख रहा है, तो उसमें आवाज़ अच्छी आ रही है, मधुर फोटो है, मधुर गाने हैं, तो वो माँ बाप जो जिंदा आदमी सामने खड़ा है उससे ज़्यादा चमकदार चीज़ें दिखती है, तो वो उसकी तरफ चला जाता है। उसके में सोचने की शक्ति नहीं कि ये मेरे पापा हैं, मेरे को खाना खिलाएंगे, ये मेरी मम्मी ये देंगे, ये मेरे टीचर ये पढ़ाएंगे, उसकी समझ नहीं रहती है। तो इसको देखते हुए इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कुछ सजेशन दिए, जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है भारतीय बाल चिकित्सा परिषद, उन्होंने बताया है कि 2 साल तक मोबाइल बच्चे को छूने भी नहीं देना है, 2 साल तक छूने भी नहीं देना है। अगर बहुत आप दूर रहते हैं अपने बड़े परिजनों से और आप चाहते हैं कि बच्चा उनसे बात करे, तो बस खाली वीडियो कॉल तक में अपने साथ रख के वीडियो कॉल तक बात करा सकते हैं, उससे ज्यादा मोबाइल नहीं देखने देना। ही नहीं कि मैं तोता बहुत लोग गाना सुनाते रहते हैं, या हाथी मोटू हाथी
0: जाकर
1: चुप करने के लिए, या खाना खिलाने के लिए, खाना बच्चा उस चक्कर में खाना नहीं खाने वाला तो उससे खाना खा रहा, वो खाना नहीं खा रहा, वो गेम देख रहा, उसका बेहोशी में उसके अंदर जा रहा है, वो खाना वो सही तरीके से पचता भी नहीं है, उसका फायदा भी नहीं होता, ओवर खा जाएगा तो मोटा हो जाएगा, अंडर खाएगा सही खाना नहीं, उसको समझ नहीं आता क्या खा रहे हैं। तो उसके लिए 2 साल तक फोन नहीं देना है मोबाइल का खास करके, और 2 साल के ऊपर 2 से 5 साल तक 1 घंटा वो भी सुपरवाइज्ड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसमें 1 घंटा जो सुपरवाइज्ड स्क्रीनिंग है उसमें पढ़ाई के अलावा, जो पढ़ाई की जरूरत है उसके अलावा, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो मनोरंजन के है, मनोरंजन में आपको बैलेंस करना है, पढ़ाई में तो आप बैलेंस कर नहीं सकते, वो होमवर्क जो कोरोना का समय आया हमारी जरूरत बन गई, होमवर्क आ रहा है, मगर होमवर्क के अलावा जो काम है उसको आपको धीरे धीरे कट डाउन करना है। उसको आपको कैसे करना है, उसको बच्चे को समझाना है, उसको और तरीके में लुभाना है, उसको गेम्स करवाना है, आउटडोर एक्टिविटीज कुछ फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, गेम्स में साइकिलिंग हो गया, मनोरंजन गायन हो गया, इसमें उलझाना है ताकि उसको इंटरेस्ट दूसरी तरफ जगाना है, सो दैट उससे वो थोड़ा दूर हो और उसको उसमें आकर्षण जागे।
0: यानी कि कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जो कि उनको निभा रहा है।
1: 5 साल से ऊपर वाला जो है आपको बच्चों को एक ऑनलाइन देखा है, बच्चा देख रहा है तो उसका कंटेंट पर नजर है, लॉक होना चाहिए, चाइल्ड लॉक, क्या जैसे टीवी में चाइल्ड लॉक होता था कि ये कंटेंट देगा, उसे मोबाइल में भी देखना क्या वो कंटेंट देख रहा है, उसके बाद आप पढ़ाई कर रहा है या दूसरा कुछ काम कर रहा है, तो आपको अपनी नजर रखनी है बच्चा सही चीज देख रहा है कि नहीं।
0: लेकिन आजकल तो सभी बच्चों के पास भी मोबाइल है, जी जी, पेरेंट्स खास करके इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कई बार, और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि हम सोच नहीं सकते हैं, खास करके बच्चों के मामले में।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर हम शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों की बात करें मोबाइल फोन चलाने की और इसके लत की, तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकाग्रता यानी कि अपने ध्यान को एकाग्रचित होकर के जो काम करना होता है उसमें भटकाव देखा जा रहा है उनको, यानी कि वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पा रहे, तो मोबाइल की वजह से यह सारी चीजें हो रही है?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
0: इसको ठीक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते
1: हैं? जो जैसे छोटी छोटी रील्स हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो आपके छोटे छोटे चीज़ें उत्तेजित करने वाली हैं, वो आपका के लिए स्वाद बन जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। तो माता पिता या घर के काम या और सब जो चीज़ें हैं वो लंबी प्रोसेस है, छोटी चीज़ में आपको रिक्रिएशन मिल रहा है, आप एक देखा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पाँच मिनट करते करते वो घंटों पर रात जाग गए, तो इसमें आनंद आने लगता है। जबकि पिताजी बोले जाओ तो वो गमले में पानी डाल दो या चलो वहाँ पर से हम लोग ले आते हैं, वो इंटरेस्टिंग उसको नहीं लगता है। ये छोटे छोटे रील्स जो है बहुत जगह देखिएगा, रील का कम आने वाले समय में बैन लगने वाला है ये छोटी रील पर, जो शॉर्ट्स जो आ रहे हैं उस पर, किसी किसी कंट्री में तो मोबाइल पर ही बैन लग गया है, आपने सुना होगा कि बच्चों को मोबाइल नहीं
0: उम्र तक
1: 18 साल 16 साल 14 साल जिससे बहुत सारी कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वो बैन लग रहा है। वही लंबी 3 घंटे की फिल्म दिखाई तो शायद बच्चा नहीं बैठेगा, उसको 3 घंटा पढ़ाई वाला हो या 3 घंटा तो कम होगा। ये छोटे कंटेंट्स हैं और उत्तेजक जो कंटेंट है वो ज्यादा तुरंत तुरंत बदल रहा है तो दिमाग भी तुरंत तुरंत का चेंज हो रहा है तो मन की एकाग्रता खत्म हो रही है तो उसके चलते वो इरिटेट ब्रेन आगे पीछे नाच रहा है दिन भर और नाच रहा है तो इरिटेशन आ रहा है ब्रेन में।
0: यानी कि आप अगर लंबी चीजों को देखते हैं अगर ज्यादा समय वाली जो वीडियोस हैं तो आपको फायदा होगा,
1: एकाग्रता है।
0: लेकिन अगर आप छोटी छोटी 30 सेकंड या 40 सेकंड 1 मिनट की वीडियोस को तुरंत
1: अटेंशन स्पैन आपका घटा रहा है तो इससे

0: नुकसान हो रहा
1: है। अटेंशन डिफिसिट डिजॉर्डर बच्चों में होता है इससे,
0: क्या इससे मानसिक परेशानी भी हो सकती है?
1: एकदम होती है बहुत लोगों को। एक आपने बीमारी का नाम सुनूंगा आजकल बहुत कॉमन है, ऑटिज्म करके।
0: जी,
1: तो ऑटिज्म तो नहीं होता मगर ऑटिज्म लाइक डिजॉर्डर होता है, जिसमें बच्चा माँ बाप से नहीं इंटरेक्ट करता है, आदमी से बात नहीं करता, वो किसी वस्तु मग्न हो जाता है। वस्तु मग्न मतलब आप खिलौने से खेल रहा है तो खिलौने से खेल रहा है, गाड़ी का एक चक्का चला रहा है, एक चला रहा है, उसको बोलिएगा बच्चा इधर आओ तो लगेगा बच्चा सुन नहीं रहा है, जबकि वो किसी और चीज में मग्न है। उसका दिमाग की वायरिंग उसकी जो है वो चेंज हो जा रही है, उस वायरिंग के हिसाब से वो अपने को एडजस्ट कर लेता है और वो समझता नहीं है। और इसको सुधारा जा सकता है अगर हम उसको ग्रेजुअली डिटॉक्स करें। डिटॉक्स करें मतलब उसको अदर एक्टिविटीज में खेल कूद में इन्वॉल्व करें और अपने भी रोल मॉडल बने। इसमें माता पिता को सबसे पहले, हम खुद मोबाइल देखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि मत देखो तो वो कहां से होगा, इसलिए रोल मॉडल भी बनना। तो वो हमको एक दिन एक आवर फिक्स करना होगा कि हम एक को मोबाइल को अपनी संयम बनाना पड़ेगा, दूर रखेंगे और उसके बिना वाली एक्टिविटीज कराएंगे धीरे धीरे। आप 2 घंटे के लिए करें, हफ्ता में 1 दिन करें, फिर 3 दिन करें, ग्रेजुअली उस बच्चे को उस चीज से दूर करने के लिए। और तब तक में उसके और उपाय करें, बच्चे को और कामों में व्यस्त रखें और उसके साथ समय समय गुजारें, क्योंकि बच्चा एक बार बिगड़ जाएगा तो आप कमाई हुई सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चा हाथ से निकल, कितने बच्चों को मैंने देखा है कि एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, उसके चलते बहुत गलत आदतों में चले जाते हैं, बुलिंग होने लगता है, बच्चों को कोई तंग करने लगता है दूसरा, तो उसके चलते सुसाइडल अटैक्स होने लगते हैं। तो आप बच्चा ही खो देंगे, तो क्यों नहीं हम उसके लिए घर में कुछ करें। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलें। चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी अगर जो समझेगा तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक साइकेट्रिक के ओपीडी में होते हैं, जो साइकेट्रिक के डॉक्टर हैं उनके यहाँ भेजा जाता है। वो एकदम एक्सट्रीम है मगर हम मैक्सिमम केसों को अपने घर पर ठीक कर सकते हैं, काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं।
0: यानी कि मोबाइल भी एक लत की तरह है, नशे की तरह है, अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका जो नशा है वो सर पे चढ़ सकता है और आप मानसिक और शारीरिक रूप से अपना जो संतुलन है वो भी खो सकते हैं और काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने काफी अच्छी जानकारी दी और जो भी पेरेंट्स इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को और खुद के प्रति भी जागरूक हो जाएं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ उतनी देर के लिए करें जितना आपका काम हो जाता है। और खास करके इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ करना ही सही नहीं है बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस विषय पर हमने आपको जानकारी दी और हमारे साथ में थे आज डॉक्टर श्याम सिडाना। सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी से कामना करूंगा कि आप रियल वर्ल्ड में जिए ना कि रियल वर्ल्ड में। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर। और अब हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों के बारे में और हम अपने कार्यक्रम में हर बार किसी नए वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन के पहलुओं के बारे में जानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है आर्किमिडीज। नाम हम सभी ने सुना होगा और इनके बारे में बहुत सारे लोगों को काफी कुछ जानकारी भी होगी, लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि प्राचीन विश्व के इस महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, अभियंता और आविष्कारक की प्रतिभा बहुत विशाल है और विज्ञान के इतिहास में कुछ ही ऐसे नाम होते हैं जिनकी खोज सदियों के बाद भी हमेशा के लिए याद रह जाती है। आर्किमिडीज उन्हीं महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। इन्हें गणित और भौतिक विज्ञान का आधार स्तंभ माना जाता है। इनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीक के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आर्किमिडीज का जन्म लगभग 287 ईसा पूर्व यूनान के सिसिली द्वीप के सिराक्यूज नामक नगर में सिराक्यूज नाम के एक जगह पर हुआ था। इनके पिता एक खगोल शास्त्री थे, इसलिए बचपन से ही इन्हें विज्ञान और गणित का वातावरण मिला। कहा जाता है कि आर्किमिडीज बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। हर वस्तु और हर घटना के पीछे छिपे कारण को जानना इनकी फितरत सी थी। यही जिज्ञासा आगे चलकर इन्हें विश्व का महान वैज्ञानिक बनाने में काम करती है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आर्किमिडीज मिस्र के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र अलेक्जेंड्रिया चले गए। उस समय अलेक्जेंड्रिया ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। वहां से इन्होंने गणित, ज्यामिति, भौतिक विज्ञान और खगोल विज्ञान का गहरा और गहन अध्ययन किया। ये घंटों तक समस्याओं को हल करने में लगे रहते थे। इनका मानना था कि प्रकृति के हर रहस्य को गणित के माध्यम से समझा और सुलझाया जा सकता। आर्किमिडीज केवल सिद्धांतों तक सीमित वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि एक महान आविष्कारक के रूप में भी कार जाने जाते हैं। इन्होंने कई ऐसे उपकरण बनाए जिनका उपयोग लोगों की दैनिक जिंदगी में आज भी होता है, जिसका इस्तेमाल आज भी लोगों की दैनिक जीवन में होता है। इनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कारक था आर्किमिडीज स्क्रू। यह एक विशेष प्रकार की मशीन थी।

जिसके माध्यम से पानी को नीचे से ऊपर उठाने का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग खेतों की सिंचाई और जल निकासी में भी किया जाता था। आज भी आधुनिक तकनीक में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, लेकिन आर्किमिडीज को सबसे अधिक प्रसिद्धि उत्प्लवन सिद्धांत के कारण मिली। इस सिद्धांत की खोज से जुड़ी एक रोचक कहानी भी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सिराक्यूजा के राजा ने एक सुनार को सोने का मुकुट बनाने का आदेश दिया। मुकुट बनने के बाद राजा को संदेह हुआ कि कहीं सुनार ने उसमें चांदी तो नहीं मिला दी है। राजा ने ये रहस्य जानने की जिम्मेदारी आर्किमिडीज को सौंप दी। कई दिनों तक सोचने के बाद भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ पाया। एक दिन जब वे स्नान करने के लिए पानी से भरे टब में उतरे, तब उन्होंने देखा कि उनके शरीर के प्रवेश करते ही पानी बाहर निकलने लगा। तभी उन्हें ये समझ आया कि किसी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी की मात्रा से उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। उसी क्षण वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और यूरेका यूरेका कहते हुए सड़क पर दौड़ने लगे। यूरेका का अर्थ है मैंने खोज लिया। उनका ये प्रसिद्ध सिद्धांत आज भी विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्किमिडीज ने गणित के क्षेत्र में भी कई अद्भुत कार्य किए। इन्होंने वृत्त, गोले और बेलन के क्षेत्रफल और आयतन निकालने की नई विधियों को भी विकसित किया। इनके सिद्धांतों का उपयोग आज भी इंजीनियरिंग, वास्तुकला और अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है। आर्किमिडीज युद्ध तकनीक में भी काफी कुशल थे। जब रोम की सेना ने सिराक्यूज पर आक्रमण कर दिया, तब इन्होंने नगर की रक्षा के लिए कई अद्भुत यंत्र बनाए। इन्होंने विशाल गुलेल, यांत्रिक हथियार और ऐसे उपकरण बनाए जो दुश्मनों के जहाजों को पल भर में नष्ट कर सकते थे। कहा जाता है कि इन्होंने कई बड़े दर्पणों की सहायता से सूर्य की किरणों को केंद्रित कर दुश्मन के जहाजों में आग लगाने का भी प्रयास किया था। इन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम भी है। आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी दुनिया इन्हें सम्मान के साथ याद करती है। विज्ञान के विद्यार्थी, शोधकर्ता और वैज्ञानिक आज भी इनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए इनकी खोज को आगे बढ़ाते हुए नई नई तकनीकों के प्रति शोध करते रहते हैं। तो ये हमने आपको आर्किमिडीज के बारे में बता दिया, और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम एक ऐसे पटरी के बारे में, आए दिन हम उससे सफर करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आविष्कार की जिसने दुनिया में यातायात और व्यापार की तस्वीर बदलने का काम किया। ये आविष्कार है रेल पटरी यानी रेलवे ट्रैक। आज रेलगाड़ियां हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। लाखों लोग प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं और भारी मात्रा में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेन में हम चढ़ते हैं, वह ट्रेनें जिन लोहे की पटरियों पर दौड़ती हैं, उनका आविष्कार कैसे हुआ होगा? तो हम आपको ये बताते चलें कि रेल पटरी का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय में लोग भारी सामान ढोने के लिए लकड़ी के बने रास्तों का उपयोग करते थे। खदानों से कोयला और पत्थर निकालने के लिए लकड़ी की पटरियां बनाई जाती थी, जिन पर पहियों वाले छोटे वाहन चलाए जाते थे। इससे भारी सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किया जा सकता था। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि लकड़ी की पटरियां जल्दी टूट जाती और अधिक भार सहन करने में भी सक्षम नहीं होती हैं। इसके बाद लकड़ी की जगह लोहे की पटरियों का उपयोग शुरू हो गया। यही आधुनिक रेल पटरी की शुरुआत मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान रेल व्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। उस समय इंग्लैंड में कोयले और अन्य वस्तुओं को कारखानों तक पहुंचाने के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता ने रेल पटरी और रेलवे तकनीक को जन्म देने का काम किया। रेलवे के विकास में कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक योगदान है, लेकिन जॉर्ज स्टेफेंसन का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन्हें रेलवे का जनक भी माना जाता है। इन्होंने आधुनिक रेलवे इंजन और मजबूत रेल पटरियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1825 में इंग्लैंड में दुनिया की पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन शुरू की गई थी। यह रेलवे लाइन स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच बनाई गई थी। इस रेल मार्ग पर भाप इंजन से चलने वाली ट्रेनें दौड़ा करती थी। ये मानव इतिहास में परिवहन के क्षेत्र में एक नई क्रांति शुरू हो गई थी। रेल पटरी का निर्माण विज्ञान और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। रेल की पटरियां विशेष प्रकार के मजबूत स्टील से बनाई जाती हैं, ताकि वे भारी ट्रेनों का वजन सह सके। दो समानांतर पटरियों के बीच दूरी को गेज कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से ब्रॉड गेज का उपयोग किया जाता है। रेल पटरियों के नीचे लकड़ी, कंक्रीट या लोहे के स्लीपर लगाए जाते हैं, जो पटरियों को मजबूती और संतुलन प्रदान करने का काम करते हैं। इसके नीचे पत्थरों की परत बिछाई जाती है, जिसे बैलेस्ट कहा जाता है, या ट्रैक को स्थिर रखने और कंपन कम करने में मदद करता है। रेल पटरी के आविष्कार ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का काम तो किया ही।

0: पहले जहां लंबी यात्राएं करने में कई दिन या सप्ताह लग जाते थे, वहीं रेलगाड़ियों ने यात्रा को तेज, सुरक्षित और सस्ता बनाने का काम किया। व्यापार बढ़ा, उद्योगों का विकास हुआ और लोगों के बीच संपर्क भी मजबूत हुए। में रेलवे का इतिहास काफी रोचक है। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चलाई गई थी। इस ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया। आज भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। लाखों यात्री प्रतिदिन ट्रेन से सफर करते हैं। आधुनिक तकनीक के कारण अब हाई स्पीड ट्रेनें और मेट्रो रेल भी विकसित हो रहे हैं। रेल पटरी केवल लोहे की लाइन नहीं है, बल्कि ये विकास, प्रगति और लोगों को जोड़ने का माध्यम है। इसने शिक्षा, व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को नई दिशा दी है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमें रेलवे ट्रैक के आसपास साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए, पटरियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमने आपको रेलवे ट्रैक यानी कि रेल पटरी के आविष्कार के बारे में बता दिया और आज हमने ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियां आपसे साझा कर ली और अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने देश को विकसित करने में हम अपना योगदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अथक प्रयासों को करते हुए आज हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है और विश्व पटल पर एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। तो हम इसी तरह अपनी ऊर्जा बनाए रखें, देश को इसी तरह मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ आगे लेकर बढ़ते रहें। इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे लेते विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग था बसंत कुमार का। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में, कार्यक्रम विवरण के माध्यम से। अब से थोड़ी देर बाद 4:35 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का।

शाम 5:02 पर हम लेकर आएंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। सूत्रधार होंगे स्नेहा और पूजा, प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। 5:30 का वक्त होगा कामगारों के दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक का। सूत्रधार होंगी पूजा बोस और सुषमा एक का, प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। शाम 6:00 हम लेकर आएंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत चर्चा होगी फसल भंडारण की तकनीक। आज की बात में आप सुनेंगे गर्मा मूंग की फसल की देखरेख। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, वैज्ञानिक दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र रांची। भेंट करता होंगे संजीव कुमार लाल और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की ही। शाम 6:32 का वक्त होगा हमारी दुनिया कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत चर्चा होगी बेटी घर की शान। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी वार्ता जल संरक्षण से संबंधित। वार्ताकार होंगे सीमा केशरी, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम 7:15 का वक्त होगा आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत चर्चा होगी साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय। मैया समान योजना के संदर्भ में भी आपको जानकारी दी जाएगी। प्रस्तुत करता होंगे प्रदीप कुमार। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती। इसके अंतर्गत आप वार्ता सुनेंगे चरक संहितायाम आहार विषयक विचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर चंद्र माधव।

रात्रि 8 बजे का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सुनहरी यादें। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आज आप सुनेंगे पंडित वीजी जोग द्वारा वायलिन पर प्रस्तुत राग श्याम कल्याण में एक रचना। तबले पर संगत करेंगे श्यामल बोस। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं फिल्म आग का गोला का ये गीत। शब्दकार अनजान, संगीतकार बप्पी लहरी, आवाजें अलका याग्निक और बप्पी लहरी की हैं।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म त्रिदेव का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी की। शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। मौके पर अपने काफिले के साथ श्री आलम रांची के धुरवा स्थित आवास पहुंचे। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार, विभागीय सचिव, अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार की जनगणना 2027 को सफल बनाने को लेकर आज जामताड़ा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने स्वगणना कार्य सहज ढंग से संपन्न किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चैम्बर के सदस्यों ने स्वगणना कार्य में सहयोग किया। और रामगढ़ समाहरणालय परिसर में आज कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव शांतनु मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के समक्ष घर उजाड़ने के पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था करने की मांग की। मौके पर श्री मिश्रा ने बताया कि अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांगों पर सरकार को पहल करनी होगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: जितने बड़े सपने होंगे उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, आप भी बड़े सपने देखिए और तकलीफ़ों से घबराइए नहीं, लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: युवानी के हमारे प्रिय युवा साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे, और आज के हमारे कार्यक्रम युवानी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त स्नेहा,
0: और मैं हूँ पूजा।
1: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ, हम ढेर सारी बातें करेंगे, जानकारियां शेयर करेंगे और साथ ही साथ कुछ गीतों का आनंद भी लेंगे।
1: बिल्कुल पूजा। दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि रुकना जैसे कोई विकल्प ही नहीं है। सुबह अलार्म की आवाज से शुरू हुई दौड़ रात को बिस्तर पर जाने तक खत्म ही नहीं होती। इसी भागदौड़ भरी जिंदगी और इसके बीच फंसे हमारे युवाओं पर हम बात करने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल स्नेहा, हम अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुनते हैं कि उनके जमाने में सुकून था, लेकिन आज का युवा 24 साल की उम्र में ही बर्नआउट महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है, ये दौड़ क्या वाकई प्रगति है या हम बस किसी अंधी सुरंग में भागे जा रहे हैं?
1: पूजा, ये बहुत गहरा सवाल है। आज की भागदौड़ सिर्फ आर्थिक सफलता के लिए नहीं है, बल्कि दिखने की भी है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मल्टीटास्किंग को एक उपलब्धि की तरह देखा जाता है। युवा एक साथ करियर, सोशल मीडिया इमेज, फिटनेस और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि हम भाग रहे हैं, समस्या ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमें रुकना कहाँ है।
0: बिल्कुल, और इस दौड़ में फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ लोग छूट जाने का डर भी आग में घी का काम कर रहा है ना स्नेहा?
1: हाँ पूजा, जैसे अगर कोई दोस्त वेकेशन पर है तो दूसरे को लगता है कि वो पीछे छूट गया है, या फिर अगर किसी ने नई कार ली तो एक प्रेशर बन जाता है। ये मानसिक दबाव ही है जो हमें शारीरिक रूप से थका देता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज का इंसोम्निया, नींद ना आना, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। और अगर खान पान की बात करें तो फास्ट फूड इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि हमारे पास स्लो बैठकर खाने का वक्त ही नहीं है। और इस भागदौड़ का सबसे कड़वा सच है अकेलापन। तनाव की वजह से चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों पर एंग्जाइटी अब एक सामान्य बात होती जा रही है।
1: बिल्कुल, इसीलिए युवाओं को 8-8-8 का नियम अपनाना चाहिए, यानी 8 घंटे काम, 8 घंटे गहरी नींद और बाकी के 8 घंटे अपनी निजी खुशियों, परिवार और स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। सफलता की परिभाषा सिर्फ बैंक बैलेंस या पद नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी है। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि आप किसके लिए भाग रहे हैं। अगर मंजिल पर पहुँच कर आप उसे एंजॉय करने के लायक ही नहीं रहे तो ऐसी दौड़ का क्या फायदा? अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता बनाइए।
0: बिल्कुल स्नेहा, दोस्तों रुकना हार नहीं है बल्कि फिर से ऊर्जा जुटाने का एक तरीका है। दोस्तों, बातें तो आपसे और भी होंगी, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, आज की दुनिया में स्पीड को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है। जो तेज भाग रहा है उसे हम सफल मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेज दौड़ती हुई गाड़ी से बाहर का नजारा कभी साफ नहीं दिखता? नजारा देखने के लिए गाड़ी की रफ्तार को कम करनी पड़ती है या उसे रोकना पड़ता है। और अब हमारी चर्चा इसी ठहराव पर है, हमेशा भागे नहीं, थोड़ा रुके।
1: बिल्कुल स्नेहा, ये विषय सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जीने से ज्यादा जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मैं रुक गया तो दुनिया मुझसे आगे निकल जाएगी। ये जो पीछे छूट जाने का डर है, क्या यही हमें रुकने नहीं देता है?
0: बिल्कुल पूजा, इसे हम चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। हम अक्सर मंजिल की इतनी फिक्र करते हैं कि रास्ते का आनंद लेना भूल ही जाते हैं। रुकने का मतलब आलस नहीं है, बल्कि रुकने का मतलब है स्वयं का अवलोकन, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन,
1: यानी खुद को रीचेक करना।
0: हाँ
1: इसने हाँ, जब हम रुकते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क में क्या बदलाव होते हैं? साइंस इसके बारे में क्या कहता है?
0: जब हम लगातार तनाव में भागते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। इससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। लेकिन जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं या बस शांत बैठते हैं, तो हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, डाइजेशन बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, हमारी क्रिएटिविटी वापस आती है।
1: ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब नए विचार तब आते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते?
0: बिल्कुल, दुनिया के बड़े बड़े आविष्कारों को विचार तब आए जब वे आराम कर रहे थे या टहल रहे थे, ना कि तब जब वे सिर्फ काम में डूबे थे। दोस्तों, ठहराव ही विचारों की जननी है। जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे खत्म करना है, बल्कि एक यात्रा है जिसे जीना है।
1: दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इतिहास में जुड़े आज के विशेष दिन को जानते हैं। 14 मई 1796 को ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का पहला सफल परीक्षण किया था। इस महत्वपूर्ण खोज के कारण उन्हें आधुनिक टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन का जनक भी माना जाता है।
0: 1948 को इसराइल ने स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था और इसी दिन इसराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। वहीं 1973 को अमेरिका ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काईलैब लॉन्च किया था, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ।
1: 1657 को मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे और अपनी वीरता, नेतृत्व और साहस के लिए जाने जाते हैं।
0: 1972 में भारत ने वन्य जीव संरक्षण के लिए नई नीतियों की शुरुआत की, जो आगे चलकर प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाओं का आधार बनी।
1: 1955 सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों ने वारसो पैक्ट पर हस्ताक्षर किए।
0: दोस्तों, बातें तो आपसे होती रहेगी, लेकिन आइए आपको ले चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस एक खूबसूरत देश है और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा लोग इस देश की यात्रा करते हैं।
1: यदि आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो आपको बता दें, कुत्ते करीब 250 शब्दों और इशारों को समझने में सक्षम होते हैं।
0: दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जेलीफिश 160 फीट लंबी होती है।
1: दुनिया में चीन ही एकमात्र देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है।
0: क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया में सर्वाधिक झील कहाँ पाई जाती है? फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं क्योंकि इस देश में 1,87,888 झीलें हैं।
1: यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पुराना झंडा किस देश का है, तो इसका जवाब होगा डेनमार्क, जो 13वीं सदी से है।
0: दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में वैसे तो प्रत्येक तथ्य आश्चर्यजनक होते हैं। उन्हीं में से एक यह है कि अंतरिक्ष यात्री ढकार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पेट में लिक्विड से गैस को अलग करने के लिए वहां ग्रेविटी ही नहीं होता।
1: अगर आप सोचते हुए सोते हैं तो दिमाग नींद में भी सोचता रहता है, जिससे आपको जागने पर आराम की फीलिंग नहीं आती और थकावट महसूस होती है।
0: दोस्तों, चर्चा की इस कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में चीन की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 जीता है।
1: झारखंड के हजारीबाग जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है।
0: सिक्किम भारत की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना है।
1: प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं। अशोक कुमार पांडा सेल के नए चेयरमैन प्रबंधन निर्देशक बने हैं।
0: वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं।
1: राष्ट्रीय आर्थिक नीति, पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 15% तक कर दिया है, जिससे राष्ट्र कीमती धातु बाजारों पर असर पड़ेगा।
0: भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मिशन की शुरुआत भी की है। दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी है, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम सब कहीं ना कहीं लगातार दौड़ रहे हैं। कभी सपनों के पीछे, कभी जिम्मेदारियों के पीछे, तो कभी समय से आगे निकल जाने की कोशिश में।
1: बिल्कुल स्नेहा, लेकिन इसी दौड़ में अक्सर हम भूल जाते हैं खुद के लिए जीना, खुद से बातें करना और उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना जो हर दिन हमारे आसपास बिखरी होती है।
0: आज के इस कार्यक्रम में सुकून के कुछ पल में हमने कोशिश की है कि कुछ देर के लिए ही सही आपके चेहरे पर मुस्कान आए, दिल को राहत मिले और मन को थोड़ी शांति।
1: बिल्कुल, कभी चाय की एक प्याली में सुकून मिलता है, कभी पुरानी गानों में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी किसी अपनों की आवाज़ में। सुकून कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये तो वो एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, रुक कर मुस्कुराने का भी नाम है।
0: बिल्कुल पूजा, आज अगर आप थोड़ा मुस्कुरा पाए तो थोड़ा हल्का महसूस कर पाए तो समझिए हमारा ये प्रयास आपके लिए सफल हुआ। दोस्तों, आप अपने दिन में कुछ पल ऐसे ज़रूर निकालिए जहाँ ना मोबाइल हो ना तनाव हो, बस आप हो और आपकी मुस्कान।
1: बिल्कुल स्नेहा, अपने माता पिता के साथ बैठिए, दोस्तों से दिल खोल कर बातें कीजिए, पुरानी यादों को फिर से जी लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पल आगे चलकर जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से बन जाते हैं।
0: हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है दोस्तों, बस उसी अच्छाई को महसूस करने का नाम ही सुकून है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मन तो नहीं कर रहा है जाने का, पर स्टूडियो की घड़ी हमें रुकने की इजाज़त नहीं देती, तो दीजिए अपनी दोस्त स्नेहा
1: और पूजा,
0: को इजाज़त। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार जोहार, आप सुन रहे हैं श्रमिक लोक कार्यक्रम। साथियों, दिन भर की मेहनत के बाद शाम के इस सभा में आप सभी श्रमिक श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुषमा।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी चहेती पूजा। स्वीकार कीजिए मेरा भी जोहार, नमस्कार। साथियों, इन दिनों मौसम के मिजाज तो आप देख ही रहे हैं, कभी तेज धूप होती है तो कभी बिल्कुल झमाझम बारिश। इस बढ़ते तापमान के दरमियान भी हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे भले और बिल्कुल हेल्दी बने होंगे और आपका परिवार भी खुशहाल होगा।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। कहते हैं ना, स्वस्थ वातावरण ही सफल कार्य की पहली पहचान है। इसी सोच के साथ आज हम चर्चा करेंगे स्वस्थ कार्य वातावरण से बेहतर कार्य प्रदर्शन कैसे संभव होता है।
1: बिल्कुल, किसी भी संस्थान, फैक्ट्री, कार्यस्थल या निर्माण स्थल की सबसे बड़ी जो शक्ति मानी जाती है वो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं और जो वहाँ कर्मचारी होते हैं वो होते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्हें भी हम नहीं भूल सकते हैं जिनका कह सकते हैं जिनकी एक बहुत कड़ी मेहनत होती है उस पूरे कार्यस्थल की सफलता सही तरीके से यानी सुचारू रूप से चलाने की, यानी जो वातावरण है कार्यस्थल का वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है श्रमिकों के लिए।
0: बिल्कुल, जब कार्यस्थल स्वच्छ, सुरक्षित और सकारात्मक होता है ना, तब श्रमिक पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य करते हैं। अच्छा वातावरण मानसिक तनाव को कम करता है और कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल, जैसे हम इसे समझ सकते हैं, यदि कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ हवा, पीने का साफ पानी, सुरक्षा उपकरण और समय पर विश्राम जैसी सुविधाएं अगर हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं तो दुर्घटनाओं की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जिससे श्रमिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और उनका मनोबल भी ऊंचा उठता है। और तो और, जब अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सम्मान और सहयोग की जो व्यवहार है वो आपस में जब बढ़ जाता है तो जो टीम वर्क है वो बाहर निकलता है, मजबूती दिखती है और जो काम की जो गुणवत्ता की जो हम बात करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बेहतरीन होता है।
0: श्रमिक साथियों, स्वस्थ कार्य वातावरण केवल मशीनों और सुविधाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आपसी विश्वास, संवाद और संवेदनशीलता से भी बनता है। जहाँ श्रमिकों की समस्याओं को सुना जाता है, उनके सुझावों को महत्व दिया जाता है और उनकी मेहनत की सराहना होती है, वहाँ कर्मचारी अपने कार्य को अधिक जिम्मेदारी और लगन के साथ निभाते हैं।
1: बिल्कुल, आज के समय में हर संस्था को ये जरूरी है समझना कि स्वस्थ, सुरक्षा और संतुष्ट श्रमिक ही आपके उद्योग को असली ताकत है और बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं।
0: बिल्कुल, जब कार्यस्थल पर वातावरण बेहतर होगा तभी कार्य प्रदर्शन उत्कृष्ट होगा और विकास की गति तेज होगी। मतलब ऐसा कार्य वातावरण जहाँ सुरक्षा हो, सम्मान हो और हर श्रमिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: बिल्कुल सही, संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। और आइए इसी पे हम एक
0: प्रेरणादायक
1: सॉन्ग है, आप सुन लेते हैं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रमिक लोग पूजा और
3: सुषमा के साथ।
2: बिल्कुल, तो सफर को आगे बढ़ाते हैं और अभी आप फिलहाल सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा गाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं स्वस्थ और सम्मानजनक कार्य वातावरण की जो चर्चा हमने जो भी की
3: उनके बाद अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति के स्तंभ महान विधिवेता अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर की जयंती पर। साथियों, भारत के संविधान निर्माण में जिन महान व्यक्तियों ने अपनी बुद्धिमता, दूरदृष्टि और कानूनी ज्ञान से महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्यों में एक थे और उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था का मजबूत स्तंभ माना जाता है। अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर का जन्म 14 मई 1883 में हुआ था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से कानून के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी रहे और संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने समानता, न्याय और नागरिक अधिकारों को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया।
2: बिल्कुल, और साथ ही श्रमिकों और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में भारतीय संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। कार्यस्थल पर सम्मान अवसर, सम्मानजनक व्यवहार, सुरक्षित वातावरण और न्याय पाने का अधिकार, ये सभी
3: संवैधानिक जो मूल्य होते हैं
2: उससे जुड़े होते हैं।
3: अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे महान विचारकों की दूरदृष्टि ने ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया।
2: बिल्कुल, और आज इनकी जयंती हमें ये संदेश देती है कि शिक्षा, ज्ञान और ईमानदारी के बल पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। साथ ही हमें संविधान के मूल्यों, समानता, न्याय और मानव सम्मान को अपने जीवन और कार्यस्थल में अपनाने की प्रेरणा भी देता है।
3: बिल्कुल, और अब बात करते हैं स्वस्थ शरीर और संतुलित पोषण के बारे में। साथियों, अच्छा स्वास्थ्य ही मेहनतकश जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपना कार्य कर पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए केवल भरपेट भोजन ही नहीं बल्कि संतुलित पोषण भी बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, स्वस्थ पूर्ण शरीर के लिए संतुलित पोषण व्यस्त जीवन में सही खाना की असली दवा के रूप में माना जाता है। संतुलित भोजन यानी 6 मुख्य तत्वों का मिश्रण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और पानी, ये थाली का वो आधा हिस्सा है जो बिल्कुल आपके थाली में होना ही चाहिए। उसी के साथ हरी सब्जियां, फल, 1/4 अनाज और 1/4 दाल, प्रोटीन, चीनी, नमक के साथ थोड़ा चीनी नमक थोड़ा कम रखें जिससे सबसे आपके शरीर को सारी जो पौष्टिक चीजें हैं वो मिल पाए। और सबसे पहले उठते के साथ ना एक बहुत ही गंदी वाली आदत हम सभी में होती है कि हम चाय पी लेते हैं।
3: बिल्कुल हमें
2: ये लगता है कि चाय पीने से हमें रिफ्रेशमेंट होता है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। आप सुबह उठकर आपका जो कहते हैं ना, जो आपके जो मुंह में जो लार्वा होता है वो आपके शरीर में जाना चाहिए, तो आपको सुबह उठकर ग्लास भरकर पानी पीना चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात कहा। और ये सारी चीजें जो है ना हमें ताकत देती है, शरीर को ताकत देती है, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं ना। और साथियों, कई बार काम की व्यवस्था में भी लोग समय पर भोजन नहीं करते या केवल पेट भरने वाला खाना खा लेते हैं, इससे शरीर कमजोर होने लगता है और थकान, बीमारी तथा काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम समय पर पौष्टिक भोजन करें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें।
2: बिल्कुल, वैसे तो साथियों हम सभी ये जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही मेहनत और सफलता की असली पूंजी होती है, लेकिन क्या हमारे देश में श्रमिक भाई बहन जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य और पोषण को प्रति? इससे कठिनाई होती है अपने आप को स्वस्थ रखने की, ये तो हम कई बार
3: देखते भी हैं, जानते भी हैं। तो आइए साथियों, हम इसी बात पर हम सुनते हैं ये वार्ता जिसे इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं राहुल मिश्रा जी।
0: दोस्तों, हमारा देश भारत जहां विकास की ऊंचाइयां छूने के प्रयास निरंतर जारी हैं, वहां विकास की नींव रखने वाले असली निर्माता हैं हमारे श्रमिक। चाहे इमारतों की ऊंचाई हो, खेतों में अनाज जाना हो, कारखानों में मशीनें चलाना या सड़कें बिछाना, हर एक क्षेत्र में श्रमिकों का योगदान अमूल्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारे देश की रीढ़ माने जाते हैं, जिनकी मेहनत से हमारा जीवन आसान बनता है, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं? उनमें सबसे बड़ा संकट है पोषण की कमी। दोस्तों, पोषण सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर को ऊर्जा देने, रोगों से लड़ने और कार्य क्षमता को बनाए रखने की एक अनिवार्य आवश्यकता है। दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश श्रमिक वर्ग को न तो पर्याप्त आहार मिलता है, न ही उनके भोजन में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। हम जानेंगे कि आखिर पोषण क्या है, श्रमिकों के लिए यह क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर विचार करें और मिलकर एक स्वास्थ्य समृद्ध और पोषण युक्त भारत की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वर्ग वह है जो चुपचाप बिना किसी विशेष सम्मान या मान्यता के देश के निर्माण में दिन रात लगा रहता है। चाहे बात शहरी निर्माण कार्यों की हो, सड़कों के विस्तार की, औद्योगिक उत्पादन, घरेलू सेवाओं की या कृषि क्षेत्र की, श्रमिकों के योगदान के बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। श्रमिक वह वर्ग है जो अपने श्रम से देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देता है। ये लोग अक्सर फैक्ट्रियां, निर्माण स्थल, खेत खदान, ईंट भट्टा, घरों और सड़कों पर कार्य करते हैं। इनकी कार्यशैली अधिक शारीरिक होती है, जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा, सहन शक्ति और मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनकी पोषण आवश्यकताएं एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है। श्रमिक के दैनिक जीवन की बात करें तो इनका दैनिक जीवन अत्यंत कठिन होता है। तेज धूप, ठंड, बारिश, कोई भी मौसम हो, ये श्रमिक लगातार काम करते हैं। इनका शरीर हर दिन अत्यधिक ऊर्जा खर्च करता है। ऐसे में इन्हें विशेष पोषण की आवश्यकता होती है। ये थकान, बीमारी और कमजोरी से बचे रहें और लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम रहें। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश श्रमिकों को न तो संतुलित आहार मिल पाता है, न ही भोजन की नियमितता बनी रहती है। कारण स्पष्ट है दोस्तों, कम आय, महंगाई, पोषण के प्रति जागरूकता की कमी और सरकारी योजनाएं तक सीमित पहुँच। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि पोषण केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, यह कार्य क्षमता, उत्पादन, मानसिक संतुलन और भावनात्मक मजबूती से भी जुड़ा हुआ है। एक कुपोषित श्रमिक न तो पूरे दिन काम कर सकता है, न ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, या अंततः देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है। आज की परिस्थिति में जब स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि श्रमिक वर्ग को विशेष रूप से पोषण के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें यह बताया जाए कि खाने में केवल पेट भरना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि खाना पोषक तत्वों से भरपूर हो। श्रमिक दिन भर मेहनत करते हैं, ईंट उठाना, गड्ढा खोदना, मशीनें चलाना, माल ढोना या भारी औजारों के साथ कार्य करना, इन सब कामों में अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती है, इसलिए श्रमिक को पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। पोषण क्या है हम जानते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे शरीर का विकास, मरम्मत और स्वास्थ्य बना रह सके। सरल शब्दों में कहें तो जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, वह केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर के आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए होता है। पोषण का अर्थ है ऐसा आहार जो संतुलित हो, अर्थात जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल और फाइबर उचित मात्रा में मौजूद हो। एक संतुलित आहार शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है, बीमारियों से भी बचाता है और मानसिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। अब आइए जानें पोषण के कुछ मुख्य घटक और यह भी कि ये श्रमिकों के लिए क्यों आवश्यक। इनमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है। श्रमिक जो कठिन शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनाज, चावल, रोटी, आलू जैसे भोजन इनकी पूर्ति करते हैं। प्रोटीन शरीर के निर्माण खंड है, यहाँ मांसपेशियां और कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। एक श्रमिक का शरीर हर दिन थकता है, टूटता है, ऐसे में प्रोटीन उसका निर्माण और संतुलन बनाए रखता है। दाल, अंडे, दूध, सोया आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। यह ऊर्जा, वसा, यह ऊर्जा का संग्रहित रूप है। सीमित मात्रा में वसा शरीर में उष्मा बनाए रखता है और अंगों को सुरक्षा देता है। देसी घी, मूंगफली, तिल, सरसों का तेल वसा के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन शरीर के समुचित कार्य संचालन में अत्यंत आवश्यक है, जैसे विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और विटामिन डी हड्डियों के लिए। फल सब्जियां धूप में समय बिताने से ये प्राप्त होते हैं। पांचवा, आयरन खनिज। कैल्शियम जिंक जैसे तत्व शरीर की कार्य प्रणाली को बनाए रखते हैं। खासकर आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है जो श्रमिकों में आम है और थकावट का कारण बनता है। हरी सब्जियां दूध अनाज अच्छे स्रोत हैं। छठा है पानी जल, यानी कि पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन में मदद करता है। गर्मी में या खुले मैदान में कार्यरत श्रमिकों को विशेष रूप से पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी की भी अधिक ख्याल रखें। स्वच्छ जल यानी साफ पानी शरीर के लिए आवश्यक है। गंदगी युक्त जल यानी दूषित पानी बीमारी का घर है। अब बात करते हैं फाइबर की, रेशा। यह पाचन तंत्र को ठीक रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। चोकर फल और सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यह पोषण इतना आवश्यक क्यों है। विशेष रूप से श्रमिकों के लिए इसका उत्तर सीधा है, क्योंकि श्रमिक वर्ग शारीरिक श्रम अधिक करता है और उसे अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। श्रमिकों के कार्य प्रणाली इस पर निर्भर करती है कि उनका शरीर कितनी क्षमता से कार्य कर सकता है। यदि उन्हें सही पोषण नहीं मिलेगा तो वे जल्दी थक जाएंगे, बीमार पड़ेंगे और उनकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। इससे न केवल उनके जीवन पर असर पड़ेगा बल्कि देश की उत्पादन शक्ति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्रमिकों के भोजन में नियमित रूप से जरूरी हैं ये प्रमुख घटक, इसके बारे में जानते हैं। विटामिन ए दृष्टि और त्वचा के लिए, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए। आयरन, आयरन खून की कमी से बचने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए। अक्सर श्रमिक महिलाएं और पुरुष एनीमिया से पीड़ित होते हैं, इसलिए श्रमिकों को इन सब विटामिन की जरूरत होती है और श्रमिक इन सब का अधिक ख्याल भी रखें। जानते हैं श्रमिकों को उचित पोषण क्यों नहीं मिल पाता, इसके कई गहरे सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। आर्थिक असमानता और गरीबी ये प्रमुख श्रमिकों के कारण हैं। भारत के अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं जहां उन्हें दैनिक मजदूरी या ठेके पर भुगतान मिलता है। इनकी आमदनी सीमित होती है और बढ़ती महंगाई के कारण यह आय पर्याप्त नहीं होती। भोजन के बजट में कटौती करनी पड़ती है। जब घर में कुल आय सीमित होती है तो सबसे पहले खर्च भोजन पर ही घटाया जाता है। पौष्टिक भोजन महंगा होता है, जैसे दूध फल हरी सब्जियां दाल, ये सभी गरीब श्रमिकों की पहुँच से बाहर हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें भी इसका कारण है। भारत में खाद्य यानी खाद्य वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। हर मौसम में सब्जियां अनाज और दूध के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। श्रमिक वर्ग का वेतन स्थिर रहता है लेकिन महंगाई अस्थिर होती है। फलस्वरूप श्रमिक परिवार केवल वही खाते हैं जो सस्ता हो, जैसे कि सिर चावल रोटी। इससे उनके भोजन में विविधता नहीं रहती और वे पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं। भोजन के प्रति जागरूकता की कमी। कई बार यह देखा गया है कि मजदूर श्रमिक यह नहीं जानते कि संतुलित आहार क्या होता है और शरीर को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वे पेट भरने को ही पोषण मान लेते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों से आए श्रमिकों में पोषण के विषय में जानकारी की कमी होती है। फल दूध या अंकुरित अनाज की उपयोगिता उन्हें नहीं पता होती और वे ऐसे विकल्पों को अनावश्यक मान लेते हैं। कार्यस्थल पर पोषण की उपेक्षा। बहुत से श्रमिक सुबह 6 से 7 बजे ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं और देर शाम लौटते हैं। इस दौरान उनके पास भोजन पकाने या

0: के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमें उनके जीवन को सम्मानजनक बनाने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि श्रमिक के पोषण से संबंधित समस्याओं का समाधान केवल सरकारी नीतियों से नहीं हो सकता। इसके लिए एक संयुक्त प्रयास आवश्यक है जिसमें सरकार, समाज और व्यावसायिक संस्थानों की भागीदारी हो। समाज का योगदान सिर्फ दान या सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सक्रिय रूप से श्रमिकों के साथ स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर समाज, सरकार और निजी क्षेत्र एकजुट होकर काम करें तो हम श्रमिकों को सही पोषण प्रदान कर सकते हैं, जैसे जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, उनका जीवन बेहतर होगा और राष्ट्र का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। स्वस्थ श्रमिक, खुशहाल श्रमिक देश की प्रगति के आधार। धन्यवाद।
1: तो साथियों, राहुल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसे स्वस्थ जीवन के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए साथियों अच्छी आमदनी की भी आवश्यकता होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सीखो और कमाओ योजना की एक महत्वपूर्ण पहल है, कदम है।
2: बिल्कुल, यानी कौशल से रोजगार की ओर, जो अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल सिखाकर रोजगार की ओर कैसे ले जाया जाता है, ये योजना में आपको मिलता है। जब अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि कैसे ये रोजगार बनाता है, तो चलिए इसे हम समझाते हैं। सबसे पहले समझिए योजना क्या है। सीखो और कमाओ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक हिस्सा है। ये मुफ्त ट्रेनिंग देती है, जिसमें जो अगर जो आप ट्रेनिंग लेते हैं उसके दौरान आपको स्टिफन जो अमाउंट है एक वो भी बीच बीच में मिलता रहता है महीने में, और इससे जुड़ने के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, और हाँ 5वीं तक तो आपको पढ़ा होना ही चाहिए।
1: बिल्कुल होना चाहिए। और साथियों, इस योजना के तहत हम बता दें आपको कि युवाओं को सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल और अन्य तकनीकी कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कार्य का व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ रोजगार की ओर कदम बढ़ा सकें।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ आप ये जो कार्यक्रम में आप जब जुड़ते हैं तो 3 से 6 महीने का जो कोर्स है वो करेंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, और बहुत सारे जो बच्चे हैं यानी 70% जो युवा हैं उन्हें उसी दौरान में नौकरियां भी लग जाती है।
1: और आज की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक युवा इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने सपनों को नई पहचान दें। ध्यान देने वाली बात तो ये है पूजा की साथियों कि सीखने वाला कभी पीछे नहीं रहता और हुनर हमेशा राह दिखाता है।
2: तो बिल्कुल, और इसी संदेश के साथ हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप बिल्कुल इंतजार अब मत कीजिए, आज ही रजिस्टर करें खुद को और रोजगार के लिए आगे आए। तो फिलहाल कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां दी हैं हमने, इसी वादे के साथ आपको छोड़े चलेंगे कि आप अपना ख्याल रखेंगे और हमेशा हमारा कार्यक्रम यूं ही सुनते रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और भी है पूजा कि जो हमारे श्रमिक भाई बंधु हैं वो अभी जो मौसम जो बदल रहा है ना उसमें अपना बहुत सारा ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ठंड और गर्म होते रहता है। तो साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे श्रमिक लोक आकाशवाणी का, ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। खूंटी में पुलिस लगातार अवैध अफीम डोडा के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में खूंटी और मुरहू पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य का लगभग 2 किलो अवैध अफीम, 231 किलोग्राम डोडा, एक

0: और एक बाइक जब्त की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि अफीम डोडा के कारोबार की मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने आज आमजनों की सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान की शुरुआत की और थाना प्रभारियों के साथ पैदल मार्च किया। प्रहरी पहल नाम से शुरू इस अभियान के तहत जिले में अपराध नियंत्रण तथा उद्भेदन, छेड़खानी, सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग रोकने और क्षेत्र में भौतिक रूप से पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों की क्षमता बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा। चतरा के उपायुक्त रवि आनंद आज औचक निरीक्षण करने गिद्धौर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रखंड तथा अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में उपस्थित पंजी समेत कई फाइलों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। रामगढ़ समाहरणालय परिसर में आज कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव शांतनु मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के समक्ष घर उजाड़ने के पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था करने की मांग की। मौके पर श्री मिश्रा ने बताया कि अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांगों पर सरकार को पहल करनी होगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: संध्या बहन कर जोहार
0: जोहार। और ये कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: पहले जाने ला का जानकारी कर भी कर बारे में है नी। तो आज की बात में हमरे मन जानब गर्मा मूंग कर फसील कर देख रेख का लिखे करक चाहिए बतावे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। और कृषि गीत सुनब हमरे नागपुरी में देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल तले। नई उम्र की नई फसल में जानब आज मधुमक्खी पालन कर बारे में किसान भाई हैं संतर सिंह।
0: तो भाई देखो मौसम तो उतार चढ़ाव हुआ लाई है नहीं? और ऐसा उतार चढ़ाव हुआ थे कि एखने रौद और एखने पानी है नहीं? एखने जो है से तुरंत मने पंखा और कूलर चलाए कर मने मौसम हो जाए ला।
1: हाँ,
0: और आज के जो है से स्वेटर मन पिंधे कर मौसम हो जाए ला है।
1: हाँ,
0: आज के जाड़ और आज के गर्मी और इतना जोर उतार चढ़ाव हुआ थे तो इकरे में किसान भाई बहन मन के तनिक ना अपन सेहत कर भी ख्याल रखे के।
1: हाँ भाई, काले के देखो खेती बाड़ी कर काम काज तो सालों भर चलेला, तो स्वस्थ रह तो बहुत जरूरी है और स्वस्थ रह तबे काम काज खुशी से हुई है नहीं।
0: और देखो फसल के स्वस्थ रखे में जैसे जैसे फसल तो कर ले ली।
1: हाँ,
0: लेकिन उकर अगर भंडारण नहीं कर ली ठीक से तो उकर में जैसे घुन और कहे जाए फतिंगा मन का कहे उनके सूरी मन लागे डर हो जाए।
1: हाँ भाई, तो राखे पहले बेस से सुखाए लेक है नहीं।
0: बेस से सुखाए के और बढ़िया जगह में सुखल जगह में और
1: हाँ,
0: भंडारण करे के चाहिए। जैसे पहले हमारे छटका डेमनी मन में करत रही नहीं मोरा।
1: हाँ,
0: बांध के करत रही
1: के।
0: तो ओहो बेरा जो है से मने उपचार होत रहे कि नीम कर पतई और एक ठो दवाई मिले लो के भी डालत रहे टेबलेट।
1: हाँ, और कोनो कोनो में देखत रही ये का कहना करंज तेल के वो लगात रहे।
0: हाँ, और सेवरा देखे में आवत रहे कि जब तनिकुना नहीं बेस से करत रहे तो सूढ़ी एकदम सफेद सफेद छोटे छोटे पपला लखे जो उड़े बहुत जोर धान के चूसत रहे।
1: हाँ,
0: और एकदम खोखला कर देवत रहे। तो भाई देखो इतना मेहनत से तो फसल के उगावी ले लेकिन अगर भंडारण ठीक से नहीं करो तो कोनो फायदा नहीं है। तो भाई जैसे मौसम कर उतार चढ़ाव कहत ही
1: तो दिन भर
0: आज के मौसम के बारे में बता दो तनी।
1: आज तो पूरा बेरा रौद रहलक। तापमान आज राजधानी रांची कर इलखे रहलक। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। अगला 5 दिन में तापमान बढ़े कर आसरा है। तो भाई ई होलक आज कर मौसम।
0: अब कार्यक्रम के आगे बढ़ा थे आज की बात से।
1: हाँ,
0: तो आओ हमरे गर्मा मूंग कर फसल कर देख रेख कर बारे में हमारे जानकारी कर थे। जानकारी देवत हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और इनकर से बतियात हैं संजीव कुमार लाल।
1: हाँ,
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों अभी आपने गर्मा मूंग की फसल लगा रखी है, फसल बढ़वार भी ले चुकी है और इस वक्त तक समय की मांग है कि फसल बढ़िया हो, पैदावार अच्छी हो, इसके लिए कुछ बातें को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें खरपतवार नियंत्रण करना है, सिंचाई का प्रबंधन भी हमें ध्यान रखना है, समय पर निराई गुड़ाई और खाद का भी प्रबंधन और साथ साथ रोग मुक्त हो हमारी फसल, इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए आमंत्रित हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, गर्मा मूंग की फसल खेतों में है तो अभी हमारे किसान साथी किन किन बातों का ख्याल रखे ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो और अच्छी आमदनी हो?
3: किसान भाइयों, अगर आपने फसल लगा दिया है तो अब ध्यान रखना होगा कि हमें उसकी सिंचाई का प्रबंधन, उसमें खरपतवार नियंत्रण और उसके उर्वरक और साथ ही साथ आप उसमें प्रयास करेंगे कि जो कीट और रोग व्याधियां हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है
2: जी। तो सबसे पहले हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण यदि ज़्यादा हमारे में सब खरपतवार हो जा रहा है तो फसल को नुकसान भी पहुंचता है, उसकी ग्रोथ में भी दिक्कत होती है, तो कैसे हम इस पर नियंत्रण पाएं?
3: किसान भाई, जब आप ये मूंग लगा चुके हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है ये मूंग लगाए हैं इसकी निकाई गुड़ाई करना जरूरी है। निकाई गुड़ाई करने के लिए आप जो है खुरपी कुदाल के द्वारा ये दो बार जो है 15 से 20 दिन में और दूसरा जो है निकाई गुड़ाई 30 से 35 दिन में करना होता है। और आजकल तो व्हील हो आ गया है, बढ़िया ढंग से उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मैनुअल लेबर कम है तो वहाँ पे आप जो है दवा का, ये खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेंडीमेथिलिन जो है ये शुरू में बुवाई के समय प्री इमरजेंस के रूप में आप एक एकड़ में 1.25 लीटर ये घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो उससे जो है बुवाई के समय इसको करने से खरपतवार जो प्री इमरजेंस है, जो खरपतवार आने वाले हैं, रोका जा सकता है। पोस्ट इमरजेंस में क्विजालोफोप ये इथाइल जो खरपतवार नाशी है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के 15 से 20 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए, जिससे वहाँ पर जो भी खरपतवार है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए, हमारा फसल जो है वह बढ़िया ढंग से विकसित हो और उसमें उसको फायदा हो सके कि उसके जगह बढ़िया मिल सकेगा, मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा और वह जो है वहाँ कीट व्याधियाँ आने की संभावना भी खरपतवार पे जो आती हैं वो नहीं आएगा
2: जी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब सिंचाई प्रबंधन है वो भी बहुत जरूरी है, निराई गुड़ाई काम ध्यान दें तो सिंचाई कब कब करें?
3: देखिए गर्मा मूंग में सिंचाई 3 से 4 देना बहुत आवश्यक है। ये कोशिश करना चाहिए कि 12 से 14 दिन पे इसको सिंचाई दिया जाए जिससे कि आपका पौध का वृद्धि विकास बढ़िया हो सके, क्योंकि ये मुख्य रूप से फूल आने के समय, फली बनते समय और इसमें बहुत सावधानी रखना चाहिए, उस समय पानी की कमी ना हो। ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ना होने पाए, ज़्यादा पानी होने से भी पौध का ये समस्या होता है। अगर भारी बारिश होता है तो आप पानी निकासी का प्रबंध भी बढ़िया ढंग से करें और 12 दिन से 15 दिन के अंतर पर आप सिंचाई देते चलें जिससे आपका फसल का उत्पादन अच्छा हो पाएगा
2: जी। और साथ साथ डॉक्टर साहब निराई गुड़ाई भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है गर्मा मूंग की फसल में, तो निराई गुड़ाई के साथ साथ रोग मुक्त हो हमारी फसल, तो किसान साथी किन किन बातों का ख्याल रखें और यदि बीमारी लग जाती है तो कैसे उसका पहचान करें और उसका निराकरण कैसे करें?
3: किसान भाई ये इसमें ये कीट की व्याधि समस्या ग्रसित रहता है तो ऐसे स्थिति में आप इसमें व्हाइट फ्लाई आता है तो कीट में जो है जो पत्तियों पर ये अटैक करता है तो धीरे धीरे हमारी पत्तियों जो है पीली होने लगती हैं और पीला मोज़ेक के नाम से आगे जाना जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए देसी विधि है 5 ml नीम का तेल या करंज का तेल घोल प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसको छिड़काव करें। अगर टंकी में इसको यूज कर रहे हैं 15 लीटर में 75 ml ये नीम का या करंज का तेल रहेगा, उसमें आधा पाउच जो है शैम्पू मिला देंगे जिससे उस पर चिपक जाए तो उससे रोका जा सकता है। अगर आप जो है ये प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, दवा देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास इमीडा क्लोरोप्रिड 3 लीटर पानी में 1 ml ये जो दवा है इसको घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो आपका ये मोज़ेक वाला प्रॉब्लम जो है तो ये पूरी तरह से रोका जा सकता है। दूसरा जो है उसमें एफिड आने की संभावना होता है जिसको माहू कह के बोलते हैं, पत्तियों का रस चूस करके इन्हें सिकुड़ जाती हैं, इसको रोकने के लिए थायोमेक्सोसान ये आपको 0.25 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके छिड़काव करें। अगर ये नहीं मिलता है थायोमेक्सोसाम तो आप इमीडा क्लोरोप्रिड ही आप जो है 17.8 SL का है और इससे जो है 3 लीटर पानी 3 ml को 3 लीटर पानी में 1 ml को घोल बना करके छिड़काव करेंगे। आगे इसमें थ्रिप्स भी आने की संभावना रहता है, थ्रिप्स आने पर पत्तियां मुड़ जाती हैं और सिल्वर रंग की दिखाई देने लगती हैं, ऐसी स्थिति में आप फिप्रोनिल 5% SC का जो है 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करेंगे या इमीडा क्लोरोप्रिड को छिड़काव करेंगे तो आपका थ्रिप्स भी रुक जाएगा। और लास्ट में आता है कीड़े के रूप में आपका पॉड बोरर जो है फली छेदक कीड़ा जो है बहुत सावधानी रखना है। ऐसी स्थिति में आप प्रयास करें कि वहाँ पर इवामेक्टिन बेंजोमेट 5% का SG का आप जो है 4 ग्राम ये 0.4 ग्राम प्रति लीटर मतलब कि 1 ग्राम को 2.5 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करेंगे तो इससे जो है आप जो है ये अपने जो फली छेदक कीड़ा है उसको बढ़िया ढंग से रोक सकते हैं। और जब रोग की बातें आती हैं तो उसमें भी कुछ सावधानियां रखना चाहिए कि रोग को कैसे रोका जाए, तो उसमें मोजैक, पीला मोजैक भी आता है और दूसरा जो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है। तो पीला मोजैक को रोकने के लिए सावधानी रखना है, ये ट्राईक्लोरोयोर 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना छिड़काव करें, या मेटासिस्टाक 1 ml प्रति लीटर घोल बना करके छिड़काव करें, तो इससे रोका जा सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू आएगा तो वहाँ पर सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर और या जो है कैरोथिन 1.5 ml प्रति लीटर की दर से इसको घोल बना करके छिड़काव करेंगे, जिससे आपका ये पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाए। सड़न की भी कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी स्थिति में कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम जो बीज उपचारित कर रहे थे उसी समय इसका उपयोग कर लेना चाहिए, पानी का निकासी अच्छा कर देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तब वहाँ पर आप जो है बेबिस्टीन का यूज़ 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से करके उसको रोकथाम कर सकते हैं। और कहीं कहीं अगर लीफ स्पॉट आ जाए तो कार्बेंडाजिम एक आप जो है कोशिश करेंगे कार्बेंडाजिम को 1 से लेकर के 2.5 ग्राम के बीच में घोल बना करके प्रति लीटर छिड़काव करके रोक लेंगे
2: जी। और डॉक्टर साहब, हम अपने फसलों में खाद भी दें तो कौन सी खाद दें इसमें और कब दें?
3: खाद की जो बात है तो इसमें खाद में सावधानी ये देना चाहिए कि हम सबको 25-50-25 जो है इसमें उर्वरक की मात्रा देना उचित रहता है। 25-50-25 जो उर्वरक है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, तो इसकी जो है समय पर बुआई के समय ही दे देना चाहिए। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास ये जो है हमें जिस समय बुआई करते हैं उसी समय देना है, और जो शेष नाइट्रोजन अगर रहता है तो बुआई के लगभग 35 दिन के बाद निकाई उकाई खत्म हो जाता है, तो उसमें शेष मात्रा छिड़काव करके उसको पूरी तरह से प्रयोग करके आप इसको अच्छे ढंग से लाभ ले सकते हैं
2: जी। तो डॉक्टर साहब, गर्मा मूंग की फसल में आपने बताया कि खरपतवार किस प्रकार करें, सिंचाई प्रबंधन और बीमारी मुक्त हो हमारी फसल, और क्या करना चाहेंगे सर कि फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, बढ़िया दाना उसमें बने और भरपूर हमें आमदनी प्राप्त हो?
3: उस समय विशेषकर सावधानी तो रोग और कीड़ों को देखना चाहिए और उसमें पोषक तत्व जो है आप कोशिश करेंगे, शुरू में अगर आपको लगेगा कि एसिडिक सॉइल है तो वहाँ 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना शुरुआत में दे देना चाहिए बुआई के 30 दिन पहले, और उर्वरक जो है 25-50-25-25 नाइट्रोजन 50 फास्फोरस 25 पोटास और 20 कभी कभी सल्फर भी दे लेते हैं। इस तरह से हम ये उर्वरक को दें, और अगर आपका जमीन ठीक नहीं है तो वहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारे पास गोबर खाद है तो 5 टन जो है आप गोबर की खाद को भी ले आना चाहिए, जिससे हमारे पौध का वृद्धि विकास अच्छा हो। अगर नहीं दे पाए हैं तो ये ध्यान में रखें कि हम 1919-19 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें, और हमारे पास जो आजकल दूसरा जो उर्वरक आ गया है 0050 का पोटास देना चाहिए, जिस समय फली लग रहा है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोल बना करके छिड़काव करें
2: जी। तो किसान साथियों, इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो गर्मा मूंग की फसल की पैदावार बड़ी अच्छी होगी, बस आपको सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, वैज्ञानिक दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची, आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत आभार। और किसान साथियों, फसल को देखते रहिए और नियमित खेतों का भ्रमण करते रहिए, तभी आपको मालूम पड़ पाएगा कि क्या क्या हमारे पौधे में कमी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो एखन हमरे जानकारी करत रही गर्मा मूंग कर फसिल कर देख ले देख रेख कर बारे में बतात रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, और इनकर से बतियाए रहे हैं संजीव कुमार लाल।
0: और देखो खेती बाड़ी कर संगे संगे गीत नहीं हुए तो बढ़िया नहीं हुई है नहीं। वो गीत सुना थी कृषि विकास गीत देवदास विश्वकर्मा संगी मनकर गावल।

0: सूचना रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची द्वारा 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए कृषि एवं कृषि संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु कृषि विज्ञान तकनीक द्वारा समेकित खेती, मधुमक्खी पालक, खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमिता विकास, लाह उत्पादक, मशरूम उत्पादक, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक उत्पादक, मत्स्य पालन, माली, मुर्गियों का स्वास्थ्य प्रबंधन, गोपालक, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, सुपरवाइजर प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध है। प्रत्येक माह की 1 तारीख से नामांकन प्रारंभ होता है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। आवश्यक दस्तावेज आधार, जन्म एवं जाति प्रमाण पत्र तथा फोटो। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची। अपने कौशल को निखारें, आत्मनिर्भर बने। तो भाई अब आगे आओ,
1: अब नई उम्र की नई फसल जानब हमरे आज मधुमक्खी पालन कर बारे में बतावे किसान भाई हैं संतर सिंह, और इनकर से तो भाई रोरे बात कर ही, तो चलो सुनेला है नहीं।
0: किसान भाई बहन मने खेती बाड़ी कर काम तो रोरन करवे करी ला, संगे संगे गाय भैंस मुर्गी बतख मछरी ये सब कर भी पालन रोरन करी ला और अपन आमदनी के बढ़ावी ला। लेकिन इकरे संगे एगो आमदनी बढ़ावे कर बहुत बढ़िया जरिया है मधुपालन। मधु खाएक में जितना बढ़िया लागेला उतने उकर में बहुत गुण भी पावल जाएला, जे सेहत कर खातिर बहुते लाभकारी होएला। मधुपालन करके रावण खेती बाड़ी कर संगे संगे ऊपरी आमदनी कर सकेला। एहे मधुमक्खी पालन कर बारे में बतावे खातिर आज हमारे स्टूडियो में एगो प्रगतिशील किसान है संतर सिंह। संतर भाई रौर के जोहार कर थी।
2: जोहार भाई।
0: रौरे रहेक वाला कहाँ कर है?
2: भाई मैं रहेक वाला ग्राम लोखमहन कर है को, बिलिंगमीरा पंचायत थाना पालकोट गुमला झारखंड कर, और काफी दिन से मैं मधुमक्खी पालन करो ना।
0: मधुमक्खी पालन रौरे कितना दिन से कर थी?
2: लगभग 15 साल से करते आओ थो।
0: 15 साल से रौरे मधुमक्खी के पालन कर थी है नी?
2: हाँ।
0: तो ये बताओ कि रौरे कहीं से प्रशिक्षण ले रही कि कैसे कैसे सीख ली?
2: शुरुआत मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहो, अपन निजी अनुभवी ज्ञान से पालन करत रहो। लेकिन जे कृषि विज्ञान केंद्र है गुमला, उस संस्था के माध्यम से जानकारी होलक, और 2018-19 में प्रशिक्षण लेकर हमरे मन के मौका मिललक, तो उस प्रशिक्षण में हमें भाग ले करके फिर मधुमक्खी पालन के डेवलपमेंट करे, लेकिन और जानकारी अधिक होलक हमरे के।
0: मधुमक्खी पालन के जैसे शुरुआत रौरे कैसे कर ली?
2: मधुमक्खी पालन कर शुरुआत चलते फिरते हमरे मन के मधुमक्खी मिल जात रहे जंगल में। हमरे मन विचार कर ली कि इस मधु के हमरे अपन पालतू बनाती तो कैसे होतक। इस विचार के हमरे मन मंथन कर ली और मधु कर झुंड के लाने कर प्रयास कर ली। और लगभग पहले हमरे मन के मौन पेटी कर ज्ञान नहीं रहे, तो गगरी में पाले शुरू कर ली। लेकिन उकर में हमरे मन के कमी ये होलक कि छत्ता बिगड़ा पड़त रहे, और 1 वर्ष में लगभग 2 बार निष्कासित करे होते रहे। उकर बाद में फिर हमरे और डेवलपमेंट कर मुद्दा में आली, तो बक्सा कर निर्माण कर ली मौन पेटी कर, उकर में फ्रेम सजाल गेलक, और छत्ता के फ्रेम में सजाई करके और मौन पेटी में उके डाल के फिर मधुमक्खी के पालन करे शुरू कर ली, तो उकर में छत्ता बर्बाद नहीं होला।
0: जंगल झाड़ लता मन में जो मधु रहेला,
2: हाँ हाँ,
0: ये सब के रौरे लाइन के और बक्सा में रख ली है नी?
2: हाँ हाँ।
0: तो एखन रौठिन कितना बक्सा है?
2: एखन घटते बढ़ते रहेला, कभी 20-22 कर संख्या में हो जाएला मोन पेटी, और कभी बरसात कर मौसम में कभी जे के मक्खी मर जाए ना या तो भाग जाए ना, तो इस वजह से अभी वर्तमान में करीब 20 से 25 पेटी हमर मनक समूह में आए।
0: मधुमक्खी कर जैसे बक्सा कर बात कर ली, कैसे कैसे बक्सा लान ली और कैसे कैसे उकर प्रबंधन कर ली से कर बात।
2: पहले मौन पेटी कर ज्यादा ज्ञान नहीं रहे, लेकिन प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र गुमला ट्रेनिंग दिलक, तो उस ट्रेनिंग कर दौरान में हमरे मन के 15 से 20 भाई मन ट्रेनिंग कर ली। उकर में से फर्स्ट पीरियड में हमरे मन के 4-4 मौन पेटी दिलाए, तो उसी आधार पर हमरे मन मौन पेटी कर निर्माण कर ली। और पावल कर बाद में फिर उसे क्वालिटी कर बनवाई के और उकरे में पालन करे चालू कर ली। मौन पेटी के बनाए के वास्ते पटरा फाइड के लकड़ी के चिरवाई के पटरा बनाई के फिर उकर जे साइज बाई साइज मौन पेटी कर तैयार करल गेलक। उकर बाद उके पालक चालू कर ली।
0: बक्सा में जैसे रे मधुमक्खी पालत थी, तो ये बताओ कि मधुमक्खी कर कै गो किस्म हुए।
2: मधुमक्खी कर जो प्रजाति है मुख्य रूप से 4 प्रकार कर मधुमक्खी पावल जा है, लेकिन हमर मनकर इस भारतीय जो मधुमक्खी है जे 3 प्रकार कर मधुमक्खी है उके पालतू नहीं बनाए बनेला, जेके भौरा कहिला उके पालतू नहीं बनाई सकीला। उकर बाद में और एक दो मधुमक्खी है उके भी पालतू नहीं बनाई जा सकेल, लेकिन खैरा मधुमक्खी है जे गुफा कर अंदर में माड़ा कर अंदर में या तो ढोढ़ी में रहेला, वो मधुमक्खी के पालतू बनाए के लिए आसानी से बनेल।
0: मधुमक्खी कर परिवार कर रचना कर बारे में कुछ बता सकील।
2: मधुमक्खी कर रचना है जे रानी मधुमक्खी है ला बड़ा संख्या, जे एक परिवार में एक ही मधुमक्खी कर रानी रहेला और उकर साथ में सैनिक मधुमक्खी रहेला जे अपन समूह के देख रेख के लिए दरवाजा पास रहेना, कोई क्षति करे के योग्य कोई जंतु है उकर अटैक करेल। और तीसरा है श्रमिक मधुमक्खी जे फूल से पराग रस लाने में वो काम करेला।
0: अब ये बताओ कि खास समय में इकर पालन करे खवेला कि 12 मास।
2: वैसे 12 मास मधुमक्खी के पालन कर सकेला, लेकिन मुख्यतः इकर समय जो है ये समय है फरवरी मार्च अप्रैल। इस समय में बंटवारा कर सीजन रहेला और बंटवारा कर सीजन में अपने रानी मधुमक्खी फिर रानी कर निर्माण करेल और वो अपने परिवार के खुद के विभाजन करे के लिए सक्षम होला। और ऐसे तो हर समय मधुमक्खी पालन कर सकेला, पर बंटवारा कर सीजन केवल 2 महीना ही होला, मई और जून कर।
0: बंटवारा मतलब कि वो मने अपन दल बनाए के
2: दल निकल जाए ना। हाँ निकल जाए ना।
0: तो जैसे एक बक्सा में 2 रानी नहीं रह चाहिए है
2: ना? नहीं,
0: अगर 2 गो हो गेलक
2: तो अलग हो जाबे
0: दल बनाए के
2: दल बनाए के निकल जाबे।
0: बरसात कर समय में मधु कर पालन कैसे करे के चाहिए?
2: बरसात कर समय में मधु कर पालन विशेष खास करके 3 महीना बहुत गहन उकर लगिन साधन जुटाए पड़ेला। बरसात कर सीजन है, पानी जब पड़ेला तो मधुमक्खी कभी नहीं निकलेन। निकलने कर कारण यह है कि उकर लेकिन खाई कर जोगाड़ करे पड़ेला। तो उकर खाई कर जोगाड़ यह है कि चीनी कर इस्तेमाल करल जाला, चीनी कर चाशनी बनाई के ठंडा करके और कुछ गुनगुना अवस्था में मौन पेटी में ही छत्ता के ऊपर डाल देवे खोल, तो उकरे से उमन कर भोरन पोषण हैला, उकर से उमन के आहार प्राप्त होला।
0: मधुमक्खी जो है जो मधु लाने ना, हाँ। इमन तो कोई खास फूल ही सबसे लाने ना, रस खातिर कौन कौन सा फूल बढ़िया होला?
2: एकर में हर महीना अलग अलग फूल कर इस्तेमाल होला, फूल फूलेला, लेकिन विशेष करके जो समय है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, इस मई कर महीना में लगभग लगभग जो है करंज कर फूल एक साथ फूलेला। उकर साथ साथ में लाह रस भी आई जाएल, उकर साथ साथ में कुसुम कर फूल भी आई जाएला, तो ये आसान से अधिक मात्रा में मधुमक्खी शहद के लाइन के इकट्ठा करें।
0: मधुमक्खी में कुछ रोगमन भी लागेल का?
2: हाँ रोगमन लागेल।
0: का रोग लागेल और इकर उपचार कैसे करे चाहिए सके किसान भाई बहन उनके बताए।
2: इकर में कुछ ऐसा समय आवेल जे बरसाती समय पार होला, उकर बाद में ठंडक समय आवेल, उस समय में जलिया वाला कीड़ा हो जाएला, छत्ता के बर्बाद करेल। तो उस समय कर अवस्था में हमरे मन जो उपयोग करील छत्ता के निष्कासित करके या तो फ्रेम बदले पड़ेल और नहीं तो एक कीटाणु मार दवाई आवेला जो सहज रूप में मिलेल कीटाणु मार दवाई के देल जाएला है ब्लीचिंग पाउडर कर भी इस्तेमाल कर सकीला उके ब्लीचिंग पाउडर के चीनी कर चाशनी कर रूप में निर्माण करके और ब्लीचिंग पाउडर के कुछ घोल के और उकर साथ में मिलाई के और मधुमक्खी के देल कर बाद में फिर जे कीड़ा कर संख्या है धीरे धीरे कम हो जाएला।
0: तो यह मधुमक्खी पालक किसान संतर सिंह से करल बातचीत कर संगे किसान वाणी कार्यक्रम के बेरा सिरालक ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

0: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सो, भाई बहन मन के एक बार फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: संध्या बहन बटले
0: जोहार। और कहो हाल चाल मने।
1: एकदम नगद है भाई।
0: और छुआ पोता मने
1: एकदम बढ़िया। देखब तो मौसम तो एखन ऊपरे नीचे होवे के लागे, लेकिन भी एखन सब बढ़िया।
0: सब बढ़िया है, जीव जान सब बढ़िया रह चाहिए, है नहीं?
1: हाँ।
0: काल के मौसम कर उतार चढ़ाव में यह बड़ा तनिक जीव जान के जतन करे है।
1: हमरे के अपन संगे संगे घर परिवार सब सब कर हाल चाल के बेस रखे है।
0: चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो।
1: हाँ हाँ।
0: सबके मने एक समान देखे है,
1: दुलार
0: सब
1: प्यार।
0: सबकर जैसे सेहत का ख्याल रखे गए, सबके दुलार प्यार करे गए। लेकिन भाई देखी ल कि बेटिए मन के मने बेटे मन के बेसी दुलार प्यार करे ना आदमी।
1: हाँ करे एखन उसन नखे भाई, सब जागरूक होत है। अब बेटी मन के भी सब बराबर कर दुलार प्यार भेटात है। और देखब नी जोन घर में बेटी छुआ मन हो है ना, वो घर बड़ी खुशहाल बुझायल।
0: तो जागरूक तो बहुत हो गए है, लेकिन बहुत जगह देखब नहीं कि जैसे माने कहे न कि बेटे हुए सोचे न।
1: हाँ।
0: माने बेटिए मन सोचे न कि बेटा हुए है कि नहीं? ये बहुत ताजुब कर बात है कि जैसे मान लो कि साइस भी हैं, तो साइस भी तो कह माने केकरो बेटिए नहीं हकें, लेकिन अपन माने पुतव अगर माने के चाहबें कि वो बेटा हुए। तो ये भी जो है से बड़ा ताजू कर बात।
1: हाँ ये मन सोच ही रहेला कि बुढ़ापा में देखभाल बेटा करी है ना।
0: हाँ, लेकिन एखन देखो माने बेटी जी हैं यह मने बेसी देखभाल करे ना। हाँ। और ऊ मन में तनिक ना ऊ मन कर जीव में माय बाप कर प्रति प्रेम प्यार भी रहेला, शादी होकर बादे भी
1: बेसी मोह माया रहेला है ना।

0: तो एखन बेटा और बेटी में कोनो फर्क नखे करे, और कहल जाए तो बेटी बेटी ही घर कर शान है।
1: हाँ शान है दुई को घर कर संगे संगे देखा कि समाज के हो आगे बढ़ाए ना है नहीं।
0: और देखो कि अखन पढ़ाई लिखाई में भी बेटी मन आगे हैं, नौकरी चाकरी में भी देखो बेटी
1: बेटा मन
0: मन,
1: से तो बेटी मन आगे हैं।
0: हाँ हर जगह जो है। तो पहले ही सब बात रहे कि माने बेटी कोनो नहीं करवाए, बेटी दोसर घर कर रखें, लेकिन एखन जो है बेटी मन दोसर घर जाए के भी अपन माए बाप कर ख्याल रखत हैं।
1: हाँ तो हमरे मन के अगर बेटा के प्रोत्साहित करत ही तो संगे संगे बेटी के भी
0: बेटी
1: करत
0: के भी
1: है।
0: करना है नहीं? तो चलो अब इतरे कोठिया थी और कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी नागपुरी लोकगीत से, इके गावत हैं सरिता देवी और संगीमन।
1: हाँ।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अब जानकारी करीला गर्मी का मौसम तो है भाई, अगर देखब कने कने पानी मन कम हो जाएल है नी, तो हमरे मन जाना थी जल संरक्षण कर बारे में बतात है सीमा केसरी।
3: रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। 16वीं शताब्दी में रहीम कवि ने 21वीं सदी की विभीषिका को भांप लिया था, तभी तो उन्होंने यह कविता चेतावनी स्वरूप मनुष्य को आगाह करने के लिए लिख दिया था। पानी के शाब्दिक अर्थ को ही लें तो उन्होंने कह दिया था कि पानी के बिना मनुष्य का जीना संभव नहीं है। हमारी धरती को हम नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि यह पानी की मौजूदगी के कारण अंतरिक्ष से भी नीला दिखता है। पानी है तो जीवन है, या जल ही जीवन है, यह बात सिर्फ एक नारा ही नहीं है बल्कि यह पानी के महत्व को भी दर्शाता है। जल ही जीवन का आधार है, जल के बिना जीवन की कल्पना बेमानी है। पानी एक प्रकृति प्रदत्त उपहार है, पानी ही जीवन की उत्पत्ति का आधार है, पहला जीव पानी में ही उत्पन्न हुआ। इस प्रकार प्रकृति ने शुरुआत से ही पानी की सुगम उपलब्धता और पर्याप्तता को बनाए रखा है। हमारे प्राचीन इतिहास को देखें तो मनुष्य की सभ्यता का विकास भी पानी के इर्द गिर्द से ही हुआ है। नील नदी की सभ्यता, इंडस या सिंधु घाटी की सभ्यता या आर्यों का हमारी धरती में आकर बस जाना नदी या जल के स्रोतों के आसपास ही रहा है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना अस्तित्व पानी के बिना नहीं बनाकर रख सकता है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज भारत ही नहीं अपितु विश्व के अधिकतर देश जल संकट की समस्या का सामना कर रहे हैं। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 70% भाग जल से ही भरा हुआ है, लेकिन इसका लगभग 2% भाग ही मानव के उपयोग के लायक है। शेष जल लवणीय या नमकीन होने के कारण न तो मानव द्वारा निजी उपयोग में लाया जा सकता है और न ही इसे कृषि कार्य कर सकते हैं। उपयोग हेतु 2% जल में से 1% जल ठंडे क्षेत्रों में हिम अवस्था में है। इसमें भी 0.5% जल नमी के रूप में अथवा भूमिगत जलाशयों के रूप में है, जिसका उपयोग विशेष तकनीक के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार कुल प्रायोज्य जल का मात्र 1% जल ही मानव के उपयोग हेतु बचता है। इसी 1% जल से विश्व के 70% कृषि क्षेत्र की सिंचाई होती है तथा विश्व के 80% आबादी को अपने दैनिक क्रियाकलापों तथा पीने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इससे ही बड़े उद्योग तथा कल कारखाने भी अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं। पिछले कुछ सालों में हम पानी के मामले में सबसे ज़्यादा घाटे में रहे हैं। समाज स्वीकृत प्राकृतिक नीति नियमों की अनदेखी करनी शुरू की है, तभी से पानी की समस्या बढ़ती चली गई। हमने अब भी प्रकृति के आधार पर समाधान करने का प्रयास नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कभी भी पानी से लबालब जल स्रोतों को देख भी नहीं सकेंगी। भूजल भंडार तेजी से खत्म होता जा रहा है। जल ही जीवन का आधार है, जल के बिना जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता जा रहा है। जिस देश में कभी पग पग नीर की उक्ति कही जाती रही हो, वहाँ अब पानी की कंगाली हमें शर्मिंदा करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी पानी के महत्व को समझकर इसे वरुण देवता कहकर पूजा था। हर पवित्र उत्सव त्योहारों पर हम जल द्वारा स्नान आचमन पवित्रीकरण करके ही पूजा आरम्भ करते हैं। सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। पुरखों को जल अर्पण तर्पण करके उनकी आत्माओं को शीतलता पहुंचाने का पुनीत कार्य भी जल द्वारा ही होता है। इस प्रकार पानी को पवित्र तथा शुद्धिकरण का कारक माना गया था। जो प्रथा आज भी प्रचलित है। पानी को सहेजने के लिए प्राचीन रीति रिवाज में जलाशय खुदवाना, कुएं खुदवाना, सार्वजनिक स्थानों पर तालाब बनवाना न सिर्फ मनुष्य के लिए उपयोगी था, वरन मनुष्य के इर्द गिर्द सारे जीव जगत के लिए, उनके पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कृषि के लिए उपयोगी था। पुराने राजाओं ने भी अपने प्रमुख कार्यों में जलाशय निर्माण को रखा था। इधर कुछ सालों में हमने पानी के अकुत भंडारों को गवा दिया और अब प्यास भर पानी के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। प्रकृति ने हमें पानी का अनमोल खजाना सौंपा था, लेकिन हम ही सदुपयोग नहीं कर पाए। हमने उत्पादन और मुनाफे की होड़ में धरती की छाती में गहरे से गहरे छेद कर हजारों सालों के संग्रहित सारा पानी उलीझ लिया। पानी की कमी आखिर क्यों आई? इसका कारण तो यह है कि हमने पानी को एक उपयोग की वस्तु समझ लिया, जबकि हमारी सोच इसके संरक्षण तथा सदुपयोग में होना चाहिए था। हमारी आधुनिक सोच उपभोक्तावाद की है। उत्पादन और उपभोग के सिद्धांत पर हम मानते रहे कि प्रकृति को जल उपलब्ध कराती ही रहेगी और हम इसे उच्छृंखलता के साथ व्यय अपव्यय करते रहे हैं। हम आज ज्यादा ज्ञानी होने का भाव रखते हैं, पर हम अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। व्यक्ति की बुनियादी जरूरत और जिंदगी के लिए पानी की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा दोहन होने पर जो दुष्परिणाम होंगे, उसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय हितों की लंबे समय से लगातार अनदेखी की जाती रही है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पानी के पारंपरिक स्रोत रहे हैं और हिमालय से आने वाली गंगा सहित अन्य नदियां इस पर निर्भर हैं। सिर्फ नदियां ही नहीं, इन पर आश्रित करीब 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा बारिश पर होगा। बारिश की अनिश्चितता और भी बढ़ सकती है। यह सीधे हमारी खेती से जुड़ी हुई है, इसलिए आने वाला वक्त किसान और किसानी दोनों के लिए चुनौती भरा होगा। पानी को सहेजने की आवश्यकता है। इसे सहेजने के कुछ छोटे और खरे उपाय, जैसे स्थानीय पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित करने, बरसाती पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने, नदी नालों के छोटे बांध और तालाब बनाने आदि में समाज और सरकार के आगे आने की जरूरत है। समाज को जल साक्षर बनाने की जरूरत है। नई पीढ़ी के लोगों का पानी के मामले में ज्ञान बहुत थोड़ा और सतही है। उन्हें नए समय की तकनीकों और किताबी ज्ञान का बोध तो है, पर जीवन के लिए सबसे जरूरी पानी के इस्तेमाल और इसके बारे में जरूरी जानकारी नहीं है। हमारी नई पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी कमी के क्या दुष्परिणाम होंगे, इनके मनमाने दोहन का क्या असर पड़ेगा इत्यादि। हमें जल, जंगल और जमीन के आपसी संबंधों को समझने की नए सिरे से कोशिश करनी होगी। भारत में जल संकट का कारण मानसून की कमी का असर है। जल संकट कोई एक दिन में उत्पन्न समस्या नहीं है, यह एक धीरे धीरे आई समस्या है जो आज विकराल रूप धारण कर चुकी है। जल संकट के समाधान के लिए राष्ट्रीय जल नीति 1985 में बनाई गई। इस नीति के अंतर्गत जल स्रोतों के न्यायोचित दोहन एवं समाज वितरण के साथ जल संरक्षण की विभिन्न योजनाएं चलाई गईं। इसके अलावा भी कई योजनाएं, जैसे गंगा कार्य योजना 1985 में, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्य योजना इत्यादि चलाई गई। 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जल नीति 2002 को बनाई गई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय राज्य सरकारों को सहायता देकर नदी एवं झीलों आदि जल स्रोतों की रक्षा करने में लगा हुआ है। जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 2007 में जल संवर्धन पुरस्कार भी शुरू किए। पद्मश्री सिमोन उराव ने 1961 से जल संरक्षण के प्रयास किए और लगातार उनकी कोशिश झारखंड में जल संकट को दूर करने की रही और वे सफल भी हुए। वर्षा जल का संचयन एवं कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के जरिए भूमि जल संवर्धन के लिए लोगों को प्रेरित करना है। मिशन क्लीन गंगा गंगा नदी को बचाने के लिए वर्ष 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था।
0: तो भाई एखन हमरे जल संरक्षण कर बारे जानकारी कर ली सीमा के श्री से। अब आओ एगो कुरमाली लोकगीत सुना थी अजित कुमार महतो और संगीमन कर गावल।
2: हाँ।

0: तो भाई खान हमरे मन सुन लिया अजीत कुमार महतोर संगी मन कर गा वाले कुरमाली लोकगीत और यह गीत कर संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिर रहा
1: बता देवीला कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर।
0: तो सुनुया भाई बहन मने अब्रारुन का संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: संध्या बहन के विदा देव
0: जोहार।

आप सुन रहे थे हमारी दुनिया, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर शाम के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल।

0: झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए सीसीएल को मिला ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से, शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें संबंधित बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध रहेंगे। राज्य में प्रत्येक पात्र मतदाता का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने बताया कि झारखंड में वर्तमान में कुल 2,64,89,777 मतदाता हैं तथा एसआईआर कार्य में 29,571 बीएलओ और 21,644 बीएलए लगाए गए हैं।
1: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी सहित झारखंड में थर्ड फेज के एसआईआर का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसी क्रम में अगले 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप अनमैप्ड सूची का अवलोकन जरूर कर लें। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगी और जाकर सत्यापन का काम करेंगी।
0: रांची में उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच आधिकारिक किट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और मकानों के सूचीकरण प्रक्रिया 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक मकान और परिवार का डिजिटल माध्यम से विवरण संकलित किया जाएगा। उधर जामताड़ा में भी जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि चैंबर के सदस्यों के सहयोग से शिविर में आकर लोगों ने सहज ढंग से स्वगणना कार्य संपन्न किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपर पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को अनिवार्य किया है। मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अब ऐसे मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बजाय न्यायिक जांच के माध्यम से होगी। अदालत ने झालसा को एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश देते हुए वर्ष 2018 से 2025 के बीच हुई हिरासत में मौत के मामलों की रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में न्यायिक जांच नहीं हुई है उनमें संबंधित जिला जज कारण बताते हुए उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जनता के बीच एक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नियमितीकरण ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
2: हेमंत सोरेन की सरकार ने शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया। जनता से अपील करना चाहूंगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, वो इस योजना का लाभ लें। जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मान सम्मान की रक्षा करेगी।
0: जमशेदपुर के सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएसआईआर एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य निर्माण में अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने समावेशी विकास के लिए उत्तरदायी नवाचार विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि तकनीक का विकास स्थानीय जरूरतों और मानव कल्याण को ध्यान में रखकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक तकनीकी प्रगति वही है जो मानव जीवन को बेहतर

0: बनाए और पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL को हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए ग्रीन टेक CSR इंडिया प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में CCL की CSR टीम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया जो ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में कंपनी के योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। इस मौके पर उन्होंने जमानत मिलने पर न्यायालय का शुक्रिया अदा किया।
2: हमने कहा कि सबका जय होती है और सरकार जय होकर जाएगा। आज हम बिल पर आए, न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारा ये देखकर बिल उन्होंने दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है मैं इस बात का ही कह सकते हैं जो आज क्या हम बनाए, लेकिन हमें जो विश्वास है वो सत का जीत होती है और होगी।
0: वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम को मिली अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे बाइज्जत बरी नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ राहत मिली है जबकि मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। झारखंड विधानसभा के पूर्व मंत्री और गोमिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय माधव लाल सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बोकारो जिले के गोमिया स्थित साड़म पश्चिमी बोकारो नदी में आयोजित इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पुलिस बल ने अंतिम सलामी दी। मौके पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद, उपायुक्त अजय नाथ झा समेत जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कई राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए CCL को मिला ग्रीन टेक CSR इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से, शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिले में जागरूकता रथ भी रवाना किया गया है, जिसे डीसी संदीप कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है और इसके माध्यम से सरकार को जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती है। डीसी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
2: जो भी देश के नागरिक हैं वो sc.census.gov.in पर जाकर के अपना सेल्फ एनुमरेशन का फॉर्म उसको फिल कर सकती है, और उसके बाद जो कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे जितने भी एनुमरेटर्स हैं वो घर घर जाकर के गणना करेंगे, हाउस लिस्टिंग करेंगे और हाउस की सेंसस करेंगे। इसमें हम लोगों का जो आज का हरी झंडी दिखाने का जो उद्देश्य है कि जो हम लोगों ने रथ को रवाना किया है ये ब्लॉक में जाएगा, गाँव गाँव जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा कि जो भी प्रगणक आ रहे हैं उन लोगों का सहयोग करें।
1: लोहरदगा जिला में बिजली पानी की किल्लत को लेकर भाजपा द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घड़ा फोड़कर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीषण गर्मी में लोग बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और राज्य सरकार खामोश बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि लोहरदगा में केंद्र सरकार की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और आज आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि
3: जितना भी आप क्षेत्र देखिए हर जगह में पानी का त्राहिमाम किए हुए जनता, पानी यहाँ डोभा का जो होता है वहाँ से लोग पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिजली की स्थिति इतनी बदतर है, आया मुंह दिखाया बस भगदोगनी की तरह से यहाँ दिया जलाता है, टिमटिमाता है, फिर लाइट चला जाता है। लगातार विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराया हुआ है। बहुत जगह में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। आज बहुत सा ऐसा गाँव है जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँचा पाया है, जिनको जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है। जनता त्रस्त है। अभी स्थिति यह है, बीच में दबाव बना करके स्मार्ट मीटर लगाया गया है। स्मार्ट मीटर में लोगों को अनाप शनाप बिल आ रहा है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जितना जल्दी हो सके जो भी स्मार्ट मीटर लगा है उनको आप हटाइए।
1: लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। सिविल कोर्ट परिसर में पीडीजे की अध्यक्षता में जागरूकता एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि आम जनों को उनके अधिकारों और कर्तव्य को बताने के उद्देश्य से गहन कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। मनोरंजन कुमार ने कहा कि
4: एलईडी वैन में सारा डिस्प्ले किया जाएगा, झालसा नौसा संबंधी स्कीम्स हर गांव-गांव में ये जाएगी, और जो लीगल राइट्स है, ड्यूटीज है, हर व्यक्ति का जहाँ भी कोई समस्या आ रही है कैसे उसको समाधान करना, सारा चीज उसमें डिस्प्ले दिया हुआ है। एलईडी जो हमारी टीम है उसमें हमारे टीएलवीज भी रहेंगे।
1: लोहरदगा जिला में बेमौसम बरसात और आंधी तूफान से भारी नुकसान हो रहा है। बेमौसम बरसात ने जहाँ किसानों के खेतों में लगी सब्जियों को बर्बाद किया है, वहीं तेज आंधी से कई पेड़ उखड़कर गिर गए और कई कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है। बिजली के कई खंभे गिर गए हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म नास्तिक। आवाज़ किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नसीब से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शब्द है आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से रजनीगंधा कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म कृष थ्री का ये गीत। आवाज़ें हैं अलीशा चिनॉय और जुबिन गर्ग की। समीर के बोलों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शान का ये गीत, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत है आर डी बर्मन का।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म परिचय का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, शब्द हैं गुलजार के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: फिल्म परिचय के इस गीत के साथ ही आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
4: एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू strengthening cooperation within the BRICS framework. Excellency.

0: Please. India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
1: गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के, उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया. और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे चार महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर?
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही, मुझे लगता है, ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है. क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा. अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है. पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर, जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को, और खासतौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है, जो आवागमन हो रही है. और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में, उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे हमले, उसके जवाब में, तो उसमें यह भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी मेंबर के लिए, उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था. तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल पुथल चल रही है. और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से, और उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं, खासतौर से चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है, या यूएई है, या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात होता है. और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं, जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है. तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है. तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है, उसके अंदर मुझे लगता है कि ब्रिक्स देश जो है उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है, तो उसके बारे में काफी जो है वो कोई पहल ले सकते हैं, और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है. हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की, जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलरिटी की, कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है, उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है. उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिक्स की, उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में, वहां पे उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी, चीन भी एक ब्रिक्स का देश है, उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां के एम्बेसडर कर रहे हैं. क्योंकि ब्रिक्स के देश जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है
1: जी,
2: और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर, उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. और जिस तरीके से मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं, और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं, उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है, उससे काफी जो है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं. बहुत से देश और हैं जो अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है, और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है और कल भी इसके बारे में जो है ब्रिक्स A20 के बारे में एक सम्मेलन होगा, उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है और पूरा जो मल्टीलैटरल सिस्टम है जो अभी क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है और बहुत सी संस्थाएं हैं, WTO है, WHO है, तो उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
1: गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा, तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं?
2: जी, भारत ने तो पहले से कहा है और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है
1: जी।
2: वो ग्लोबल साउथ के देश है, वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है, ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनीतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है, जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर एक मत होकर कुछ बात करते हैं तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए और बाकी जो देश हैं इजिप्ट, रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है, तो उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है। और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भूराजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, इनफैक्ट जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं, तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं देशों के अंदर, जैसा हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो, ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को, तो इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे, और क्योंकि इसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है, और उससे यह है कि उनसे क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे, तो बाकी सारी जो और संस्थाएं भी हैं चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन हो चाहे WTO वगैरह हो, तो सब जगह पे ब्रिक्स के देश क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहां पे अगर इन सब बातों के बारे में खासतौर से जो इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस के सुधार के बारे में कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा, और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
1: गुलशन जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है।
2: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर बाद हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरूषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उन से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।

0: और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया। एसआईआर नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति पीचिंग में वार्ता और गांधीनगर में एशियाई नमस्कार।
2: Good evening. This is Akash.

0: बाद में किया जाएगा। वोटर फहरिस्त की नजर कानून साज पार्टी ने आज थिरुवनंतपुरम में मुनाकिदा मीटिंग में वी डी सतीशन को अपने लीडर के तौर पर बाकायदा मुंतखब किया। बताया जाता है कि पार्टी के एक और सीनियर ये मीटिंग में मौजूद नहीं थे। मजीद तफसील थिरुवनंतपुरम के हमारे नामानिगार से।
1: गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें रियासत में नई सरकार तश्कील देने का अपना

0: होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब।
1: बात की और एसपी विलुमनी के जेर क्यादत पेश की। साबिक वजीर आला ने गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले को स्पीकर जे मनी के जेर क्यादत धड़े में AIADMK के 25 अराकीन कानून साज असेंबली ने टीवी के सरकार को वोट दिया, जो कि टीवी के सरकार के खिलाफ वोट न देने के ओसी मैनियन के जरिए जारी की। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से ज्यादा अफराद जहां भाग हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर से
2: तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज और तुंध हवा ने बड़े पैमाने पटरियों पर दरख्तों के गिरने और ओएचई वायर को नुकसान पहुंचने के बायस मुख्तलिफ स्टेशनों खंभों को उखाड़ फेंका और बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी में खलल डाला। बहुत बड़ी तादाद में मकानात तबाह हो गए और बड़े बड़े फतेहपुर और वाराणसी शामिल हैं। प्रयागराज में 21 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि भदोही में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9 अफराद, बदायूं में 5 ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी,
1: ये आकाशवाणी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाज आराई के बजाय तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर तआवुन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इत्तफाक किया कि आबनाए हुरमुज को हर के मुताबिक

0: कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, एक दूसरे इख्तलाफात से ज्यादा हमी ताल्लुकात में एक नए बाब की जरूरत को उजागर किया। अमेरिका के सदर तीन अमेरिका के कुछ बड़े कारोबारी लीडरान भी हैं, जिनमें निविदा के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक शामिल हैं। उन्होंने आज चीन को मुतनब्बे किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप और सदर जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी ताइवान यूजी 2026 से मुतालिक पेपर लीक के मामले में मुबैना गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में मुल्क भर में 14 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई चान अहल गिरफ्तार किए गए तमाम पांच मुलजमीन को दिल्ली में आज एक के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पूछताछ की गरज से 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया। दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान मुहिम का आगाज करेगी। ये मुहिम वजीर आजम की अपील के मुताबिक शुरू की जा रही है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मीडिया से खिताब करते हुए खिदमत के अलावा दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तर हफ्ते में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
1: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से

0: वाहन ट्रैफिक कम हो। हमने दिल्ली शाम को 7 बजे तक का किया है और इस
1: गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमुई खेल में अपनी काबिले जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निजाम है। इंतजाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी का 3रा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर वीडी सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुर्मुज खत्म हुआ।
2: कंट्री वाइड नमस्कार, कार्यक्रम कंट्री वाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ हैं डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
3: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाला है केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक एआई बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो आईएमडी का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको आईएफएस कहते हैं, आईआईटीएम का ईएफ कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज 2 क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राई स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और ये आईबीसी मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3096 जो ब्लॉक्स है इंडिया में। ये करता है कि

0: 15 स्टेट और एक यूटी में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं। इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब जितने भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया है हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किए हैं इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहां पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, उसके साथ साथ हमने रडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMR WF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज

0: इसके लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है, अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। ये एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए। और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहां पे AWS डेटा, ERZ डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शेष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं। उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं, मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए, और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव का जो लोग है, जो किसान, उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन की, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशुसखी है, कृषिसखी, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहां पर कृषिसखी पशुसखी फिर उसका गांव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहां पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजरी के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे।
0: जैसे मैंने बोला कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहां पे थंडर स्टॉर्म है लाइटनिंग है वहां पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन उसको देखने चाहिए, वो रीजनल लैंग्वेज में है और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपने रडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं ताकि विथ एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गुरुशी से जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म शान का ये गीत। आवाज़ है अनवर की, शब्द है आनंद बख्शी के, संगीत है आरडी बर्मन का। माफ कीजिएगा, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनहरी यादें कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म शराबी का ये गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। अनजान के शब्दों को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

कुली इस फिल्म में आइए सुनते हैं शबीर कुमार की आवाज में ये गीत। आनंद बख्शी के शब्द हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत उदित नारायण और साथियों के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के इस गीत के साथ ही आज का सुनहरी यादें कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आइए सुनते हैं पंडित वीजी जोग द्वारा वायलिन पर प्रस्तुत राग श्याम कल्याण में एक रचना। तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामल बोस।

0: शास्त्रीय संगीत के आयोजन में अभी आप सुन रहे थे पंडित विजी जोग द्वारा वायलिन पर राग श्याम कल्याण में एक रचना। तबले पर संगत कर रहे थे श्यामल बोस। इसी के साथ आज का ये शास्त्रीय संगीत का आयोजन यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक